0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ है संत। नमस्कार आपको करुणा जी।
2: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। युवाओं के बीच नागरिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि निस प्रोग्राम फिर से शुरू किया जा रहा है। मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को दोबारा पोर्टवी बंदरगाह की ओर आकर्षित करने के वास्ते विदेशी मछलीमार जहाज़ों के फिश होल्स में फिर से बंकर ईंधन रखने की अनुमति दी जाएगी। मॉरिशस में इबोला के खतरों के लिए निर्धारित क्वारंटीन के कदम 3 महीनों यानी कि 7 दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। मेडन कप के लिए आज शॉन रेमोस पूरी तरह से तैयार। 2400 मीटर की दूरी वाली ये प्रतिष्ठित क्लासिक रेस सीजन की सबसे लंबी दौड़ है, जिसमें जबरदस्त रोमांच देखने की उम्मीद है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष वार्ताकारों ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय हुई जब यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने के प्रयास तेज किए गए हैं और होमोज में अमेरिका तथा ईरान के बीच नए सिरे से तनाव, दोनों ने एक दूसरे के जहाजों पर हमला करने का किया दावा। और अब मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले कुछ बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, खासकर पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटो पर। दोपहर में बादल घिराएंगे और पश्चिम में जहां तहां बारिश हो सकती है, अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:14 पर, सूर्यास्त होगा 6:02 पर। पूरा बुलेटिन 6:30 अनुमति दें। नमस्कार।
3: Your weather forecast. On the hour, every hour, Radio Mauritius.

0: नमस्कार, इस समय सुबह के 6:03 हुए हैं। आज रविवार 6 सितंबर की भोर की बेला सभा में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप लोगों के लिए ये भोर की बेला मंगलकारी रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर पल नई ऊर्जा का आभास हो आपको, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। इस समय तो 6:03 हुए हैं। आइए चलिए हम आर्य सभा मॉरिशस की ओर से सुनते हैं आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम। आज सुनिएगा आचार्य रविशंकर जी को।
1: मधुर शहद सी हो आपकी वाणी, आइए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी।
2: ओम नमस्ते जी, मैं रविशंकर आर्य वेदवाणी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु की बहुत कृपा है और हमें वेद ज्ञान प्राप्त हुआ है। वेद के माध्यम से ईश्वर हमें संदेश देते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, विधान करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेच्छतम समाहा एवं त्वयि

नान्यत हेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र में कहा गया, ईश्वर कह रहे हैं, हे मनुष्यों, तुम 100 वर्ष तक कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए जीने की इच्छा करो। पुरुषार्थ करते हुए जीने की इच्छा करनी है। आप सोच करके देखिए, हमें किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई, हमें किस प्रकार से सिखाया गया, मनुष्य समाज में हम किस प्रकार से देखते हैं, किसको अच्छा माना जाता है। अच्छा उसको माना जाता है जिसके जीवन में कर्म ही ना करने पड़े। बातचीतों में आता है, अच्छा भाई कौन सी नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है, चलो बढ़िया है, अब तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। क्या करते हो, प्राइवेट जॉब करता हूँ। अरे बहुत काम करना पड़ता है, सुबह 9 से लेकर के और शाम के 6 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। तुम बढ़िया हो, तुम्हें तो बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ता है। बचपन से ही घर परिवार में बताया जाता है, बस ये पढ़ाई कर लो, फिर तो तुम्हें काम करने की ही ज़रूरत नहीं है, फिर तो तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बस ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, 10th कर लो, 12th कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, ये जॉब प्राप्त कर लो, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, बस इतना सा करना है, बस फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हारा आगे का सारा जीवन आसान हो जाएगा, तुम्हें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। हमारे समाज में जिस प्रकार की ट्रेनिंग मनुष्य को दी जाती है, वो कैसी दी जाती है कि जिससे कि हमको कम से कम काम करना पड़े अथवा ना ही करना पड़े, लेकिन उपभोग सब प्रकार का हो, बिना काम किए हमको प्राप्ति हो जाए, काम थोड़ा सा करना पड़े, ज़्यादा हमको इंसेंटिव मिल जाए, ज़्यादा हमको अच्छी सैलरी मिल जाए, पैकेज मिल जाए, तो इसी तरह की ट्रेनिंग बचपन से ही चलती रहती है। तो हमारे मन के अंदर इस प्रकार का एक संस्कार बहुत ही अच्छी प्रकार से दृढ़ हो जाता है कि भाई हमें तो इस तरह का जीवन जीना है, और ऐसे ही व्यक्ति जीवन में आगे की ओर कदम बढ़ाता है। लेकिन वेद क्या कह रहा है, वेद कह रहा है कि जब तक जीवन जीना है, एक औसत जो आयु है वो 100 वर्ष की आयु है, आप उसको 90 कह सकते हैं, 80 कह सकते हैं, 85 कह सकते हैं, जो भी है, जब तक मनुष्य जिएगा, उसको किस प्रकार का अपना माइंडसेट बनाना है, किस प्रकार का चिंतन उसको अपने मन के अंदर रखना है, उसको ये विचार बहुत दृढ़ता से अपने मन के अंदर रखना है कि मैं जब तक जीऊँगा, जब तक मेरे प्राण चलेंगे, तब तक मैं पुरुषार्थ करते हुए ही जीऊँगा, निठल्ला रह करके, बिना किसी काम के, काम चोरी करते हुए मैं अपने जीवन को व्यतीत नहीं करूंगा। पुरुषार्थ का जो संदेश है, वो पुरुषार्थ का संदेश वेद देता है। समाज भले ही, बड़े लोग भले ही किसी भी प्रकार का संदेश देते हों, लेकिन जो वेद है, वेद हमको आगे बढ़ने के लिए, जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, मेहनत करने का और पुरुषार्थ करने का संदेश देता है, उसकी विधि करता है। अब इसमें पुरुषार्थ करने के लिए तो कहा, अब इसमें अगला बिंदु ये आएगा कि आखिर मेहनत जो करनी है वो किस प्रकार से करनी है, कर्म जो किए जाएंगे वो किस प्रकार के कर्म होने चाहिए। चलो मेहनत करते हुए तो हम जिएंगे, जब तक जिएंगे तब तक पुरुषार्थ करते हुए जिएंगे, लेकिन जिस पर पुरुषार्थ किया जाएगा, वो जो कर्म होगा, जो पुरुषार्थ होगा, वो किस प्रकार का होगा, वो किस पर बेस्ड होगा। तो फिर वेद कहते हैं, ऋषियों ने जो उसकी व्याख्या की है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, तो हम गृहस्थियों के लिए क्या कर्तव्य है, सब मनुष्यों के लिए क्या कर्तव्य है, तो उसमें ऋषि दयानंद अर्थ करते हुए कहते हैं कि जो वेदोक्त कर्म है, जो धर्म के कार्य हैं, जिनसे कि हमको पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी, वेद में बताए हुए जो पुण्य के कर्म हैं, पुण्य को देने वाले कर्म हैं, सत्कर्म हैं, मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाने वाले कर्म हैं, ऐसे कर्मों को करते हुए जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि शास्त्रों में जो कहा है, और तत्वतः यदि हम देखेंगे तो कोई मनुष्य ऐसा है ही नहीं जो बिना कर्म के रह सके, कुछ ना कुछ कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा, हाथ भी हिलाएगा, पैर भी हिलाएगा, आंखें हिलाएगा, दिमाग से भी कुछ ना कुछ सोचेगा, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा,
शरीर से, वाणी से, मन से अपना जीवन यापन चलाना है तो कर्म तो कुछ ना कुछ तो करना।

पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये जो कुछ ना कुछ वाले कर्म है इनकी बात नहीं हो रही है। कौन से कर्म की बात हो रही है? जो वेद में कहे गए हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो सफलता देने वाले हैं, जो केवल एक ही जन्म तक सीमित नहीं है, जो हमें जन्म जन्मांतरों तक लाभ देने वाले हैं, जिन कर्मों का फल हमको जन्म जन्मांतरों में सुख के रूप में प्राप्त होने वाला है, उन कर्मों को करने के लिए वेद ने यहां पर आदेश दिया है। और फिर आगे कहा, एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मनुष्य के जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो जो कर्मों की जो श्रेणियां हैं, क्योंकि वेद कह रहा है कि और कोई विकल्प नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है जीवन में उन्नति प्राप्त करने का, तो या तो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा, या व्यक्ति कुछ बुरे कर्म करेगा, कुछ अच्छे कर्म करेगा, और तीसरा जो मार्ग है वो तीसरा मार्ग है कि व्यक्ति बिल्कुल अच्छे ही कर्म करेगा, जिसको कि शुक्ल कर्मों के रूप से दर्शनों में और शास्त्रों में कहा है। और जो चौथा जो कर्म है, वो चौथा कर्म है, उसको तो योगी लोग ही करते हैं, उसको तो ऐसे ऋषि लोग ही कर पाते हैं, जिसको कि निष्काम कर्म कहा है। तो सामान्य रूप से जो व्यक्ति जो कर्म करता है वो कैसे कर्म करता है, वो अधिकांश रूप से जो उसके कर्म हैं वो उसके मिश्रित श्रेणी में रहते हैं। कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है, या थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो रहा है और थोड़ा कम अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या थोड़ा ज़्यादा गलत हो रहा है और कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मिश्रित जो कर्म हैं वो मिश्रित कर्म सामान्य मनुष्यों से ज़्यादा हो रहे होते हैं। जो बिल्कुल ही दुष्ट प्रकृति वाले लोग हैं, हिंसक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनसे कि पाप कर्मी हो रहे होते हैं, अधिकता में पाप कर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, थोड़े से अच्छे कर्म तो वो भी कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, थोड़ा सा भी धर्म ना करे, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा ना करे, किसी के लिए उपकार के लिए थोड़ा सा भी ना करे, धर्म की कोई मात्रा ही उसके जीवन में ना हो तो जीवन ही नहीं चल सकता। तो कितना ही बुरे से बुरा व्यक्ति ही क्यों ना हो, थोड़ा सा अच्छा तो वो करता ही है, करना ही पड़ता है अपने मन को अच्छा बनाने के लिए, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए, अपने दिमाग को प्रसन्न रखने के लिए। चाहे कितना ही हिंसक व्यक्ति हो, अपने घर में तो अपने परिवार के लोगों से तो प्रेम करता ही है, अपने बच्चों को तो पालता ही है, अपने मित्रों के लिए तो कुछ अच्छा करता ही है, लेकिन अधिकता में वो पाप करता है। तो उसको रोकने के लिए इस वेद मंत्र में कहा है कि ऐसे कर्म जो हमें गर्त में ले जाने वाले हैं, जो हमें नीचा ले जाने वाले हैं, उन कर्मों से बचना है, एक बात। दूसरी बात, और धीरे धीरे वो जो पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों से अपने आप को हटाते हुए, ग्रेजुअली, धीरे धीरे होगा ये काम, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे हम अपने आप को बुरे कर्मों से, जो हमसे गलत कर्म हो रहे हैं, त्रुटियां हो रही हैं, दोष हो रहे हैं, चाहे वो शरीर से हो रहे हैं, वाणी से हो रहे हैं, चाहे वो मन से हो रहे हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे जो पाप कर्म हैं वो हमारे कम होंगे, और धीरे धीरे हमारे जो अच्छे कर्म हैं उन अच्छे कर्मों की संख्या, उन अच्छे कर्मों की जो मात्रा है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों तरह से, वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे पाप कर्म कम होंगे, धीरे धीरे पुण्य कर्म हमारे बढ़ेंगे। तो पहले हमको ये करना है। अब जब हमारे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, अब इसके बाद में हमको और थोड़ा अध्ययन करना है, और थोड़ा जानना है गुरुजनों से, बड़ों से, ऐसे लोगों से, साधु सज्जनों से, विद्वानों से, स्वाध्याय करके, इस तरह से ये सब सारा ज्ञान प्राप्त करके, रिसोर्सेज कोई से भी हो सकते हैं, जो अच्छे रिसोर्सेज हैं वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके, और फिर हमको क्या करना है, फिर हमको और अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ना है, जिसको कि महर्षि पतंजलि ने योग में कहा है कि हमको कैसा करना है, हमको शुक्ल कर्मों की ओर, बिल्कुल अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ना है। और जब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो फिर ईश्वर की कृपा हम पर होगी, और ईश्वर की कृपा से हम और अच्छी स्थितियों को प्राप्त करेंगे, और अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी स्थितियां, और इस तरह से चलते हुए हम और आगे बढ़ेंगे। तो इस वेद मंत्र में कहा,
कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा, जब तक जिएं

0: लगे तब तक वेदोक्त जो पुण्य कर्म है उन पुण्य कर्मों को करते हुए ही जिएंगे, क्योंकि जीवन को सार्थक बनाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इत्योम शम, नमस्ते जी।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वैदिक वाणी।
2: और आज आप सुन रहे थे आचार्य रविशंकर जी को।
3: एनबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: चलिए कुछ विज्ञप्तियां पढ़ते हैं हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मोंगू के निवासियों को सूचित करता है कि मोसिल्मा कोऑपरेटिव और एनएचडीसी में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 6 सितंबर को सुबह साढ़े आठ बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी कौदुस के निवासियों को सूचित करता है कि मोसिल्मा गंगादीन के एक भाग में आज रविवार 6 सितंबर को सुबह 9 बजे से दिन के 11 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे, इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। पायुत के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि सुल्फेनो नंबर 5 के एक भाग में रॉयल रोड पायुट के एक भाग में आज रविवार 6 सितंबर को दिन के 10:30 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और मोशवाजी के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि लुतेल ग्रांड ब्लू गामजतन मेजतेगाने और मोसिल्मा मोशवाजी इलाकों में तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 6 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये विज्ञप्ति आप सुन रहे थे। इस समय सुबह के 6:17 हुए हैं। चंद एक गीत आपको सुनवाते हैं हम मंगल कामनाओं के साथ। मंगल कामनाएं हमारे दिल में आप लोगों के लिए है, मंगल पांडे मूवी का ये गाना है। और सुबह की ये बेला आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी रहे, इसी उम्मीद में, इसी लक्ष्य के साथ हम ये गाना आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। बस इस गाने के बाद आप सुनिएगा आज का विशेष कार्यक्रम गणेश चतुर्थी के अवसर पर। गणेश चतुर्थी महापर्व के अवसर पर ये विशेष कार्यक्रम आप नितिन बापू से मराठी भाषा में अवश्य सुनिएगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: सभी को नमस्ते। 6:30 बज रहे हैं, वक्त हो चला है समाचार बुलेटिन का।

0: नमस्कार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। युवाओं के बीच नागरिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने के वास्ते सरकार द्वारा निज प्रोग्राम फिर से शुरू किया जा रहा। मछली पकड़ने वाले जहाजों को दोबारा पोटली बंदरगाह की ओर आकर्षित करने के लिए विदेशी मछलीमार जहाजों के फिश होल में फिर से बंकर ईंधन रखने की अनुमति दी जाएगी। मॉरिशस में इबोला के खतरों के लिए निर्धारित क्वारंटीन के कदम 3 महीनों यानी कि 7 दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। मेडन कप के लिए आज सऊदी मॉस पूरी तरह तैयार। 2400 मीटर की दूरी वाली ये प्रतिष्ठित क्लासिक रेस सीजन की सबसे लंबी दौड़। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष वार्ताकारों ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय हुई जब यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने के प्रयास तेज। और अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि निस प्रोग्राम फिर से शुरू किया जा रहा है, जो कि युवाओं के बीच नागरिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने के लिए निर्धारित है। इसे पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। ग्रेड 8 के 200 छात्र 14 दिनों तक नागरिक शिक्षा, अनुशासन, लीडरशिप, सुरक्षा और सामुदायिक प्रतिबद्धता पर आधारित गतिविधियों में भाग लेंगे। सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज की भी अहम भूमिका होगी। ये नौजवानों को सामाजिक वास्तविकताओं को बेहतर रूप से समझने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद कर सकता है। गीता सुनारा।
1: ये तस्वीरें साल 2012 की हैं। उस समय कुछ स्कूली छात्र नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन में हिस्सा ले रहे थे।
2: Diminuer la pauvreté à Maurice.
3: Oui, d'accord.
4: Est-ce que quelqu'un qui a demandé qui était une équivalence?
5: Un copain agresseur copine.
4: Dans une relation, nous êtes capables d'assumer nous responsabilités.
1: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नागरिक मूल्यों, एक दूसरे की मदद और मॉरिशनवाद के प्रति जागरूक करना था, साथ ही उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज के प्रति भागीदारी की भावना विकसित करना भी इसका उद्देश्य था। लेकिन इस पहली पहल के बाद ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका। चौदह साल बाद सरकार ने अब इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इस बार देश भर से ग्रेड 8 के 200 छात्रों का चयन किया जाएगा। ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। इन छात्रों का चयन सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों से किया जाएगा। इनमें रॉड्रिक्स और आगालिगा के छात्र भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 100 लड़कियां और 100 लड़के होंगे। पहले सप्ताह में छात्र अपने अपने एजुकेशन जोन में स्थित प्रशिक्षण केंद्र में गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। दूसरे सप्ताह में रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। छात्रों को पंचखोम यूथ सेंटर और नेशनल कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाएगा। इस नए कार्यक्रम के कई प्रमुख हिस्से होंगे। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मॉरिशस का इतिहास, संविधान और देश की सांस्कृतिक विविधता तथा साझा विरासत के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें अनुशासन, ईमानदारी और विवादों को संभालने जैसे विषय शामिल होंगे। कार्यक्रम में समुदाय के प्रति भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत नागरिक संवाद, सामाजिक समावेश और किसी सहयोगी संस्था के साथ मिलकर एक सामुदायिक परियोजना करने का मौका छात्रों को मिलेगा। इस कार्यक्रम के शैक्षणिक ढांचे को तैयार करने की जिम्मेदारी मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को दी गई है।
0: पोटली में विदेशी मछलीमार जहाजों के मछली रखने वाले होल्ड में फिर से बंकर ईंधन रखने की अनुमति दी जाएगी। इस कदम का

0: डिश मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को दोबारा मॉरिशस के बंदरगाह की ओर आकर्षित करना है, क्योंकि हाल के समय में इसके लिए अनुरोध और लाइसेंस में कमी आई है। हालांकि इस व्यवस्था की वापसी कड़ी नियंत्रण के साथ होगी ताकि सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। शबनी जूसिया, तीना बुडना।
1: विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को पोर्टबी में मछली रखने वाली जगह पर बंक फ्यूएलर रखने की इजाज़त फिर से दी जाएगी। पहले इस पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण कई जहाज इस इलाके के दूसरे बंदरगाहों की तरफ चले गए थे। इससे मॉरिशस में मछली पकड़ने की मांग और फिशिंग लाइसेंस की संख्या में काफी कमी आई थी, लेकिन अब ये इजाज़त कड़े नियमों के साथ दी जाएगी। हर जहाज के पास अपने देश से मिले हुए सही और मान्य सुरक्षा प्रमाण पत्र और समुद्र में चलने की अनुमति से जुड़े प्रमाण पत्र होने चाहिए। लाइसेंस मिलने से पहले मिशन अधिकारी हर जहाज की अच्छी तरह जांच करेगी, खास तौर पर सुरक्षा और साफ सफाई के नियमों को देखने के लिए। हर जहाज के पास कम से कम $5 मिलियन की इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। इसमें कम से कम $2 मिलियन डूबे हुए जहाज को हटाने, प्रदूषण और आग लगने से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए होने चाहिए। इन जहाज़ों को मॉरिशस के कानूनों और समुद्री सुरक्षा, मछली पकड़ने और प्रदूषण रोकने से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा। एक और शर्त ये है कि मछली रखने वाली जगह को पूरी तरह खाली करके अच्छी तरह साफ करना होगा, उसके बाद ही उसमें मछली रखी जा सकेगी। अगर कोई जहाज इन नियमों को तोड़ता है या लापरवाही की वजह से प्रदूषण करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उसे पोर्टवी के बंदरगाह और मॉरिशस समुद्र में आने से भी रोका जा सकता है। इस तरह अधिकारियों का मकसद मछली पकड़ने वाले जहाजों को फिर से पोर्टवी आने की इजाजत देना है, लेकिन साथ ही समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण और लोगों की सेहत से कोई समझौता नहीं करना है।
0: मॉरिशस में इबोला के खतरों के लिए निर्धारित क्वारंटीन के कदम 3 महीनों यानी कि 7 दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। ये नियम केवल उन यात्रियों पर लागू होते हैं जिन्होंने मॉरिशस पहुंचने से पहले के 21 दिनों के दौरान लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य या दक्षिण सूडान में ठहराव किया हो, वहां से होकर गुजरे हो या यात्रा की हो। ये निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के बाद लिया गया। WHO ने इबोला महामारी के मद्देनज़र निगरानी बढ़ाने का और एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह दी है। मॉरिशस के लिए सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क जैसे रक्त या अन्य जैविक द्रवों के माध्यम से फैल सकता है। इसलिए मॉरिशस में वायरस के प्रवेश को रोकना और किसी भी संदिग्ध मामले पर तुरंत कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। ज़्यादा जानकारी डॉक्टर अश्वमेध दीना सिंह के साथ है, जिनसे बात की शबनीज उजिया ने। विवरण तीना बुडना का।
1: इसका मतलब ये नहीं है कि कोंगो से कोई नहीं आ सकता, लेकिन उनको 21 दिन तक अलग रहना होगा, खासतौर पर जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं और जिनके पास मॉरिशस आने का परमिट है। लेकिन जो लोग सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को हम अंदर आने नहीं देते। प्राथमिकता मॉरिशस लोगों को दी जाती है जो कहीं गए हुए थे और कोंगो के रास्ते वापस आ रहे हैं। उनको भी 21 दिन तक क्वारंटीन पर रहना होगा। हमें अपना 21 दिन का क्वारंटीन पीरियड बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी इबोला का कोई वैक्सीन नहीं है और हमारे पास इबोला का कोई बड़ा इलाज भी नहीं है। हर महीने हम स्थिति को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि कोंगो ने इबोला को कितना नियंत्रित किया है और दक्षिण सूडान की स्थिति भी देखते हैं। इन दोनों देशों से किसी को भी हम ऐसे ही अंदर आने नहीं देते। अगर कोई आता है तो हम उनको नियंत्रण में रखते हैं और 21 दिन तक अलग रखते हैं। अगर सिर्फ एक मरीज भी संक्रमित हो गया तो एक ही बार में हम 50 लोगों को खो सकते हैं।
0: क्यूपीपी स्थित स्वस्तिका भवन में स्वस्तिका संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मन पर नियंत्रण और विचारों को संयमित रखने पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता और भगवद गीता पर आधारित कार्यशाला शामिल थी। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों तक भगवद गीता की शिक्षाओं और जीवन मूल्यों को पहुंचाना था, ताकि वे नकारात्मक प्रभावों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें और समाज की बुराइयों एवं समस्याओं से दूर रह सकें। थीना बुन्ना।
1: इस प्रदर्शनी के दौरान सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज ने विद्यार्थियों को भगवद गीता की शिक्षाओं को समझने और उनका मन पर नियंत्रण से क्या संबंध है ये जानने के लिए प्रेरित किया। ध्यान और मंत्र जाप के जरिए वे अपने मन को शांत कर सकते हैं, कुछ समय के लिए अपनी परेशानियों से दूर होकर सोच सकते हैं और वर्तमान पल को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं।
2: कृष्णा ने इनको माइंड कंट्रोल बस के नुसाले को साले को किन्वेटे नुपसाले कोला नुन आत्मा दसाले कोला नुनन माइंड नुनल इंटेलिजेंस।
1: कृष्णा हमें समझाते हैं कि हमारा ये शरीर ही हमारी असली पहचान नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा है। हमें अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि की मदद से मन को कंट्रोल यानी नियंत्रित करना सीखना चाहिए। मन को नियंत्रित करना हवा को नियंत्रित करने से भी ज्यादा मुश्किल है। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी। इसलिए समय समय पर मंत्रों का जाप करना चाहिए, ताकि मन को शांति मिले। जब मन शांत होगा तभी हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए इन तरीकों से सबसे जरूरी है मन को कुछ समय के लिए शांति मिलना। इससे उन्हें अपने मन को शांत करने, पढ़ाई पर बेहतर ध्यान लगाने और अपने अंदर संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।
3: भगवद
1: गीता जैसी किताबों में जीवन से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं।
4: Si depuis petit petit même nous nous autres ban scriptures je lis ça je peux gagner connaissance dans ban knowledge.
1: अगर बचपन से ही बच्चों को ऐसे धार्मिक ग्रंथ दिए जाएं और वे उन्हें पढ़ें तो धीरे धीरे उन्हें इन शिक्षाओं की अच्छी समझ हो जाएगी। अगर बच्चे छोटी उम्र से ही उन्हें पढ़ना शुरू करें तो उन्हें आगे चलकर सही सोच और जीवन को समझने का अच्छा ज्ञान मिलेगा। इस पहल के जरिए स्वस्तिका का उद्देश्य युवाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा देना है, साथ ही उनमें अच्छी सोच और अपने प्रति सम्मान की भावना पैदा करना है।
0: और आज दोपहर शौर्य मास मेडन कप की रोमांचक घुड़दौड़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 2400 मीटर की दूरी वाली ये प्रतिष्ठित क्लासिक रेस सीजन की सबसे लंबी दौड़ है और इसमें ज़बरदस्त रोमांच देखने को मिलने की उम्मीद है। घोड़ों और घुड़दौड़ के शौकीन बड़ी संख्या में इन मुकाबलों को देखने पहुंचेंगे। शौर्य मास में आज काफ़ी चहल पहल रहने वाली है। वहीं कुछ लोग इस बड़े खेल आयोजन का आनंद अपने घरों में परिवार या दोस्तों के साथ लेना पसंद करेंगे, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, आज दोपहर इस प्रतिष्ठित क्लासिक रेस में कौन बाजी मारेगा। हमारी एक टीम ने घुड़दौड़ के प्रशंसकों के बीच जाकर माहौल का जायजा लिया, उनकी उम्मीदें जानी। उन्हें सुनते हैं जिनसे बात की शबनीज उजिया वाहिद अली ने।
5: Je dis là beaucoup c'est val un peu difficile à dire mais tout bon c'est val même mais beaucoup de gars adorent bon vous pouvez trouver un bon c'est val appelle views the world vous trouvez peut-être les cagelles mais d'un aujourd'hui quand nous tenons des sandes pour lui nous get c'est val fait les tout sur les mosses l'enfance moi je suis allé un des coups après moi me poser un peu mais Tout le temps, ça, l'ambiance, ça, c'est plutôt familial pour le Beden.
3: Le Beden, il représente l'ambiance familiale, parce que je me rappelle, à l'époque, de dimanche, avec la famille, je suis pu aller, passer un petit bon moment. Et mais là, malheureusement, depuis quelques temps, deux ans de cela, nous, pas qu'à l'état, joué. Mais par contre, je me poursuivi, un petit penchant pour l'écurie Gadjador.
6: Le Beden, c'est un jour pour mener la famille, sans démence, pour nous amuser.

मुताबिक उसने ओमान की खाड़ी में एक तीसरे तेल टैंकर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ईरान की सरकारी मीडिया ने इन हमलों की पुष्टि की है। उसके अनुसार जवाब में ईरान ने अमेरिका से जुड़े तीन जहाज़ों पर हमला किया। इसके अलावा ईरान ने होर्मुज़ जलमार्ग से गुजर रहे तीन तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया, जो उसके अनुसार अनधिकृत मार्ग से यात्रा कर रहे थे। गौरतलब है कि पिछले एक महीने से अपेक्षाकृत शांति के बाद करीब एक सप्ताह पहले दोनों देशों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हुई थी और इसके बाद ये हमलों का नया दौर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष वार्ताकारों ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक ऐसी समय हुई है जब यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने के प्रयास तेज हो रहे हैं। पुतिन ने अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का स्वागत करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति इतनी आसान नहीं है। अमेरिकी वार्ताकार ने पुतिन को धन्यवाद दिया कि उन्होंने यूक्रेन के साथ दोनों देशों की राजधानियों पर तीन दिनों के लिए हमले रोकने पर सहमति जताई है। रविवार को अमेरिकी दूत आगे की बातचीत के लिए कीव जाएंगे। ये पहली बार होगा जब वे इस तरह की वार्ता के लिए यूक्रेन की राजधानी का दौरा करेंगे। और बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2026 का, जिसका फाइनल कल वियतनाम के एनहा ट्रेंग में हुआ। विजेता जो है मिस वर्ल्ड 2026 की विजेता जोहरी मोला डोमिंगेज रही, जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक से हैं। दूसरे स्थान पर स्पेन के एलिजाबेथ रेनेस अलाबन आई। तीसरे स्थान पर मलेशिया की तानुसिया चेती। गौरतलब है कि भारत के निकिता पोरवाल टॉप 40 तक पहुंचे, लेकिन टॉप 20 में जगह नहीं बना सके। कुल 111 देशों के प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि डोमिनिकन रिपब्लिक ने दूसरी बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले कुछ बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दोपहर में पश्चिम में बादल घेराएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। रात के दौरान भी बादल घिरे रहेंगे। पूर्व तथा ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज सूर्योदय हुआ 6:14 पर, सूर्यास्त होगा 6:02 पर।

खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। युवाओं के बीच नागरिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना सरकार द्वारा इसी उद्देश्य से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि निस प्रोग्राम फिर से शुरू किया जा रहा। मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को दोबारा पोटी बंदरगाह की ओर आकर्षित करने के लिए मछली मार जहाज़ों के फिश होल्स में फिर से बंकर ईंधन रखने की अनुमति। मॉरिशस में एबोला के खतरों के लिए निर्धारित क्वारंटीन के कदम 3 महीनों यानी कि 7 दिसंबर तक बढ़ाए गए। मेडन कप के लिए आज शाउडेमॉस पूरी तरह तैयार। 2400 मीटर की दूरी वाली ये प्रतिष्ठित क्लासिक रेस सीजन की सबसे लंबी दौड़। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष वार्ताकारों ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। होमूज में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से तनाव। दोनों ने

0: दूसरे के जहाज़ों पर हमला करने का किया दावा और मिस वर्ल्ड 2026 की विजेता रही डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहरी मोला डोमिंगेज। 6:50 हो चुके हैं, ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है कादिर के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: रेलरोड कॉडी मास्क में 75 साल की 75-year-old श्रीमती रुमिला जॉन पैदाइशी नाम बंधन जो रुमिला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 इनके मकान रेलरोड कॉडी मास्क से उठाकर दाह संस्कार के लिए कॉडी मास्क के ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 2:30 PM। मोसलमो ब्लू प्रिंट टायाक में 97 साल की 97-year-old श्रीमती लच्छू मामा एलाया पैदाइशी नाम पुलवाडू जो तौचिन अमाना से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 इनके बेटे गनानंदास एलाया के मकान मोसलमो ब्लू प्रिंट टायाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौजाबल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2:00 PM। रॉयल रोड पेलग्रिन सेबास्तोपोल में 50 साल की 50-year-old श्रीमती प्रभा चुनी पैदाइशी नाम रामडिया जो प्रेमा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 इनके पति श्री संजय चुनी के मकान होटवायाल पेलघाय सेबास्तोपोल से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोचिदा के स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 2:00 PM। शातो बेनारस एबन रोड में 64 साल की 64-year-old श्री येसु मुनिये जो सुखी से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:00 इनकी बेटी कामिनी मुनिया के मकान शातो बेनारस एबेन रोड से उठाकर दाह संस्कार के लिए शातो बेनारस की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 1:00 PM। एवेनी बोगों बॉशेरी मोका में 69 साल के 69-year-old श्री गोपाल सामी पेरियासामी जो रवीन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 इनके मकान एवेनी बोगों बॉशेरी मोका से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कोस्तों सैं पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे 1:30 PM। भंजन रोड सुरीनाम में 47 साल की 47-year-old श्री सूरज दिनदयाल जो सूरज से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 इनके मकान भंजन रोड सुरीनाम से उठाकर दाह संस्कार के लिए रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे 2:00 PM। उटवायाल ब्रह्मस्थान में 92 साल की 92-year-old श्रीमती सावित्री अपाडू पैदाइशी नाम पापिया जो श्रीमती ताताई से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:00 इनके मकान रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर दाह संस्कार के लिए विष्मा फ्लाक की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 11 AM। लेओशी त्यागोज में 71 साल की 71-year-old श्री सुपाया ओसराल जो दासन जनता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:00 इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी ओसराल के मकान धनुषलेन लेओशी त्यागोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआमाशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 10 AM। गोबिन लेन मेबर्ग में सतीश मैकेनिक के करीब 98 साल की 98-year-old Shrimati Aplama Jugana, Shrimati Aplama Jugana,

ताउचिन अपलम से जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके बेटे आत्मा जुगाना के मकान गोबिन लेन मेबर्ग से उठाकर दाह संस्कार के लिए टोंबो मेबर्ग की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे अति 10 AM। कथकाहो स्ट्रीट ओकुले में 37 साल के 37-year-old श्री केशवन नारायणन, श्री केशवन नारायणन जो केशवन से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 इनके भाई श्री डोमेन नारायणन के मकान कथकाहो स्ट्रीट ओकुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगागा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। कोटवाया लेसुआ सेबास्तोपोल में 51 साल की 51-year-old श्री दया रामरचिया, श्री दया रामरचिया जो ऋषि प्रेसिडेंट से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके भाई शैलेश रामरचिया के मकान कोटवाया लेसुआ सेबास्तोपोल से उठाकर दाह संस्कार के लिए लेसुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। और रॉबिन्सन रिवलिन क्यूपिप में 74 साल के 74-year-old श्री बलाल रामेसर, श्री बलाल रामेसर जो अनिरुद्ध से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 इनके मकान रॉबिन्सन रिवलिन क्यूपिप से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे 9:30। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 6:58 और 15 सेकंड हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास राम धनी का प्यार भरा नमस्कार आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। शॉन्डिमास में आज घुड़दौर सीजन की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे लंबी रेस द फेनिक्स मेडन कप दौड़ी जाएगी। 2400 मीटर के इस लंबी रेस में ढेर सारे प्रबल दावेदार हैं। आज शाम लगभग 3:25 पर फ्यूचर स्विंग, गुड काउंसिल, रैपिडैश, सुपीरियर फोर्स, सेलिक्वे आदि घोड़े एकदम तैयार हैं ये मेडन कप हासिल करने के लिए, जो एक पारिवारिक वातावरण में गुजरता है। सो आज भी शॉन्डिमास में परिवार सहित कई लोग वहां पर ये सीजन की आखिरी सीजन की ये क्लासिक, सबसे क्लासिक रेस द मेडन कप के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। मॉरिशस में ही क्रिकेट, आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा के दोनों सेमीफाइनल आज रविवार को खेले जाएंगे। मापू स्थित एसएसओ ग्राउंड में आज सुबह 9 बजे प्रथम सेमीफाइनल खेला जाएगा कंटिनेंटल चीटाज और वन हेल्फ जागवर्स के बीच। तो दिन के 1 बजे वहीं के मैदान पे कैंपस अब्रोड लायंस खेलेंगे थॉमस कुक टाइगर्स के विरुद्ध। बात करें अब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की, इंग्लिश प्रीमियर लीग का तीसरा सप्ताह और मैनचेस्टर सिटी की जीत की श्रृंखला जारी है। कल द सिटीजन्स ने केवल 1-0 से कोवेंट्री सिटी को हराकर लीग टेबल का प्रथम स्थान बरकरार रखा है। अर्लिंग हैलैंड का ये मात्र गोल खेल के 26वें मिनट पर और मैनचेस्टर सिटी ने अपनी तीसरी जीत हासिल की। मैन सिटी 1, कोवेंट्री सिटी 0। बाकी मैचों में कल का जो पहला मैच था उसमें अर्ली किक ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड 2, बोर्नमुथ 2। बार बार बोर्नमुथ आगे, लेकिन उसके बाद हार्ली बोन्स और रामसे ने एक एक गोल स्कोर करके न्यूकासल यूनाइटेड के लिए ड्रॉ मैच किया। न्यूकासल 2, बोर्नमुथ 2। ब्रेंटफोर्ड भी 1, संडरलैंड 1, ब्राइटन भी 1, लीड्स यूनाइटेड 1, जबकि कल रात फुलहम की हार हुई, फुलहम 2, क्रिस्टल पैलेस 3। मिचेल का एक डबल क्रिस्टल पैलेस की ओर से और बेन चिलवेल ने कल विनिंग गोल स्कोर किया क्रिस्टल पैलेस की ओर से। मैन सिटी 1, कोवेंट्री सिटी 0। नॉटिंगहम फॉरेस्ट और टोटनहम हॉटस्पर ने मैच ड्रॉ किया 0-0। तो हल सिटी भी 0, आस्टन विला 0। टोटनहम हॉटस्पर ने 3 मैचों के बाद भी एक भी जीत हासिल नहीं की। प्रथम 2 मैच हारने के बाद कल उन्होंने मैच ड्रॉ किया 0-0 नॉटिंगहम फॉरेस्ट के मैदान पे। सो आज 2 अन्य मैच खेले जाएंगे, 2 महामुकाबले। सबसे पहले शाम 5 बजे एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है दोनों टीमों के लिए। फिर रात 7:30 सीजन का पहला क्लासिक, पहला झटका, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी। ये दोनों टीमें बड़ी ही मुश्किलों का सामना करती आ रही हैं। आर्सेनल डिफेंडिंग चैंपियन है, चेल्सी के साथ एक नया कोच है क्साबी अलोंसो, उधर मिकेल आर्टेटा। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला आज रात 7:30 सुगेजेव, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी रात 7:30। इससे पहले 5 बजे एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। फिर बाकी जो चैंपियनशिप है उनमें कल, आज स्पेन की बात करें तो बार्सिलोना एवे जा रही है आज वेलेंशिया के यहाँ अपनी जीत हासिल करने के लिए। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को रियल मैड्रिड की हार हुई 1-0 से रियल बेटिस के विरुद्ध। इस प्रकार 3 मैचों में उसकी पहली हार हुई, योजे मुरीनो की पहली हार। क्या एफसी बार्सिलोना आज उसके नक्श कदमों पर चलेगा, देखते रहिए और सुनते रहिए। वैसे बता दें कि कल जर्मनी के बुंडेसलीगा में 39 मैचों के बाद पहली बार कल बायर्न म्यूनिख स्कोर नहीं कर पाया। सो बायर्न म्यूनिख ने भी कल अपना मैच ड्रॉ किया। सबसे पहले स्पेन के लालीगा में एथलेटिक ने एथलेटिको को 3-0 से हराया। रेयो वालेकानो 3, सांतांदर 2, विलारियल 2, डिपोर्टिवो ला कोरुन्या 3। जर्मनी के बुंडेसलीगा में कल बायर्न म्यूनिख और शाल्के 04 के बीच मैच ड्रॉ रहा 0-0। शाल्के 04 अभी नया अभी आया है लीग बुंडेसलीगा में, फिर भी कल बायर्न म्यूनिख स्कोर नहीं कर पाया। वर्डर ब्रेमेन ने लाइप्ज़िग को 3-1 से परास्त किया। पाडियाबोन 0 फ्रीबर्ग 1, होफेनहाइम 2 बोरुशा डॉर्टमुंड 3, बोरुशा मोंचेनग्लादबाख 3 एल्वर्सबर्ग 4 और बायर लेवरकुसन ने यूनियन बर्लिन को 4-0 से परास्त किया। इटली के सीरी आ में कल एएस रोमा ने अटलांटा को 2-1 से परास्त किया। इंटर मिलान की जीत हुई एन मौके पे 3-2 से नापोली के विरुद्ध। लोटारो मार्टिनेज का एक डबल, मार्किस चुराम का विनिंग गोल। इंटर मिलान 3 नापोली 2। इसमें लिवरपूल के खिलाड़ी कर्टिस जोन का अच्छा प्रदर्शन रहा। फ्योरेंटिना की हार हुई, फ्योरेंटिना 1 टोरिनो 2। और फ्रांस के लीग अ में कल रेसिंग क्लब दे लांस की भी हार हुई, लांस 0 लोरियन 1, ले हाव 1 ब्रेस्ट 2, निस 1 ले मंस 1। फुटबॉल के बाद बात करें अब टेनिस की, जिसमें कल कई ऐसे मैच खेले गए जिनमें बड़े बड़ों की हार हुई। आपको बता दें कि यूएस ओपन का ये राउंड 32 चल रहा है और सिंगल्स में, वुमेन सिंगल्स में इसी समय राउंड ऑफ 16 में सबालेंका और टाउनसेंड के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। आज ही टोमी पोल खेलेगा कार्लोस अल्काराज के विरुद्ध, तो अलेक्जेंडर ज़ेरेव का मुकाबला इसी समय टैबिलो से हो रहा है। नाओमी ओसाका खेल रही है ड्राइज मैथेंस के विरुद्ध और ओसाका की जीत हो गई है 6-3, 3-6 और 7-5 से। कल के मैचों में अच्छे अच्छों की जीत हुई और हार भी। सो कल कई ऐसे मैच खेले गए। जेसिका पेगुला की जीत हुई 1-6, 6-4 और 6-3 से, उसने फर्नांडेस को हराया। अल्काराज की जीत तो हुई थी वू जिंगपिंग के विरुद्ध और कोकोगाव जीत गई। अलेक्जेंडर ज़ेरेव की भी जीत हुई थी। सबालेंका, पोल, चियन, रायबाकिना आदि सब जीत पाए।

आए थे। इस प्रकार आज बाकी सभी मैच खेले जाएंगे। अरीना साबालेंका का मुकाबला टाउनसेंड से, पोल वर्सेस कार्लोस अल्काराज, और बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं जैसे यानिक सिनर जो विश्व नंबर दो हैं वो इस टूर्नामेंट से पहले से ही बाहर बताए जा रहे हैं। फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में कल कमाल हो गया। फ्रांस का पियर गैसली पोल पोजीशन से ये रेस आज शुरू करेगा। सो इतने दिनों बाद एक ऐसे ड्राइवर जिनका नाम बहुत दूर है वो अब आज पोल पोजीशन से शुरू करने वाला है। हालांकि जनरल स्टैंडिंग में एंटोनेली अभी तक पहले स्थान पर है। जॉर्ज रसेल और हैमिल्टन के पास बराबर अंक है 183। तो इतना सब कुछ स्पोर्ट्स को लेकर। बता दें कि आज शाम 5 बजे एवर्टन का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और रात 7:30 बजे क्लासिक मुकाबला आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, शाम 3:25 पर क्लासिक रेस द फिनिक्स मेडन कप शॉर्टमॉस में। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।

सुबह की ये बेला है, इस समय सुबह के 7:07 हुए हैं। रविवार की ये सुबह आप लोगों के लिए मंगलमय रहे और नजराना के रूप में आप इस सुबह को बहुत प्यार से स्वीकारिए और इस प्यारे से नजराने पर बहुत अच्छी तरह से गौर कीजिए। गौर करके देखिए कि कितनी सुहानी है ये सुबह, किस तरह से हमें ठंडी हवा पहुंचाती है और ये सुबह ममता की तरह हवा हमारे सर से जब गुज़रती है इस सुबह में, तो हमें कितना एहसास होता है कि ऊपर वाला है, ऊपर वाला है हमारी रक्षा के लिए, ऊपर वाला है हमारे सपोर्ट के लिए। तो आप लोगों को वो सपोर्ट मिले, यही हमारी प्रार्थना है। सुबह की इस बेला में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ गाने, मंगल विचार माधुरी, डॉक्टर माधुरी रामधारी जी की प्रस्तुति में एक खेल, एक क्वीज, एक गेम आपके लिए पेश करेंगे और ऐसे में कुछ जानकारियां भी आप लोगों के लिए, कुछ कम्युनिके और आप लोगों के जीवन में मंगल समय रहे, ये प्रार्थना करेंगे।

0: BBC Radio, 24 hours a day.
1: इस समय सुबह के 7:14 हुए हैं रेडियो मॉरिशस पर. चलिए हम आप लोगों के लिए कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से पढ़ते हैं. सीबी पोलवी के निवासियों को सूचित करता है कि सर सिवसा गौगम गुलाम गली और के एक भाग में और आसपास के इलाकों में आज रविवार 6 सितंबर को सुबह 8:30 से दिन के 3 तक मरम्मत कार्य होंगे. इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. सीबी घोंबे के निवासियों को सूचित करता है कि कोस्टल रोड होटल लुक्स कैजिनो ए होटल वेरांडा घोंबे में इन इलाकों में आज रविवार 6 सितंबर को सुबह 9 से दिन के 3 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. सेजिया मिल फॉरेस्ट साइड के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रॉयल रोड सेजिया मिल में रेजिडेंस अनुष्का रेजिडेंस मोंबोआ मोसेलमो दुमा मोसेलमो रामफल और आसपास की गलियों में आज रविवार 6 सितंबर को सुबह 8:30 से शाम के 4 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. वैदन के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसेलमो एमडीए मोसेलमो एमएसए

0: Chemin d'Agoutier se acha Verdun, Roll Road Verdun और आसपास के इलाकों में आज रविवार 6 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। रोजहिल के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि एवेन्यू ब्लू लेन, एक्वारेल फैक्ट्री और एवेन्यू बेतो के एक भाग में आज रविवार 6 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। नुवेल फ्रांस पोंकोलविल के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रॉयल रोड जो सुया की ओर जाता है, कॉन्फो, एनएचडीसी नुवेल फ्रांस, मोसिल मोनाबाब सिंह, शमे कोऑपरेटिव के एक भाग में, आलेजा के एक भाग में, शमे कुमलुन, शमे लाफोर, शमे देबिदोयाल पोंकोलविल में और आसपास के इलाकों में आज रविवार 6 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर शामुनी विलेज के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि खामा रोड, कांगुरबा और कांफानी में अगले मंगलवार 8 सितंबर को सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे। इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय सुबह के 7:17 हुए हैं।
1: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए। मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। बड़े बड़े संतों ने और महात्माओं ने सहनशीलता को जीने का एक ढंग बताया है। सहने की भावना क्यों आवश्यक है, आइए विचार करें। एक व्यक्ति एक गंभीर रोग का शिकार हो गया। इस बीमारी के कारण वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा कि अब मैं क्या करूं। अपना दुख वह सबको बताने लगा और चिंता में इतना डूब गया कि उसका दुख बढ़ता ही चला गया। एक दूसरे व्यक्ति को वही बीमारी हुई। उसने बीमारी का कारण पहचानने की कोशिश की और अपना इलाज आरंभ किया। उसने सोचा कि उसके किसी कर्म के कारण ही बीमारी हुई होगी। अगर वह बीमारी को सह लेगा तो कर्म का हिसाब किताब यहीं पर पूरा हो जाएगा। फिर बीमारी को आने में तो कई दिन लगते हैं, इसलिए बीमारी एक दिन में तो नहीं जाएगी। जब उसे जाना होगा तभी वह जाएगी। इस चिंता में मैं क्यों पढ़ूं? बेहतर है कि अपने कामों में मैं लगा रहूं। ऐसा सोचकर व्यक्ति ने अपनी बीमारी को स्वीकार लिया और उसे चुपचाप सहन करने लगा। उसका जीवन भी सहज हो गया। श्रोताओं, हर मनुष्य के जीवन में दुख आता रहता है और दुख का रोना रोने से उसको सहने की शक्ति घटती है और दुख को स्वीकार कर लेने से वह कम हो जाता है। इतनी सी समझ अगर आ जाएगी तो हम दुख को सहने में समर्थ होंगे और दुख को जीत लेंगे। इस संसार में कई लोग अपने ही कर्म से प्राप्त होने वाले दुख को जैसे तैसे सह लेते हैं।

0: परंतु जो दुख दूसरों के व्यवहार से मिलता है उसे सहन करने में उन्हें कष्ट होता है। वे या तो दुर्व्यवहार का प्रतिरोध करते हैं या फिर दुर्व्यवहार करने वाले से दूर भागने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध जब कुरु प्रदेश में भिक्षा मांगने पहुँचे तब लोगों ने उन्हें चोर कहकर राज्य से बाहर करना चाहा। लोगों का व्यवहार देखकर बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा, गुरुदेव मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? आनंद ने उत्तर दिया, ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार न करे। बुद्ध ने कहा, यदि तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ और वहाँ भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो तो फिर तुम क्या करोगे? आनंद ने कहा, मैं तो किसी अन्य स्थान की तलाश करूँगा। इस पर महात्मा बुद्ध ने समझाया, नहीं वत्स, हर जगह पर अच्छे व्यवहार और बुरे व्यवहार करने वाले लोग मिल ही जाएंगे। जहाँ पर दुर्व्यवहार हो ऐसे स्थान को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि वहाँ पर शांति की स्थापना न हो जाए। युद्ध भूमि में तो हाथी चलता है, उसे चारों ओर से तीरों के घाव सहन करने पड़ते हैं, पर वह युद्ध भूमि को नहीं छोड़ता। हम भी मैदान छोड़कर न भागें, भागने में कोई उपलब्धि नहीं, सहकर ठहर जाने में ही उपलब्धि होती है। श्रोताओं, जिसको सहना आ जाता है उसे जीना आ जाता है। भाग्यशाली वह नहीं होता जिसे सब कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली तो वह होता है जो अपने भीतर सहने का भाव लाकर सब कुछ अच्छा बना देता है। हम सहने का भाव अपनाएं और जीवन को सहज बनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर और हमारी आपकी ये मुलाकात है बहुत प्यारी सी हंसी सी। चलिए ज़रा हम पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, बल्कि बताते हैं आप लोगों को डिटेल, छोटा सा डिटेल हमारे रेडियो के कार्यक्रमों के बारे में।
1: झलकियाँ
2: झलकियाँ
0: तो इस वक्त तो हम पेश कर रहे हैं आपके लिए सुबह का नजराना, और सुबह का ये नजराना बहुत प्यारा सा रहे आप लोगों के लिए, इस उम्मीद में हमने चुने हैं प्यारे प्यारे से गाने आपके लिए। और जहाँ भी होंगे आप साथ ज़रूर देते रहिएगा, हमारा आपका साथ रहेगा। पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में सुबह के 8:15-16:20 के लगभग से शुरू करेंगे हम पैगाम आपके नाम कार्यक्रम, और उसके बाद आज मंगलाचरण कार्यक्रम सुनिएगा 9:00। और मंगलाचरण कार्यक्रम आज तेलुगु भाषा में होगा, वेंकटेश्वर व्रतम पर, और ये कार्यक्रम आप लिस्ट कालिए से सुन पाएंगे। वंदना पेश करेंगी और यहाँ पर आपका साथ वर्षा देंगी। और ऐसे में समाचार सबसे समाचारों के 10:03 के लगभग आप उर्दू कार्यक्रम निसार की प्रस्तुति में सुन पाएंगे। उसके बाद तमिल कार्यक्रम की बारी आएगी, सुंदरम लेकर आएंगे तमिल कार्यक्रम 11:00। 12:00 तेलुगु प्रोग्राम वर्षा पेश करेंगी, और 1:00 आप सुन पाएंगे आज का मराठी प्रोग्राम शीरिश की प्रस्तुति में। जिन लेकर आएंगे चाइनीज़ प्रोग्राम 2:00। 3:30 रंगारंग आज का गुजराती कार्यक्रम रत्ना

लेकर आएंगी। 4 बजे आप सुन पाएंगे आप और हम कार्यक्रम पूजा से, और 5 से 6 बजे तक पूजा ही लेकर आएंगी आपके लिए आज का तोहर पसीन कार्यक्रम। और उसके बाद समाचार बुलेटिन 6 से 6:30 बजे तक, और ऐसे में समाचारों के बाद आप चाइनीज़ प्रोग्राम होंग होंग से सुन पाएंगे। 7 बजे आप सुनिएगा आज का तमिल प्रोग्राम युवा हासन लेकर आएंगे इसे, और फिर 7:30 बजे तो होगा तेलुगु प्रोग्राम की बारी, और वंदना लेकर आएंगी तेलुगु प्रोग्राम। 7:50 पर गीत गंगा आज का मराठी प्रोग्राम शिरीष लेकर आएंगे, और 8:10 पर रात्रि में आज का प्रभु भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम सुनिएगा, जो आज गणेश भजन पर आधारित रहेगा। डॉक्टर अलका धनपत पेश करेंगी ये प्रोग्राम। फिर 8:40 पर उर्दू प्रोग्राम महफिले शब समीर पेश करेंगे, और उसके बाद आपका मनोरंजन होगा भोजपुरी गीतों के साथ भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम 2 घंटों का होगा। 9 से 11 बजे तक प्रताप पेश करेंगे। फिर रात्रि के 11 बजे से 12 बजे तक आपका फेवरेट प्रोग्राम सुनहरे पल पुराने गानों का प्रोग्राम, इसे लेकर आएंगी हमारी सखी गिनीशा, और हमारा आपका साथ माफ़ कीजिएगा हमारी सखी नीतूषा पेश करेंगी आज का सुनहरे पल कार्यक्रम, और आपका मनोरंजन बड़े प्यार से करेंगी। तो ये था एक छोटा सा डिटेल हमारे प्रोग्राम के बारे में, हमारे रेडियो रेडियो मॉरिशस के प्रोग्रामों के बारे में। आप जहाँ भी होंगे रेडियो मॉरिशस का साथ देते रहिएगा, आपका मनोरंजन इस बार हम एक प्यारे से गाने के साथ करेंगे, और ये गाना होगा मैं प्रेम की दीवानी हूँ मूवी से लिया गया। चलिए ज़रा अजनबी से 2 बातें कर लेते हैं, वो अजनबी जो दिल के करीब रहा करता है।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: सो हुजूर, इन खुशियों के बीच शामिल है एक क्वीज गेम। तो चलिए आप लोगों के लिए क्वीज पेश करते हैं, और ये क्वीज अगर आप जीतते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप देते हैं, तो आपको बगातेल में हो रहे और शीजावाता सर्कस के 2 एंट्री टिकट्स मिलने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी पूरी फैमिली के साथ यादगार एक्सपीरियंसेस के लिए, जो मैजिक थ्रिल ठहाकों से भरे शानदार सर्कस परफॉर्मेंस में मिलेंगे आपको। सियक जावाता जो बगातेल में लग रहा है हर थर्सडे और फ्राइडे को शाम के 6 बजे से, हर संडे को दिन के 2:30 बजे से, यानी कि द्विजथों से शाम के 5:30 बजे तक। जानकारियों और बुकिंग्स के लिए कॉल कीजिएगा 5250 9413 5250 9413 पर। डोंट मिस द मैजिकल बिग शो, और हमारे इस प्रोग्राम में भाग लीजिए, हमारे इस क्विज में भाग लीजिए। हमारा प्रश्न है कि हम बाइसिकल को बाइसिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 2 पहिए होते हैं, 2 व्हील्स। अगर उसमें 1 पहिया हो तो उसको क्या कहेंगे? जिसमें 2 पहिए हैं उसको बाइसिकल कहते हैं, जिसमें 1 पहिया होता है उसको क्या कहते हैं? ज़रा बताइएगा हमें, और बताइएगा हमें 4028085 पर कॉल करके। कॉल करने वालों में से जिनको ये सही जवाब मिलेगा उनको मिलेंगे 2 एंट्री टिकट्स सियक जावाता के लिए। तो फिर हाल ही गाना चला रहे हैं हम आपके लिए, जब तक कि आप फ़ोन कर रहे हैं, जब तक कि आप आंसर ढूंढ रहे हैं, आप इस गाने का भी मज़ा लेते रहिएगा। बेशक यही है वो गाना जिसे हमने लिया है, मैंने दिल तुझे दिया से।

भाई हमने भी तो आपको थोड़ा सा एंटरटेन किया है, थोड़ा है बाकी, साथ ही देते रहिएगा, बाकी भी हम आप तक पहुंचा लेंगे एंटरटेनमेंट के सिलसिले। अभी तो 7:46 हुए हैं और हमारा क्विज चल रहा है। हमारे क्विज का कुछ हमारे श्रोताओं ने गलत जवाब दिया, लेकिन सही जवाब भी मिल चुका है हमको। हमने पूछा था कि अगर हम इसे बाइसिकल कहते हैं तो इसमें दो पहिए हैं, अगर इसमें एक पहिया हो तो इसको क्या कहेंगे। द राइट आंसर इज यूनिसाइकल। यूनिसाइकल सही जवाब हमें रजनी जोहरा जी ने दिया है। रजनी जोहरा जी रहती हैं ग्रैंड रिवियर नॉर्थ वेस्ट, उनको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस रजनी जी, आपको बगातिल में हो रहे और शीजावाता सर्कस के 2 एंट्री टिकट्स मिलने वाले हैं। याद दिला दें आपको कि ये सर्कस लग रहा है बगातिल में, तो हो जाइए तैयार अपनी पूरी फैमिली के साथ यादगार एक्सपीरियंसेस के लिए, जो मैजिक थ्रिल ठहाकों से भरे शानदार सर्कस परफॉर्मेंस में मिलेंगे आपको। सर्कस जावाता जो बागातिल में लग रहा है हर थर्सडे एंड फ्राइडे को शाम के 6 बजे, हर संडे को दिन के 2:30 बजे यानी दोपहर से शाम के 5:30 बजे तक। जानकारियां और बुकिंग करना चाहते हैं तो जानकारियों और बुकिंग्स के लिए कॉल कीजिएगा 5250-9413 पर, 5250-9413 पर। सियक्सावाता, डोंट मिस द मैजिकल बिग शो। सो कंग्रेचुलेशंस टू रजनी जोहरा जी। तो ये प्यारा सा छोटा सा गेम बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं के साथ बातें करने में बड़ा अच्छा लगा। चलिए आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, मैं हूँ ना मूवी के गाने के साथ। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, कोई ना कोई होता है आपके जीवन में आपको हर कठिनाइयों से निकालने के लिए। अगर वो इंसान के रूप में नहीं है तो वो भगवान के रूप में है, तो वो ऊपर वाले के रूप में है, कोई ना कोई है आपके सिर पर हाथ रखने के लिए।

आपके जीवन में हमेशा कोई रहे जो आपका साथ देता रहे, हमेशा कोई ऐसा रहे जो आपके साथ चलता रहे, हर प्रॉब्लम हर खुशी में आपका साथ दे, हर प्रॉब्लम में सपोर्ट दे आपको, हर खुशी में आपकी खुशी बांटे। और ऐसे में अगर दूर चला जाए आपसे कभी भी कहीं पर भी, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही ले कोई मैसेज भेजने का। अब देखिए ना, दीवानों की ये बातें होती हैं, कबूतर से ही भेज दिया संदेश अपने दिल का। बस इसी गाने के साथ हम आपसे थोड़ा सा विदा होंगे। आप सुन पाएंगे आज के भोजपुरी समाचार 8 बजे, उसके बाद मिलते हैं हम पैगाम आपके नाम

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 8 बजे बाद पेश बा भोजपुरी समाचार। सबको के नमस्ते, भोजपुरी समाचार में ढोलो के स्वागत बाते। हमने के रास्ता पर होई होला घातक दुर्घटना की सूची में एगो और नाम जुड़ गल बा। गिवियनवा से बॉम्बू की दिशा में आज फजीरे करीब 5 बजे एगो जानलेवा सड़क दुर्घटना होल। जानकारी के अनुसार एगो 4x4 वाहन फिसलला के बाद बिजली के खम्बा से जा टकरा गल। वाहन में सवार एगो व्यक्ति जकर पहचान अभी तक नहीं होल बाते के सामी की टीम घटनास्थल पर मृत घोषित कर देलक। डुगो

वो दूसर लोग गंभीर रूप से घायल हो लवंजा उल्लू के इलाज खाते जीतू अस्पताल ले जाल गल। दुर्घटना के सही कारण और परिस्थिति के पता लगाए खातिर पुलिस जांच शुरू कर देवल गलबा। इबीच काल ही विशौनो में भी एक दुखद घटना सामने आल। 19 बरिस के भवेश दुलब जकरा आयुष के नाम से भी जानल जात रहल कि शव इलाका के गुझील से बरामद करल गल। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार रात करीब 8:08 पर बल्कि रात के 8:30 बचाव दल मौका पर पहुँचल। खोज अभियान में JPM के भी मदद लेवल गल। रात 10:10 पर खोज अभियान शुरू करल गल और रात 11:20 पर युवक के शव बरामद करल गल। सचिव निवासी भवेश दुलब सुरक्षा गौत के रूप में काम करत रहलन। उनकर शव के बाद में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शव गृह ले जाल गल। मौत के सही कारण के पता लगाए खातिर शव के पोस्टमार्टम करल जाए। खबर में आगे सरकार द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि NISS प्रोग्राम फिर से शुरू करल जाता जिनकी युवा के बीच नागरिक मूल्य और जिम्मेदारी के भावना के मजबूत करे खातिर निर्धारित है। ई पायलट आधार पर शुरू करल जाए। ग्रेड 8 के 200 छात्र 14 दिन तक नागरिक शिक्षा अनुशासन लीडरशिप सुरक्षा और सामुदायिक प्रतिबद्धता पर आधारित गतिविधि में भाग लियन जा। सिविल सोसाइटी यानी कि सामाजिक नागरिक समाज के भी अहम भूमिका रही। ई नौजवान के सामाजिक वास्तविकता के बेहतर रूप से समझे के और एगो जिम्मेदार नागरिक बने के मदद करी। पोटली में विदेशी मछली मार जहाज के मछली रखे होला होल में फिर से बंकर ईंधन रखे के अनुमति देवल जाए। एक कदम के उद्देश्य मछली पकड़े होला जहाज के दोबारा मॉरिशस के बंदरगाह दिने आकर्षित करे के है। काहे के हाल के समय में एकर खातिर अनुरोध और लाइसेंस में कमी आल बातें। हालांकि व्यवस्था के वापसी कड़ा नियंत्रण संगे हुई जिमें सुरक्षा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करल जा सके। मॉरिशस में बुला के खतरा खातिर निर्धारित क्वारंटीन के कदम 3 महीना यानी कि 7 दिसंबर तक बढ़ा दिवल गलबा। ई नियम खाली ऊ यात्री लोग पर लागू हुई जे लोग मॉरिशस पहुँचे से अगते के 21 दिन के दौरान लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य या दक्षिण सूडान में ठहराव कर ले हवन जा हो जैसे होके गुजर ले हवन जा या इदिश की यात्रा कर ले हवन जा। इन निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के बाद डेवल गलबा। WHO इबोला महामारी के मद्देनजर निगरानी बढ़ाए के और सुरक्षा उपाय अपनावे की सलाह दे बाते। मॉरिशस खाते सतर्क रहे के बेहद जरूरी है। इबोला वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क जैसे कि खून या दूसर जैविक द्रव के माध्यम से फैले सके। यही खातिर मॉरिशस में वायरस के प्रवेश के रोके के और कोनो भी संदिग्ध मामला पर तुरंत कार्रवाई करे के महत्वपूर्ण है। क्यूपी स्थित स्वस्तिका भवन में स्वस्तिका संस्था द्वारा आयोजित गो कार्यक्रम में मन पर नियंत्रण और विचार के संयमित रखे पर खास जोर देवल गल। इस कार्यक्रम में कई गो विद्यार्थी लोग भाग ले लन जा जिकर में प्रदर्शनी चित्रकला प्रतियोगिता और भगवद्गीता पर आधारित कार्यशाला लगावल गल। कार्यक्रम के मकसद रहल विद्यार्थी तक भगवद्गीता के शिक्षा और जीवन मूल्य के पहुँचाए के जिमें उ लोग नकारात्मक प्रभाव के बेहतर ढंग से सामना कर सकें जा और समाज के बुराई और समस्या से दूर रह सकें जा। मेडन कप खातिर आज दोपहर में शौरी मौस पूरी तरह तैयार बाते। मेडन कप के रोमांचक घोड़दौड़ खातिर 2400 मीटर के दूरी होला ई प्रतिष्ठित क्लासिक रेस सीजन के सबसे लंबा दौड़ है और एकर में जबरदस्त रोमांच देखे के उम्मीद बाते। घोड़ा और घोड़दौड़ के शौकीन बड़ी संख्या में ई मुकाबला के देखे पहुँचियन जा। शौरी मौस में आज काफ़ी चहल पहल रही हो जे कुछ लोग ई बड़ा खेल आयोजन के आनंद अपन घर और परिवार दोस्त संगे लेके पसंद करे लन जा। सबसे बड़ा सवाल ई बनल बाते कि आज दोपहर ई प्रतिष्ठित क्लासिक

0: इसमें कौन बाजी मारी। ये खबर रामावालाइडेन औपचारिक रूप से पोल बेरांजे के फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस से जुड़ गल हवन। एक ऐलान काल एफएमपी के प्रेस सम्मेलन बजे करल गल। दूसर देश के समाचार में अमेरिकी सेना बोले बा कि ऊ ईरान से जुड़ल दुगो तेल टैंकर के स्थायी रूप से निष्क्रिय कर देले बाते। एकर में से एगो टैंकर खारग द्वीप के पास रहल। सेना के मुताबिक ऊ ओमान के खाड़ी में एगो तीसरका तेल टैंकर के पूरी तरह नष्ट कर देलक। ईरान के सरकारी मीडिया भी इस हमला के पुष्टि कर ले बा। ओकर अनुसार जवाब में ईरान अमेरिका से जुड़ल तीन गो जहाज पर हमला करलक। एकर अलावा ईरान होमुज जलमार्ग से गुजर रहल तीन गो तेल टैंकर के भी निशाना बनैलक, जिन की उनकर अनुसार अनधिकृत मार्ग से यात्रा करत रहल। गल गो महीना से अपेक्षाकृत शांति के बाद करीब एक सप्ताह अगते दोनों देशन के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गल बा और एक बार ई हमला के नया दौर शुरू हो बा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष वार्ताकार मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करलक। ये बैठक ऐसे समय होल जब यूक्रेन में जारी युद्ध के समाप्त करे के प्रयास तेज हो गल बा और ये वियतनाम में काल आयोजित मिस वर्ल्ड 2026 के विजेता डोमिनिकन रिपब्लिक के जोएरी मोला डोमिंगेज रहल बाते। दूसर का स्थान पर स्पेन के एलिजाबेथ रेनेस अलाबन और तीसर का स्थान पर मलेशिया के तानुसिया चेतियाल बाते। गौरतलब है कि भारत के निकिता पोरवाल टॉप 50 तक पहुँचलक बकेर टॉप 20 में जगह नहीं बना सकलक। कुल 111 गो देश के प्रतिनिधि इ प्रतियोगिता में हिस्सा लेलन जा। डोमिनिकन रिपब्लिक दूसर का हला मिस वर्ल्ड के खिताब जीत ले बाते। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनजा। रॉयल रोड कॉलेज मास्क में 75 बरिस के श्वासन कैंजों के श्रीमती रूमिला जोन, श्रीमती रूमिला जोन पैदाइश नाम बंधन, जिनका लोग रूमिला से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के डूबज के आधा इनकर मकान रॉयल रोड कॉलेज मास्क से उठा के दाह संस्कार खातिर कॉलेज मास्क कहीं शमशान भूमि ले जाल जाए। टागो रोड फोजिसाक में 63 बरिस के स्वसंत वाजों के श्री मनीचंद ऋतु, श्री मनीचंद ऋतु जिनका लोग पानन से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलवा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर बेटा अक्षय ऋतु के मकान टागो रोड फोजिसाक से उठा के दाह संस्कार खातिर फोजिसाक के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। मोसलमा ब्लू प्रिंट तायाक में 97 बरिस के काथोवैजिसितों के श्रीमती लच्छू मामा इलाया, श्रीमती लच्छू मामा इलाया जिनका लोग तौचिन अमाना से जानत रलंजा और इनकर पैदाइश नाम फुलवाडू रहल के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर बेटा गनानंदा दास इलाया के मकान मोसलमा ब्लू प्रिंट तायाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौजाबल के स्मशान भूमि ले जाल जाए। गोटवायाल पेलघय सेबास्तोपुल में 50 बरिस के सैकौतों के श्रीमती प्रभा चुनी, श्रीमती प्रभा चुनी जिनकरा पैदाइशी नाम रामदिया और जिनकरा लोग प्रेमा से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पति श्री संजय चुनी के मकान गोटवायाल पेलघय सेबास्तोपुल से उठा के दाह संस्कार खातिर मोचिदा के शमशान भूमि ले जाल जाए। शातुबिनागस एबेन रोड में 64 बरिस के श्वसन कथों के श्री ईसु मुनियें, श्री ईसु मुनियें जिनकरा लोग सुखी से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर बेटी कुमारी कामिनी मुनिया के मकान शातुबिनागस एबेन रोड से उठा के दाह संस्कार खातिर शातुबिनागस के ही स्मशान भूमि ले जाल जाए। Avenue Bourgon, Boisherie, Mokame, 69 Baris Key, 69 Nivon.

0: श्री गोपाल स्वामी पेरिया स्वामी, श्री गोपाल स्वामी पेरिया स्वामी जिनकरा लोग रवीन से जाने तरलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1:00 इनकर मकान आवेनी बोगो बुआशरी मौका से उठा के दाह संस्कार खातिर सिया कोंस्टां सेंट पियर के शमशान भूमि ले जाल जाए। भंजन रोड सुरीनाम में 47 बरिस के कहन से तौके श्री सूरज दीनदयाल, श्री सूरज दीनदयाल जिनकरा लोग सूरज से जाने तरलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2:00 इनकर मकान भंजन रोड सुरीनाम से उठा के दाह संस्कार खातिर रोजबेल के शमशान भूमि ले जाल जाए। ओठवायाल ब्रह्मस्थान में 92 बरिस के कथोवै दूजों के श्रीमती सावित्री अपादू, श्रीमती सावित्री अपादू पैदाइश नाम पापिया जिनकरा लोग मादाम ताताई से जानत रलन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 11:00 इनकर मकान ओठवायाल ब्रह्मस्थान से उठा के दाह संस्कार खातिर ग्रीष्मा फ्लाक के शमशान भूमि ले जाल जाए। धनुष लेन ले ओशे त्यागोज में 71 बरिस के 61 के श्री सुपाया उसराल, श्री सुपाया उसराल जिनकरा लोग दसन जनता से जानत रहन जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10:00 इनकर पत्नी श्रीमती लक्ष्मी उसराल के मकान धनुष लेन ले ओशे त्यागोज से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआ मौशों के स्मशान भूमि ले जाल जाए। गुड़बिन लेन मेबर्ग में सतीश मैकेनिक के करीब 98 बरिस के जिसवितों के श्रीमती अपलामा जोगाना, श्रीमती अपलामा जोगाना जिनकरा लोग तौचिन अपलम से जानत रलन जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10:00 इनकर बेटा श्री आत्मा जोगाना के मकान गुबिन लेन मेबर्ग सतीश मैकेनिक के भीरी से उठा के दाह संस्कार खातिर तोबो मेबर्ग के शमशान भूमि ले जाल जाए। काथकाहो स्ट्रीट ओकुले में 37 बरिस के थनसेतों के श्री केशवन नारायणन, श्री केशवन नारायणन जिनकरा लोग केशवन से जानत रहन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज फजीर के 9:00 इनकर भाई डोमन नारायणन के मकान काथकाहो स्ट्रीट ओकुले से उठा के दाह संस्कार खातिर बिगाहा के शमशान भूमि ले जाल जाए। ओठवायाल सुयर सेबास्तपुल में 51 बरिस के 51 के श्री दया रामरचिया, श्री दया रामरचिया जिनकरा लोग ऋषि प्रेसिडेंट से जानत रलन जा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10:00 इनकर भाई शैलेश रामरचिया के मकान ओठवायाल लेस्यूर सेबास्तपुल से उठा के दाह संस्कार खातिर लेस्यूर के ही श्मशान भूमि ले जाल जाए। और रॉबिन्सन रिवरलेन क्यूपिप में 74 बरिस के 64 के श्री बलाल रामेश्वर, श्री बलाल रामेश्वर जिनकरा लोग अनिरुद्ध से जानत रहन जा के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 12:00 इनकर मकान रॉबिन्सन रिवरलेन क्यूपिप से उठा के दाह संस्कार खातिर बिगाहा के शमशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने के दिली हमदर्दी बातें।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez. À la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: MBC Radio, 24 hours a day.
2: इस समय 8:17 हुए हैं. अभी आप सुन रहे थे आज के भोजपुरी समाचार करुणा से. और चलिए आप लोगों के लिए एक विज्ञप्ति पढ़ते हैं हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तायाक के निवासियों को सूचित करता है कि NHDC तायाक में और सियाशा तायाक में कल सोमवार 7 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. इस मरम्मत कार्य के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी. इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है. और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने इन ग्राहकों से अपना इंतजाम कर लेने की मांग करती है. OCB की ओर से ये विज्ञप्ति थी आपके लिए. इस समय सुबह के 8:18 हुए हैं और ये रेडियो मॉरिशस है, लेकर आए हैं आपके लिए पैगाम आपके नाम. पैगाम आपके नाम में आप ज़रूर अपने अपनों को पैगाम भेजिएगा. और पैगाम भेजने के लिए नंबर होगा मैसेजेस के द्वारा 5251700 और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर होगा 4028085. जो भी आप माध्यम अपनाना चाहते हैं उसके ज़रिए आप अपने अपनों को खुशियों की दुआएं ज़रूर दीजिएगा. कोई भी इवेंट हो फैमिली में, दोस्तों के बीच में, आप उन्हें विशेस करना चाहते हैं, विशेस भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमें या तो व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा या फिर SMS भेजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा. हम आपके मैसेजेस आपके अपनों तक ज़रूर पहुँचाएँगे. हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और आप लोगों का स्वागत करते हैं. वैसे हमारा आपके साथ तो सुबह 6 बजे से है और सुबह 6 बजे से हमारा साथ हमारे कई श्रोता निभा रहे हैं जिनमें शामिल है लक्ष्मण सिगोबिन जी अपने पूरे सिगोबिन परिवार के साथ क्लेफो वाकुआ में, मौदालबे से अनीता जी, बशहरी से राजन लक्ष्मण जी, त्रियोले से सूरज शर्मा सजादा जी हमारा साथ दे रहे हैं. तो चलिए आप सबके नाम करते हैं हम ये पहला वाला गाना. और ये गाना हम इसलिए पेश कर रहे हैं कि जीवन पथ पर हमेशा आप जीतते हुए आगे बढ़िए, जीतते हुए इस जहां में अपना स्थान बना लीजिए.

हमारा आपका साथ पैगामों के साथ है। पैगाम आपके नाम प्रोग्राम है ये, और पैगाम आपके नाम प्रोग्राम है। आप अपने अपनों को भेजिएगा अपने संदेश से। इनफैक्ट अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी श्रोता विश्वानी जी, और विश्वानी जी का कहना है कि उनकी मौसी का है जन्मदिन, और विश्वानी जी ने मौसी जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएँ भेजी है। उनकी मौसी जी फ्रांस की रहने वाली है, और फ्रांस में रहते हुए उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ उनके पूरे परिवार की तरफ से मिल रही है। विश्वानी जी की बहन इंदिरा, शारदा, गीता और उनकी सहेलियां मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ उन्होंने अपने अपनी मौसी को 95 इयर्स का ये जन्मदिन बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ विश किया है, और उनका ये भी मानना

है कि मौसी जी की सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी दुआएं हैं। तो चलिए मौसी जी को हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से।

तो चलिए इतना हम याद दिलाएं हमारे श्रोताओं को कि आप अगर फ़ोन करना चाहते हैं तो 4028085 पर फ़ोन कीजिएगा। अगर मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो 5251705 पर मैसेजेस भेजिएगा। हमारे साथ चित्रा जी भी हैं, हमारा साथ दे रही हैं। उन्होंने विजय बंधन जी को मंगल कामनाएं भेजी हैं संडे की। उनकी पत्नी रेखा को उन्होंने आशा जानू जी को भी, उनके पूरे परिवार को, अपने पति ज्ञान, अपनी सखियों को चमेली नागन और नंदिनी को तथा ललिता चरण जी को बहुत सारी मंगल कामनाएं भेजी हैं। तो आप साथ साथ हमेशा रहिएगा और साथ साथ रहते हुए अपने जीवन में बहुत अच्छे पल बिताइएगा चित्रा जी।

तो हमारा साथ देने वाले श्रोताओं में हैं आकाशी तनमन सुख जी बॉम्बू से, उन्होंने वे हमारा साथ पूरे परिवार के साथ दे रहे हैं। उनके साथ है उनकी मम्मा और उनका पूरा परिवार, और आकाशी तनमन सुख जी की तरफ से हम आप सबों को हैप्पी संडे विश करते हैं। और हमारा साथ देने वालों में अनीता जी भी हैं फ्लिक ऑन फ्लैक्स से, और सुदेवी जी हमें बता रही हैं कि उनके परिवार में बर्थडे का माहौल है क्योंकि उनकी नातिन प्रणीता ने अपना जन्मदिन मनाया और उनको जन्मदिन की मंगल कामनाएं उनकी मामा अनुषा की तरफ से, पापा किरण, बहन केशिनी की तरफ से, भैया कृषय, दादी सत्यभामा, नानी इंदिरा, दिव्यानी सुनीता और मामू विकास की तरफ से, कजिन्स आरती, तलीना, तनीषा की तरफ से, और पूरे राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार और कुवाहू परिवार, दीपुआ और उजागिया परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं प्रणीता को उसके 18th बर्थडे के अवसर पर। तो चलिए उनके लिए हम हैप्पी बर्थडे विश ज़रूर भेजते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्रणीता।

पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जहाँ भी होंगे खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऊपर वाला आपको हर तरह से खुशियों के पल देते रहें। चलिए ज़रा हम आगे बढ़ते हुए चांदनी पुरुषोत्तम जी को थैंक्स कहते हैं हमारी इस शो में भाग लेने के लिए। और इधर लवली ममा तुलसी, रानी तुलसी जी का बर्थडे है, मौदालबे की रानी तुलसी जी का जन्मदिन है, उनके बच्चों की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं रानी तुलसी जी को। कवि युवराज, बहुकृष्टि, दिव्या और लवली लवली सी नातिन चेष्विका ने आपको रानी तुलसी जी बहुत बहुत मंगल कामनाएं भेजी है। आपका जन्मदिन कल है, 7th September, सो आपके जन्मदिन की तैयारी तो बड़े प्यार से हो रही है, दिख रहा है हमको। आप बहुत खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने परिवार के बीच में बहुत बहुत सारा प्यार पाएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

सो हमारा साथ देने वालों में हैं साधना जी वैदिक क्रियोल से. उन्होंने हमारा साथ देना शुरू किया है अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर. उनके पति देवानंद, बेटे नितेश, कुशल, करण, बेटियां अनुषा, मनशा, दामाद सतीश, बहू कविना और समीता, नाती नातिन, जिया, तेजल, गौरव, क्रियान और सबसे छोटा सा लड्डू सा गोपाल, लड्डू गोपाल सा तस्वीर और सभी जीवन परिवार की तरफ से, पुगाऊ परिवार की तरफ से, विवियत खेल और मौदाल बेया तथा यूनियन पॉक लाहौजा और दुबई के पूरे परिवार की तरफ से हमारी श्रोता साधना जी ने हमारे सभी श्रोताओं को हैप्पी संडे विश किया है. और बर्थडे विश करते हैं हम ईशा जी को. ईशा जी न्यू कोव या मोदालबे हम से अभी अभी उनकी पुपू जी ने बताया. बस हम मिस कर गए विलेज, फिर भी जहाँ भी आप रहती हैं बहुत खुश रहिए, बहुत सुखी सुख से रहिएगा. ईशा जी अपना जन्मदिन मना

रही हैं, अकेली नहीं मना रही हैं, अपनी बहन शिक्षा के साथ मिलकर मना रही हैं, उनकी शिखा के साथ मिलकर मना रही हैं। उनकी बहन शिखा और ईशा जी दोनों ट्विंस हैं, सो आज अपना जन्मदिन बड़े प्यार से बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं और ईशा जी के फियांसे की तरफ से उन दोनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मेबग से फूफू मिंता जी ने

प्रकाश अनुषा की तरफ से, भुजवन परिवार और सिटी ऑफ पैलेसेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू शिखा एंड ई

प्रेम का एक गुलदस्ता होता है। पैगामों के बीच शामिल है आज वानिसा जी के जन्मदिन के पैगाम। वानिसा जी रहती हैं पितों, उनको बहुत सारी मंगल कामनाएं उनके पति केशन की तरफ से मिली है और उनके बेटे पिराय की तरफ से और उनकी मम्मा की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारा प्यार। बस उनके जीवन में चांदनी सी हल्की सी रोशनी हमेशा ऐसी रहे जो उनके मन को शांत रखता रहे और ऐसे में उनको खुशियों का गुलदस्ता मिलता रहे। हर एक फूल चुन चुन के वो अपने जीवन में अपने जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बनाती रहे, ये दुआ उनके पूरे परिवार की तरफ से।

0: एक संतोष सदा।
1: पैगामों का ये सिलसिला बड़ा प्यारा सा, बड़ा ही खुशियों वाला होता है और दिल से निकले

करते हैं हम आपके लिए कि हमेशा आपके जीवन में खुशियों का ये नज़ारा रहता रहे और जीवन में आपको हमेशा फूलों का गुलदस्ता, खुशियों का गुलदस्ता मिलता रहे। तो चलिए बस यहीं पर हम अंतिम गाना पेश करते हैं जुर्म मूवी का, और जुर्म मूवी का ये गाना पेश करते हुए बस हम यही दुआएं करते हैं कि आपके अपने आप को हमेशा खुशियों का गुलदस्ता देते रहें, आपके अपने आप को सपोर्ट करते रहें, चाहे कोई भी कठिनाई हो, उस कठिनाई में साथ आपको मिल जाए अपनों का, तो उस कठिनाई से जूझने में आपको एकदम से आसानी हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ बस हम यहाँ पर समाप्त करते हैं आज का हमारा पैगाम आपके नाम कार्यक्रम। 9 बजे आप सुनिएगा संस्कृत समाचार, उसके बाद मंगल आचरण प्रोग्राम होगा, और आज का प्रोग्राम होगा वेंकटेश्वर व्रतम के अवसर पर, और ये प्रोग्राम आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में। तो वंदना और वर्षा आपका साथ देंगी, तो हमारी आपकी मुलाकात यहीं पर समाप्त होती है, और अगली बार फिर मिलेंगे। शुभ संडे।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। आज सुबह करीब 5 बजे बाओबू की दिशा में गिव्यानवा के रास्ते पर एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। खबर है कि एक 4x4 वाहन रास्ते से हटकर बिजली के खंभे से जा टकराया। घटना स्थल पर पहुंचने वाली सामयिक की टीम ने वाहन में सवार एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को इलाज के लिए जीतू अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना के सही कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के वास्ते पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ कल रात गिशानों में भी एक और दुखद घटना सामने आई। 19 वर्षीय भवेश डुलब, जिन्हें आयुष से भी जाना जाता था, का शव इलाके की एक झील से बरामद किया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार JPM की मदद से खोज अभियान चलाया गया। रात 10:10 पर खोज अभियान शुरू किया गया।

0: और रात 11:20 पर युवक का शव बरामद कर लिया गया। सैचुबेया निवासी भवेश दुलब सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। मौत के सही कारण का पता लगाने के वास्ते शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मॉरिशस में बुला के खतरों के लिए निर्धारित क्वारंटीन के कदम 3 महीनों यानी कि 7 दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। ये नियम केवल उन यात्रियों पर लागू होते हैं जिन्होंने मॉरिशस पहुंचने से पहले के 21 दिन के दौरान लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य या दक्षिणी सूडान में ठहराव किया हो, वहां से गुजरे हो या यात्रा की हो। ये निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के बाद दिया गया। WHO ने इबोला महामारी के मद्देनज़र निगरानी बढ़ाने और एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह दी है। और आज दोपहर शौरीमॉस मेडन कप की रोमांचक घोड़दौड़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 2400 मीटर की दूरी वाली ये प्रतिष्ठित क्लासिक रेस सीजन की सबसे लंबी दौड़ है और इसमें ज़बरदस्त रोमांच देखने को मिलने की उम्मीद है। और विदेश में अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान से जुड़े 2 तेल टैंकरों को स्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया है। इनमें से एक टैंकर खार्ग द्वीप के पास था। सेना के मुताबिक उसने ओमान की खाड़ी में एक तीसरे तेल टैंकर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ईरान की सरकारी मीडिया ने इन हमलों की पुष्टि की। उसके अनुसार जवाब में ईरान ने अमेरिका से जुड़े 3 जहाज़ों पर हमला किया। इसके अलावा ईरान ने होमोज जलमार्ग से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया जो उसके अनुसार अनधिकृत मार्ग से यात्रा कर रहे थे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: Haldiram's vous souhaite une bonne journée. Haldiram's, the authentic taste of India.
3: Vous êtes connu qui m'en vit là? Un bon paneer butter masala avec un naan. Yummy!
4: Tu connais qui me fait avec paneer, moi? Ban brochette. Mou met zot mariné dans yaourt avec la poudre tandoori. Grillé le barbecue, il est extra bon.
5: Pati qui te zafé, capable à faire avec naan et paneer. Frire, nature ou en bloc, capable à préparer naan et paneer pour tout repas et pour tout ce qui ont envie manger. Naan et paneer, le vrai paneer, fait avec du lait de vache frais.

0: दिन के ठीक 10 बजे हैं, सुनते हैं देश विदेश की खबरें। करुणा जी से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। आज सुबह करीब 5 बजे बाओबो की दिशा में रिवियनवा के रास्ते पर एक जानी सड़क दुर्घटना हुई। खबर है कि एक 4x4 रास्ते से हटकर बिजली के खंभे से जा टकराया। घटनास्थल पर पहुंचने वाली सामी की टीम ने वाहन में सवार एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को इलाज के लिए जीतू अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना के सही कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के वास्ते पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ कल रात खिशानो में एक दुखद घटना सामने आई। 19 वर्षीय भविष्य दुलप का शव इलाके की एक झील से बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार जेपीएम की मदद से खोज अभियान चलाया गया और रात 11 बजे के करीब युवक की लाश बरामद की गई। सचिवया का ये निवासी सुरक्षा गार्ड था। मौत के कारण का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सरकार द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि निस प्रोग्राम फिर से शुरू किया जा रहा है, जो कि युवाओं के बीच नागरिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने के लिए निर्धारित हैं। इसे पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। ग्रेड 8 के 200 छात्र 14 दिनों तक नागरिक शिक्षा, अनुशासन, लीडरशिप, सुरक्षा और सामुदायिक प्रतिबद्धता पर आधारित गतिविधियों में भाग लेंगे। रामावलाई देन औपचारिक रूप से पोल बेरांजे के फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस से जुड़ गए हैं। इसका ऐलान कल FMP के प्रेस सम्मेलन के दौरान किया गया। विदेश में वियतनाम में कल आयोजित मिस वर्ल्ड 2026 की विजेता डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला डोमिंगेज रही हैं। दूसरे स्थान पर स्पेन की एलिजाबेथ रेनेस अलाबन आई, जबकि तीसरे स्थान पर मलेशिया की तानुसिया चेती। गौरतलब है कि भारत की निकिता पोडवाल

0: तब 40 तक पहुंची, लेकिन तब 20 में जगह नहीं बना सकी। कुल 111 देशों के प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। डोमिनिकन रिपब्लिक ने दूसरी बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। ब्रंच रोड के वलनगर बेलगेव में 71 साल के 71-year-old श्री संदेव भीमोनाय को जो धनेश्वर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान ब्रंच रोड के वलनगर बेलगेव से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कॉर्मेशन टूडे एट 2 PM। रामाकृष्णा मिशन रोड सेंट जूलिया में 55 साल के 55-year-old श्री शिवानंद लट्टू जो करण से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी माँ सुमित्रा लट्टू के मकान रामाकृष्णा मिशन रोड सेंट जूलियन से उठाकर दाह संस्कार के लिए सेंट जूलियन डुतमों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 61 ऑसेनाली स्ट्रीट पोट्री में 92 साल की 92-year-old बीबी रसीदा महाबाली पैदाइशी नाम ईमान बकस जो दादी से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 12:15 इनके मकान नंबर 61 ऑसेनाली स्ट्रीट पोटवी से निकाल कर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 9:15। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Haldiram's vous souhaite une bonne journée. Haldiram's, the authentic taste of India.
2: 819 kHz, ye hai Radio Mauritius.

सामईन, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल माह रबीउल अव्वल की इन मुकद्दस घड़ियों में हम इस नाम पाक का ज़िक्र खैर करेंगे जो बाईस तख्लीक़ कायनात है। और साथ ही साथ सामईन, आप लोग अपने पैगामात, दुआएं, फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर वही है 5251705251705। आप चाहे तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम आपके पैगामात का इंतज़ार करेंगे। तो आइए इस महफिल इश्क का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। बागौर व अदब समात फरमाइए।

इजहार इश्क से तो खुदा भी न रह सका, इजहार इश्क से तो खुदा भी न रह सका, तारीफ हुस्न मुहम्मद में सारा कुरान लिख दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस में मुतादिद मकामात पर अपने महबूब दाने गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील पैराया नात में किया। खालिक कायनात अज़्ज़ वजल आकाए दो जहां दिलबरे जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी रोए खताब हुए तो नाम लेने के बजाय कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, तो कभी या अय्युहल मुदस्सर कहा, तो कभी यासीन के लकब से पुकारा। लिहाजा रब्बे कदीर ने अपने पाकीज़ा कलाम में नबी रहमत शफीक उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तरह से तारीफ़ व तौसीफ़ बयां फरमाई।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मुअज़्ज़ज़ सामईन, उर्दू प्रोग्राम बज़्मे अक़ीदत में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का पुरखलूस इस्तकबाल करता है। आइए चंद ऐलानात गौर फरमाइए। मंगल 8 सितंबर को सुबह के 10 बजे उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में अलमदीना हॉल कौफुको में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। मुस्लिम सीनियर लेडीज़ एसोसिएशन की जानिब से मंगल 8 सितंबर को बाद नमाज जोहर इदरीस गुमानी सेंटर पोटलवी हॉल ए में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। सभी ख़वातीन को दावत आम है। और उर्दू स्पीकिंग यूनियन की जानिब से सनीचर 12 सितंबर को रात के 8:30 बजे इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोटली में महफिल नात सजाई जाएगी, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नात खां हाफिज़ कमरान कादरी बारगाह रिसाल

अदालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत का नजराना पेश करेंगे। आप सभी को शिरकत की दावत हैं। सामईन, आइए चंद ऐलानात के बाद एक आपकी फरमाइशों की ओर बढ़ते हैं। बेलवेदिया के रहने वाले सलमान कोदाबकस की आज सालगिरह है। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से पूरी एमबीसी टीम की जानिब से नेक ख्वाहिशात। उनकी वालदा नाजिमा और बहनें वर्दा और वाजिदा की तरफ से ढेर सारी दुआएं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियों और बरकतों के नए दरवाज़े खोल दे और आपके आने वाले साल को कामयाबियों, रहमतों और रोशन दिनों से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।

लो झूम के नाम मुहम्मद का इस नाम से राहत होती है। लो झूम के नाम मुहम्मद का इस नाम से राहत होती है। इस नाम के सदके बैठे हैं, इस नाम से बरकत होती है। सामईन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारी महफिल का चराग बना हुआ है। आइए मोहब्बत व अकीदत के इस हसीन सफ़र को आगे बढ़ाते हैं।

मैं इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर प्यारा है कि ये नाम सुनते ही फरते ताज़ीम से हम झूमने लगते हैं। हराश के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर बेसाख्ता दुरूद व सलाम जारी हो जाता है। और ये सब ताज़ीम व तौकीर क्यों ना हो, क्योंकि मोहम्मद तो कहते ही उसे हैं जो काबिल तारीफ़ हो। सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। मरहुमा रहमत बानो के लिए दुआए मगफरत, जिनको इंतकाल हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। उनके बच्चे अनस, उवैस, शाफी, हुदा, सुमैया और मुनीरा की तरफ से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह तबारक व ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मेनिल से मोहतरमा नाजिमा ने अपने मरहूम शौहर, माँ बाप, भाई बहन के लिए इस साले सवाब की दरख्वास्त की है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम मरहूमीन को अपनी बेपाया रहमत के साय में जगाता फरमाए, उनके लग्जिशों को दरगुजर फरमाए और उनकी कब्रों को नूर, सकीनत और दायमी रहमत का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी के साथ सामईन, ये खूबसूरत नाज शरीफ आपकी समागतों की नज़र कर रहे हैं, मुलायजा फरमाएं।

मौज़ा सामईन, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जज्बा है जो इंसान को खुदी से निकाल कर महबूब खुदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक पहुंचा देती है। बेशक जब दिल में आकाए दो जहां दिलबर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उतरता है तो आँखों से अश्क, लबों से दुरूद और अमल से सुन्नत झलकने लगती है। इसलिए शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सामईन, क्यूपिप से मोहतरमा रुबीना अपने तमाम तलबा स्टूडेंट्स के लिए दुआएं तलब करती हैं जो इमसाल आने वाले इम्तहानात में हिस्सा लेंगे। अल्लाह तबारक व ताला उनके बच्चों को बल्कि तमाम बच्चों को कामयाबी व कामरानी अता फरमाए जो आने वाले इम्तहानात में हिस्सा लेंगे। वाकई चंद माह बाद इम्तहानात शुरू हो रहे हैं, ये औकात, ये वक्त बच्चों के लिए नहायत ही ज़रूरी हैं, अहम हैं। तो ये अगला कलाम तमाम बच्चों के नाम।

मोहतरम सामईन, फिलहाल रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ खुशी मनाने का महीना नहीं बल्कि ख़ुद को बदलने, जगमगाने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने का पैगाम है। आइए अपने दिल में, अपनी ज़बान पर और अपनी ज़िंदगी में नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह बसाएं कि दुनिया देखकर कहे, यही वो उम्मत है जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबी हुई है। सामईन कराम, रोज़िल से जनाब इमानदिल फुतूरी फ़िलहाल सख्त बीमार हैं और हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तमाम दस्त मुहम्मद फैमिली की तरफ से ढेर सारी दुआएं। या शाफियाई, इस बीमार को अपनी कामिल शिफा अता फरमा, दर्द को राहत और कमज़ोरी को कुव्वत में बदल दे, जल्द सेहत कामिल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक नाम नहीं, बल्कि ये तो मुहम्मद मोहब्बत रहमत नूर और हिदायत का एक लाजवाल उनवान है। रबीउल अव्वल में जब हम ये नाम बार बार ज़मान पर लेते हैं तो दिल खुद गवाही देता है कि ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा किसी को नहीं पाया। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन व आसमान की जीनत है। जब ये नाम लिया जाता है तो फरिश्ते भी अदब से झुक जाते हैं और अहल ईमान के दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं। सामईन, आज का एक आखिरी पैगाम लेते हैं, मोहतरमा शहनाज की तरफ से एक ख़ास पैगाम। आज उनकी प्यारी बेटी इसरा की सालगिरह है, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। उनके अब्बू अनवर और वाकवा से तमाम रिश्तेदारों की तरफ से ढेर सारी दुआएं। तो ये अगला कलाम प्यारी इसरा के नाम।

पत्थर को तराश कर नगीना बना दिया, सहरा को मेरे रब ने मदीना बना दिया। पत्थर को तराश कर नगीना बना दिया, सहरा को मेरे रब ने मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोर कर रब ने मेरे मोहम्मद का पसीना बना दिया। मोहतशम सामईन, उर्दू प्रोग्राम बज़्म अकीदत अब अपने अख्तिताम को पहुंचा। दिल कहता है ये महफिल इश्क ख़त्म ना हो, मगर वक्त अपने वादे निभाना चाहता है। जहां ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वहां महफिल खुद ब खुद नूरानी हो जाती है। आज हमने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर किया। अल्फाज थक जाते हैं, ज़बान रुक जाती है, मगर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा है कि खामोशी भी उसका ज़िक्र करती है। यही रबीउल अव्वल का पैगाम है कि हर लम्हा हर सांस में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन, आज भी आप लोगों के पैगामात दुआओं का बेहद शुक्रिया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पैगामात ही इस महफिल की जान है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। दिल-ए-नादा को रुख्सत होना गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब अगले इतवार को हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।

लगो इंगे दे।

0: Yeah.
1: Number five. படத்தின் பெயர் மனிதன் தெய்வ மகளம்.

0: Number one, number one.
1: Album Tully Bogre.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से सबसे पहले तायाक गांव के निवासियों को सूचित किया जाता है कि NHDC तायाक और CHA तायाक के सोमवार 7 सितंबर 2026 सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली के सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ में दुसुयाक गांव के निवासियों को सूचित किया जाता है कि शामुनी, रामा रोड, कोंगुलबाव और कौफानी के मंगलवार 8 सितंबर 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली के सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन असुविधाओं के लिए CBI अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्वा सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ। ये रेडियो मॉरिशस हैं।
0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
3: मुत्याल स्वरालु, मुत्याल स्वरालु।
4: మిత్రులారా నమస్కారములు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం భోజనం ముగించుకుని కాస్త తీరికగా కూర్చున్న వేళ బయట ప్రపంచం తమ పనుల్లో పరుగులు తీస్తుంటే మనసు మాత్రం కాస్త నెమ్మదిగా ప్రయాణించే సమయం. అలాంటి ఒక మధురమైన మధ్యాహ్నంలో మీతో కలిసి కొన్ని అందమైన జ్ఞాపకాలను పలకరించడానికి నేను మీ వర్ష. ఇది మీ ముత్యాల స్వరాలు.

听众朋友，欢迎歌曲欣赏节目《差不多这曲迷上》，又要同各位听众朋友告别了，我等人在下次同一节目时间再见。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से तायाक के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर एनआरसी से तायाक और एसआरए तायाक के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि सोमवार 7 सितंबर 2026 को 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: हम और आप नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए 4:15 बज चुके हैं। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। आज का जो विषय है कुछ इस प्रकार है, जिंदगी रिवाइंड बटन नहीं है। काश मैंने वो कहा होता, काश वो डिसीजन ना लिया होता, काश वो इंसान मेरी जिंदगी में ना होता, लेकिन जिंदगी में रिवाइंड नहीं होता, सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर ही होता है। जो बीत गया वो कहानी थी, जो सामने है वही तुम्हारी जिंदगी है। कभी कभी हम कुछ चीज चुन लेते हैं पर जब गड़बड़ हो जाता है तो हम अपने आप को ही कोसते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी रिवाइंड बटन नहीं है। कोसने से जिंदगी सवर नहीं जाएगी, बल्कि वर्तमान में जीने से ही
1: हम और आप
0: आपके जिंदगी में सुधार आ सकता है। तो आइए 4028085 पर आप हमें फोन कर सकते हैं और इस विषय पर आप अपना विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जिंदगी रिवाइंड बटन नहीं होता, कुछ डिसीजन कुछ चॉइसेस हम कर लेते हैं अपने जीवन में जो हम पछताते भी हैं और इसीलिए अपने वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाते। चलिए आप सभी का इंतजार है 4028085 पर। लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
2: सब चल रहा है, ठीक से चल रहा है। हाँ, गले चल रहा है, भगवान के चौसे सब लोग के आशीर्वाद से।
0: हाँ,
2: सब चल रहा है।
0: चलिए बहुत,
2: रुका सुखा खा का जीवन जर रहा है,
0: चल रहा है, चलना भी चाहिए। चलिए बताइए
2: आप जाने ला। हाँ, ये गो जन लावी जीवन है, तो सब आदमी के जन जितना जन्म ले बात है, गो वायाजे है सन हमने। एगो धरा भगवान हमने के भगवान के चला के मेसे के हमने के एगो जन्म दे ले बा इंसान के, तो चाहे ला रिश्ते करे के ना ओकरा सिर्मो के जे जन्म ले लक तब अति में कुल मित्र में एक मजे अति चाहला ई कोई ने से की बारे कर। हां, और कैसे बोलला एगो जब एगो जासे बिक जाला तब तो वो बीत गल तो सके पफा एरिया से हो गल बा, पफा झला पने को लाखो से हो गल बा, तो ओकरा सगबा ओकरा सुधारे, समझ लो। अब जो बीत गल बताओ अब रे से नहीं आई ना, अब चाहे ला फ्यूचर में चाहे हमने के अब सोचे कि का करब स का नहीं करब स कैसे चल चलन सब चाहे ला अथी करे के, समझ लो। तो कैसे हुई इंटेलेक्चुअल से चाहना लीडे लेके बड़ा आदमी जो नती कर ले बा लीडे लेके काहे वो लोग देजा ठोकर लगल बा वो लोग के ना, तो रे से अब ठोकर नहीं लगी ना, तो वो लोग से चाहना आती सीखे कि कैसे बचाई की कैसे जीवन जाए की, समझ लो। काम धाम करे की चाहला सब और उभर सक फीचिया अबे को जाफे हो गल धरला असिबा एरे हो गल ने पुत के कर से एरे तो होला।

0: लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी प्रॉब्लम, देयर मस्ट बी प्रॉब्लम एवरीवेयर.
1: क्या बात है, क्या अंग्रेजी झाड़ दिया आपने.
0: समझ लो जब तहला रेजूट करे के प्रॉब्लम हो.
1: हाँ,
0: कैसे रेजूट करबो, सब हाँ, मिलजुल के लता में बैठ के बचाई के चाहला.
1: हाँ,
0: तब जाके सुधरी, हमारे अकेले से नहीं सकी हुई ना.
1: हाँ, नहीं सकी हुई.
0: हाँ, तब अति को वजह है ये हमारे को छोटा संदेश और सब कोई के अच्छी करते को वजह. नमस्ते
1: नमस्ते तोहरो, और जब भी शुभ संध्या तोहरो भी, और जब जब भी आवेला ना बाई दिला तो ढेर सारी खुशियां लेकर आवेला. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: सुना हमें गुजाफे बोलत है.
1: हाँ जब बोला.
0: हम ढेर धनवान नहीं है, हम गरीबे है. से मैं एगो लाजी और रोज ले जाएला हम भगवान के बहुत हम प्रिय कहला और हम कुमार जहाँ जहाँ जहाँ सकेला तब मदद करी ला हम. समझ लो
1: चाहे ला.
0: और जैसे जो नबी बोल सब ले.
1: हाँ, जो नबी बोले, जो नबी बोले हवा कि ढेर धनवान नहीं हो, ने चाहे ला हो एक ढेर धनवान और खाली हाथ आल हवा, खाली अपन कर्म लेके जाइबा तक धन कमा के कौन ची करबा. हाँ,
0: पूवी धरला जीवन वहां जाता ना
1: जाता. हाँ,
0: काल धरला कुछ एगो खाना दाना उना न रही था भगवान से प्रिय के सकेला लाहो से सब दाना गिराए
1: गिराए. हाँ,
0: और एगो चीज बोला उपजा के करेला, हमने उपजा नहीं कहिला सा ना.
1: हाँ,
0: उपजा हमने प्लौते करेला सा.
1: हाँ,
0: से मो भगवान बड़ा भगवान उपजा करेला.
1: हाँ,
0: फसल देवेला.
1: हाँ,
0: जब देवेला तब हमने के चाहना ओकरा रिमियसे करे के रखे के.
1: हाँ,
0: चाउर सिपाही धान सब अचूटी दाना उना सब रखे के चाहेला
1: जाने की. हाँ,
0: समझ लो.
1: हाँ,
0: हाँ, ये छोटा सा करते और हमेशा हम खुशहाली में रहला.
1: हाँ,
0: हम स्ट्रेस नहीं हो.
1: अच्छा जी, धन्यवाद.
0: हम स्ट्रेस नहीं हो, हम अचूती नहीं सोचिला, बड़ा बड़ा अति नहीं सोचिला. हम जहाँ हले है अच्छा बा,
1: अच्छा
0: भगवान हमरा इतना पर दिले बा. अब फ्यूचर में कहीं नहीं कौन सी करी और हम भगवान से बोला हमरा नहीं दे के दूसरा आदमी के दे के. अब बहुत धन्यवाद. सब संध्या
1: शुभ संध्या आपको.
0: हाँ,
1: एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं. हेलो
2: हेलो. हाँ जैसे नमन करते हैं पूजा जी.
1: चित्रा जी कैसी हैं आप, इतने दिनों के बाद आपको मैं मिली हूँ, आप मिली हैं. हाँ जी, बताइए कैसी हैं आप.
2: मैं खुशहाल मंगल हूँ भगवान की कृपा से, आपके कृपा से पूजा जी.
1: हाँ,
2: तो अच्छा विषय रखा आपने, बहुत अच्छा विषय. शिक्षा पाती है मैं आपसे. आप बहुत छोटी छोटी है मेरे सामने, फिर छोटी जैसे उम्र में छोटी बच्ची जैसे है मेरे मेरे सामने, फिर भी आपसे शिक्षा पाती है.
1: बहुत
2: तो हाँ, तो अच्छा विषय रखा. तो जैसे बोलते हैं ना, जो बीत गया नहीं चिंता करना चाहिए, जो आगे आ रही थी खुशी उसमें उसमें समेटना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुशी देना चाहिए और इनमान कर्म करना चाहिए. कोई ऐसे गलती नहीं बोलते हैं, सबसे गलती हो जाती है ना, कोई प्रॉफिट नहीं है. फिर भी जब गलती हो जाती है तो सुधारना चाहिए और फिर भी और गलती मत करना, किसी को दिल मत दुखाना, किसी को ठेस मत पहुंचाना. छोटी सी जिंदगी है, खुशी से जी लेना और जियो और जीने दो. जो बीत गया भूल जाए हैं.
1: हाँ,
2: जो अभी आ रही है फ्यूचर में जो सामने में है उसको खुशी में, छोटी छोटी खुशी में जी लेना, हंसी खुशी से जी लेना. और यही मेरे विचार है पूजा जी. पता नहीं कोई गलती हो तो
1: नहीं. नहीं, आप हमेशा जब भी आती हैं मुस्कुरा कर बात करती हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी. आप आइए हम और आप कार्यक्रम में, हमेशा आप तो आ जाए हैं तो बार बार आइए और इस कार्यक्रम में भाग लिया कीजिए.
2: जरूर पूजा जी.
1: हाँ,
2: तो अनुमति दीजिए.
1: शुभ संध्या आपको भी. बाय बाय, और स्वस्थ रहिए आप हमेशा. बाय बाय.
2: हाँ,
1: एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं. ये तो मेरा दोस्त है हरीश जी, कैसे हैं आप. नमस्ते.
3: नमस्कार पूजा जी.
1: नमस्कार.
3: हम आपका इंतजार करते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम हमको कैसे बोलते हैं हेल्दी बनाते हैं, हमको सोचने को मजबूर करता है. तो इट्स वेरी लाइवली, लाभी जैसा प्रोग्राम रहा, इसीलिए मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ ये प्रोग्राम. आज का विषय

0: है,
1: जिंदगी एक
0: लाइफ
1: रिवाइंड बटन नहीं
0: जिंदगी
1: है।
0: एक रिवाइंड बटन नहीं है,
1: हाँ जी,
0: ये आपने कहा। ये ठीक है कि हमको आगे, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए जिंदगी में। जैसे कि राज कपूर ने कहा है, मेरा नाम जोकर, 103 घंटे की बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा है। तो बुढ़ापा वापस नहीं जा सकता जवानी में या बचपना में, या
1: हाँ
0: जवानी वापस नहीं जा सकता चाइल्डहुड में। लेकिन कुछ है, कुछ बातें हैं, ऐसे कहते हैं गुड मेमोरीज, अच्छे इवेंट्स होता है हमारी जिंदगी में, तो वो हमको बार बार आता है। क्यों? हमको ऐसे कहते हैं एनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए, हमको याद दिलाते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमको मदद की तो हम भी कुछ मदद करें किसी के, तो हम भुला नहीं सकते। तो ये रिवाइंड बटन आता है कभी कभी, तो सम गुड के लिए, अच्छाई के लिए। लेकिन जो बैड मोमेंट्स है, जहाँ झगड़ा हुआ हो या अनबन हुआ हो, बार बार बस उसने का क्या कहा था, उसने क्या कहा करा हमारे साथ, दिल दुखा या बात, ये सब बातें, ये बैड मोमेंट्स है, इवेंट्स बहुत टॉक्सिक है, ये पॉइजनस पॉइजनस है हमारे जिंदगी के लिए, वाजों है। तो
1: जी
0: हमको उसको अवॉइड करना चाहिए, वापस नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम अगर somebody has been enterré là, hein, l'amour enterré, nous pas déter à lui. Si nous vous déter, l'amour, vous pouvez le dé, elle s'en dit, etc., etc. Very bad, bad, bad smell. तो ये इसीलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे सोचना चाहिए, हमको प्रोग्रेस करना चाहिए लाइफ में, प्लान बना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमको प्लान करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी कौन सब्जेक्ट करना है, अब उसके बाद काम कौन काम करना है, तो हम आगे सोच रहे हैं, आगे सोच रहे हैं 10 साल बाद हम क्या करेंगे, किस तरह की जिंदगी बिताएंगे, हम अपने परिवार में कैसे रहेंगे, हमारे सोसाइटी किस तरह की, हमारी सोसाइटी चाहिए, ये सब हमको सोचना चाहिए। हमको आगे हमेशा पुश बटन, रिटर्न बटन, रिवाइंड बटन नहीं, पुश बटन, हमें आगे हमेशा भगवान के जोर से, उसके आशीर्वाद से, हमारे दोस्तों की मदद से, हमारी सोसाइटी की मदद से, हम आगे हमेशा बढ़ते जाएं। पूजा जी, थैंक यू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी। और
0: बहुत
1: एक ऐसा
0: बहुत
1: पल आया है
0: धन्यवाद।
1: आपके जीवन में जहाँ पर आप पछताए हुए हैं, जो भी आपने चुना है जीवन में। शायद लाइन कट गई, कोई बात नहीं, एक और श्रोता को हम लेते हैं। आप लोग भी अगर किसी चीज़ से जो आप लोगों ने चुनाव किया है और इससे आप लोग जो हैं दुखी हुए हैं या फिर सही नहीं हुआ, उस पर भी अगर आप लोग बात कर सकते हैं तो इस विषय और भी गहरा होता जाएगा। ज़िंदगी एक रिवाइंड बटन नहीं है। और अगले श्रोता का हम स्वागत करते हैं। राधा जी, नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते पूजा जी, तबीयत
1: नमस्ते।
0: कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा जुकाम सा हो गया है।
1: ओ, कोई बात नहीं, कोई बात,
0: हाँ
1: बताइए।
0: हाँ देखिए, वैसे तो मनुष्य को आज ही में जीना है।
1: जी
0: जो कल है, जो हम जिसम कहते हैं कल, जो बीत गया वो अब एक अतीत को बनकर रह गया। जो कल है वो भी कल आज ही था, और जो कल आने वाला है अभी हम उसे भविष्य कह रहे हैं, लेकिन कल वो हमारा वर्तमान ही बनेगा। इसलिए हमको अपने वर्तमान ही में जीना है, क्योंकि देखिए खट्टे मीठे अनुभव तो जीवन में होते हैं। अब यदि हम ये याद करके दुखी होंगे कि 2 साल पहले किसी ने मुझे गाली दी थी, किसी ने मुझे चांटा मारा था, किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत किया था, तो हम उसी में खुड़ते रहेंगे तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जो बीत गया सो बीत गया, क्या करें, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। लेकिन आज हमें सोचना है, देखिए जो भी घटना अभी नेपाल में घटी, उन लोगों को क्या पता था कि जब सुबह उठेंगे तो हम पता
1: ये
0: नहीं
1: सब
0: हमारे साथ
1: होगा।
0: ऐसा हादसा होगा, किसी ने सोचा नहीं था। ये दैवी प्रकोप था, प्राकृतिक प्रकोप था, ये किसी को पता नहीं था, हमें हमें ही नहीं पता भी कुछ पल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है।
1: ये तो
0: इसलिए
1: है।
0: हम अपने आज में हमें जीना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम नेपाल के बारे में सोचते, हमें यही कहना है, मुझे यही कहना है कि कल एक चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था, हम ही नहीं जानते हैं पूजा जी कल
1: जी
0: हमारे साथ कुछ पल में अभी क्या हो सकता है, किसी को पता नहीं।
1: नहीं,
0: इसलिए हम अपने आज में जिए, जैसे भी हमें जीना है, अपने अपने अपने हिसाब से हम जी

0: आज में अपने अपने आज में ही मुझे
1: शुभ
0: इतना ही कहना है। शुभ संध्या और शुभ रात्रि।
1: संध्या आपको, और अपना ख्याल रखिए
0: जी
1: राधा
0: हाँ,
1: जी।
0: जरूर
1: भगवान
0: जरूर,
1: से, जी भगवान से
0: धन्यवाद।
1: यही करेंगे कि आशा करेंगे कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद पूजा जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको हम सुनते हैं। हेलो,
2: नमस्ते पूजा जी, मैं इंदिरा हूँ।
1: इंदिरा जी आपका स्वागत है।
2: हाँ नमस्ते, मैं तो का अच्छा से आपका पकवान देखी।
1: धन्यवाद धन्यवाद, बोलिए।
2: हाँ आज का विषय तो एकदम बढ़िया। हाँ हाँ जैसे बोला है रिवाइंड बटन, मुझे तो हंसी लग रहा है। आज का कलयुग में सभी लोग यही कहते हैं। एक अच्छा विषय लिखा यहाँ बेटी। आज का जो आदमी मिलते हैं आपसे, तो हमेशा भविष्य के बारे में नहीं, हमेशा रिवाइंड बटन कहती है,
1: जी
2: तो मुझे तो हंसी लग रहा। मैं हर रोज मेरे साथ मैं जो करती हूँ फजर, हर रोज सवेरे भगवान को प्रणाम और बोलती हूँ आज मेरा समय कैसे जाएगा। मैं आज में जी जू, मैं जैसे जिपॉस नाउ इज द फ्यूचर, मैं सिक ऑफ द फ्यूचर, व्हाट विल हैपन टुडे एंड ऑन अदर। मंगल सोमवार को सोचेंगे, मंगलवार को सोचेंगे कैसे दिन बीतेंगे, ऐसे सोचना चाहें और ऐसे हमने के माइंड सेट में डालना चाहिए कि जैसे ए न्यू बटन प्रेस करना चाहिए हर रोज। सोमवार को ए न्यू प्रेस बटन, मंगलवार को एक न्यू प्रेस बटन। और मैं तो ऐसे जीती हूँ, जब मेरी भाई बहन को बातचीत करते तो मैं उसको बोलती जाने दे, तू हमारे सब बीता बात नहीं बचाओ, तू बोल अपन बोलता बाता बोली ऐसे बोल हमारा बोल, तू क्या करते हुए कहाँ पोगल करते हुए कहाँ जाते हुए क्या करते हुए क्या नहीं, तू सर नहीं हम भी नहीं खुश रहे ला रिमाइंड बटन पूजा जी।
1: हाँ ये तो है।
2: हाँ
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
2: आपका
1: इस विचार के लिए।
2: एकदम बढ़िया है। हाँ
1: धन्यवाद।
2: और हमेशा आप सुंदर सुंदर बोली विचार लेकर आते हैं। आपको शुभकामनाएं देती हूँ मेरी तरफ से और शुभ संध्या पूजा जी।
1: शुभ संध्या आपको भी, धन्यवाद। हेलो,
3: नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते कमला जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ, आप आ गई हैं ना तो मैं ठीक हो गई।
3: आप मेरे घर आ गई है तो मैं भी ठीक हो गया। आपके मौका तो बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत देखा, बहुत अच्छा से। हाँ बहुत खुश हुआ,
1: धन्यवाद
3: बहुत, बहुत खुश हुआ। हाँ
1: मैं खुश हो जाती हूँ कि आप लोग मेरे इस हार्डवर्क के जो मैं
3: क्यों
1: काम
3: नहीं,
1: करती हूँ ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती हूँ ऐसी ऐसी रेसिपी,
3: बहुत बढ़िया।
1: तो
3: हम
1: आप लोग पसंद भी करते हैं,
3: आपके देख के भी बहुत खुश हो जाती। आपकी बोली में इतना विचार है, मीठा बोली, बहुत बढ़िया से ध्यान ऐसा शांति से बातचीत करते हैं आप लोग, कभी घमंड से नहीं, कभी जोर से नहीं, यही हमारे लिए बहुत है पूजा जी। यही यही हमारी सुंदर वाणी, हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाए, सिर्फ ये सुंदर वाणी, मीठा सबसे बोलना, यही हमारे आप कैसे बातचीत करते हैं बहुत खुशी मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ हाँ आप हमें आगे देखना है, पीछे घूम कर नहीं देखना है
1: जी।
3: पीछे हम लोग जो छोड़ दिया उसे छोड़ देना चाहिए, हमें सिर्फ चलना है आगे। हमारे बड़ा आदमी, हमारे नानी दादी लोग कहते थे कि सिर्फ आगे देखना, पीछे घूम कर देखना है तो ठोकर लग जाता है, ठोकर लग जाता है तो गिरेंगे तो मुंह के भरा, जो बीत गया सो बीत गया, हमें सिर्फ आगे। जोन हमारा रिश्ते नाते, जोन हमारा परिवार है, जे हमें मानता है उसे मानना चाहिए
1: जी।
3: फिर आगे ही देखना चाहिए, जो छूट गया तो छूट गया, उसे उसे उसे अपने दिमाग नहीं खराब करना चाहिए, अपने दिन नहीं, अपने तबीयत नहीं खराब करना चाहिए, जो है उसी पर गुजारा करना चाहिए, जो मिला है हमें उसी पर ध्यान, उसी पर देना चाहिए, उसमें खुश रहना,
1: उसमें खुश रहना चाहिए। और अभी आपने एक बात कही है, जहाँ मान सम्मान मिले वहीं जाना चाहिए,
3: वहीं जाना है, वहीं वहीं, जहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ नहीं जाना है, पीछे घूम कर नहीं ताकना, नहीं देखना है
1: जी।
3: उसे भर सक छोड़ देना है।
1: ये तो
3: यही हम धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी।
3: शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते। हेलो
4: नमस्कार।
1: नमस्कार मीना जी, कैसी हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ, सुन रही हूँ कार्यक्रम को।

0: के विषय के बारे में भी सुन रही हूँ
1: जी।
0: तो मैं क्या कहती हूँ, मैं ये कवि की एक एक पंक्ति से शुरू करूंगी।
1: चलिए शुरू कीजिए।
0: कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी लीजिए। मतलब कि जब हम पढ़ते थे अपने अध्यापन काल में, जब हम जवान थे, जब हम पढ़ते थे, तो कवि की एक कविता है, उसमें आता है कि बीती ताही बिसार दे, मतलब जो बीत गया उसको बिसार दो, उसको छोड़ दो, आगे की सुधी लीजिए। मतलब आगे की सुध लीजिए, आगे भविष्य के लिए सोचिए, वर्तमान के लिए सोचिए। क्योंकि देखिए ना, हमने तो अतीत जो है, बीता हुआ अतीत यानी जो बीत गया, उसको हमने कभी देखा नहीं है। वो बीत गया मतलब देखा है मतलब, लेकिन वो बीत गया, वापस नहीं आएगा। जैसे कि आपने शुरुआत में जिंदगी एक रिवाइंड बटन नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही, मैं एकदम सहमत हूँ। वर्तमान जो है वो हमारा है, भविष्य के बारे में भी हम नहीं सोच रहे। भविष्य को देखना पता नहीं बहुतों के भाग्य में नहीं होता है, भविष्य को देखना कितने लोग देखते, क्योंकि हम सुबह जब जगते हैं तो फिर जब कहीं जाते हैं तो पता नहीं हम लौट कर वापस आते हैं कि नहीं। तो भविष्य के बारे में भी जो कुछ है वो वर्तमान ही है। मैं तो कहती हूँ जो कुछ है वर्तमान में अभी अभी ही उसको जी लो, जो भी करना है अच्छा काम कर लो, और अपने कर्म को हमेशा हमेशा शुद्ध रखो, जैसे बोलते हैं अपने एक्शन को हमेशा प्योर रखना है, शुद्ध रखना है। जो भी कर्म करो शुद्ध रखो, भगवान को अर्पण करो, उसको शुद्ध रखो।
1: और वीना जी, आपसे एक बात और पूछना है। आपने बहुत सुंदर, मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ और हर रोज़ मैं यही करती हूँ आपसे, और आज मुझे आपसे इस विषय के माध्यम से ही, मान लीजिए जीवन में कोई गलती हुई है आपसे, और गलती को लेकर बड़े लोग कभी कभी छोटों को सुनाते हैं कि हाँ तुम ऐसी थी, तुम वैसी थी, अभी भी नहीं बदल, ताना मारते इस पर। ये जैसे मैंने कहा, अभी जिंदगी एक रिवाइंड बटन नहीं है, ताने मारते हैं कि तुम इसीलिए पीछे रह गई हो, देखो वो आगे बढ़ गई हैं। तो ये ताने को लेकर इस पर आप, अगर आपने कोई गलत चुनाव कर लिया उससे पछतावा भी होता है, इस पर भी आप बात कीजिए।
0: गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे दुर्गंध आती है। मतलब जो जो बीत गया वो तो आपको उसको मिट्टी में दफन कर दिया, उसको अंदर तक दबा दिया ना, अब उसको फिर कुरेद कर निकालने से क्या होगा, गंदगी फैलेगी ना, दुर्गंध आएगी ना, तो आपका जीवन दुर्गंध से भर जाएगा, सुगंधमय नहीं रहेगा आपका जीवन, पवित्र नहीं। मतलब जो हो गया उसको, जो ताना मारते हैं ना उनको मारने दो, क्योंकि उनकी यही फितरत है, मतलब उनकी यही आदत है, तो आप उसके साथ लड़ नहीं सकते। उसका उसका दिमाग, उसकी बुद्धि, उसका जो सोचने का जहाँ तक उसका सामर्थ्य है, वो सोचता है और वो बोलता है, तो आप उसके लेवल पर मत आइए
1: जी,
0: उसके लेवल पर मत, वो जहाँ पर है ना उसको मौन हो जाओ, ऐसी परिस्थिति में ऐसी मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, जो बोलते
1: दूर
0: हैं
1: हो जाना तो चाहिए,
0: स्वीकार करो, भले ही आप कैसे बोलते हैं, आपका दोष भी है उसमें, आप जैसे कि कैसे कुसूरवान भी है, तो आप उसको मान लो, उसकी नजर में आप मान लो, बोलो हाँ सब, क्योंकि वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी धारणा बना ली है अपने मन में कि ये तो इसीलिए बिछड़ गया, इसीलिए इसका ऐसा हो गया, इसीलिए ये हर क्षेत्र में फेल हो जाता है, इसीलिए इसकी हर बार दुर्गति होती। हमारे साथ कई बार इस तरह की घटनाएं घटी है, मैं इससे अछूती नहीं हूँ, लेकिन उससे बल्कि सीख लेना चाहिए, सीख लेकर आगे बढ़ना है। बीती, इसीलिए मैंने शुरुआत में वो दोहे की लाइन सुनाई ना, कि जो बीती चाहिए, बीती बात जो बीत गई उसको आप अपने सर पर मत रखो, उस गठरी को नीचे उतारो, जितना उसको सर पर लेकर घूमोगी ना उतना आप दुखी रहोगी। आप उसको एक तरफ कर दो, उसको इग्नोर कर दो, मतलब उस पर ध्यान ही मत दो, जो बोलते हैं बोलने दो। कहा है, कहावत भी है ना कि कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कुत्ते के भौंकने पर, तो आप भी इसी तरह का सोचना चाहिए, नहीं तो जीवन दुभर हो जाएगा पूजा जी। कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, अभद्र व्यवहार मतलब बहुत गंदा गंदा गंदा व्यवहार किया है आपके साथ, और करता है या बोलता है, तो

0: आपको उसके लेवल उसके स्तर पर नहीं आना है। अगर आप उसके स्तर पर आएंगे तो उसमें और आप में कौन फर्क रहेगा?
1: नहीं रहेगा,
0: नहीं रहेगा ना। तो छोड़ दो, जो बोलने वाला वो बोलता कितना दिन बोलेगा, बोलते बोलते एक दिन वो खुद ही थक जाएगा और आप अपने सीधे रास्ते पर आएंगे और आपका कर्म शुद्ध रहेगा और आप अपना काम करते जाएंगे ना, तो एक दिन वो खुद ही आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो वो खुद आपको आदर की दृष्टि से देखने लगेगा अभी उसे बाद में। वो अपनी मन ही मन उसे बहुत पछतावा होगा कि मैंने इसके बारे में इसे अभद्र बातें कही थी, जैसी गंदी बातें कही थी, जैसा गंदा सोच रखा था, देखो आदमी कहाँ पर। तो आप इस तरह का अपना जीवन व्यतीत करो। बोलने वाले तो लोगों का क्या है, लोगों का काम है, वो तो कहते ही रहेंगे, उनका काम है कहना ना। हमें देखना है कि हम अच्छी बातें का ग्रहण करेंगे या बुरी बातों का। हमें हमेशा अच्छी चीजों का ग्रहण करना चाहिए,
1: ग्रहण करना,
0: बुरी चीजों का नहीं। मैं यही बोलती
1: हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी इस विचार के लिए और इस संदेश के लिए, जो एडवाइस अभी आपने दिए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी।
0: आपने मुझे मौका दिया। मैं तो सोचती हूँ कि मैं इससे आपकी भी जो विवेक है एकदम प्रखर होगी, एकदम आपको भी जो ज्ञान चक्षु है वो खुलेगा, आपका दिमाग भी सोचेगा कि हाँ
1: और वीना जी मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा कोई नहीं है, जो परिवार है इस रेडियो का परिवार ही है, जो हमेशा मैं लाकर आती हूँ।
0: तो आप वर्तमान में जियो
1: जी,
0: क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ है। अतीत पीछे छूट गया, उसका कोई वो चला गया, भविष्य किसी ने नहीं देखा, किसी के हाथ में भविष्य नहीं है
1: जी।
0: हमें जो है वर्तमान में, इसमें जो कुछ करना है इस वर्तमान समय में करो, यही हमारा अपना है, वो हमारा नहीं है
1: जी।
0: ठीक है सुजा जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: और खुश रहिए, हंसती रहिए इसी तरह, और शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी, धन्यवाद, नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो, प्रणाम बहन जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ चमेली जी, कैसी हैं आप?
2: हाँ मैं अच्छी है। मेरा नाम आप बोले अपनी वाणी से तो मुझे बहुत अच्छा लगती है बहन जी।
1: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
2: हाँ देखिए बहन जी, आपने बहुत सुंदर विषय रखा है, पछतावा ना।
1: नहीं नहीं, जिंदगी कोई रिवाइंड बटन नहीं है।
2: हाँ हाँ, जो बीत गया तो फिर से लौट कर नहीं आती है
1: जी।
2: हाँ ये तो बहुत अच्छा विचार आपने रखा है। देखिए बहन जी, जीवन में हमें सोच विचार करके आगे बढ़ना है, नहीं कि पछतावा आए कि क्यों ऐसा हुआ, हम लौटना चाहते हैं, लौट सकते हैं लेकिन कैसे। आपको सोचना चाहिए कुछ करने से पहले, अगर आप अच्छा सोचे तो आपको ऐसा नहीं होता। तो बहन जी मैं तो यही कहूँगा कि जीवन में कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहा है, जो अच्छा सोचता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, सोचने का मौका भी नहीं मिलता है कि क्या होने वाला है। जो गीता को पढ़ता है उसे सब ज्ञान है जीवन के बारे में। मुझे गीता बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जीने की तरीका सिखाया गया है। तो हम नहीं जानते हैं हम क्या करें, फिर हमें पछतावा आते हैं कि हम कैसे पिन से लौटे। तो इसीलिए हम बोलते हैं बड़ों से ज्ञान लेना, बड़ों से ज्ञान लेकर आगे बढ़ना, तो फिर से हमें लौटना नहीं चाहिए। इसे भी आपने बोला, तो अगर हमने सही राह पकड़ा है तो हमें सही भगवान हमें अपने मंजिल तक पहुंचा देती है। तो यही मेरा कहना है बहन जी कि जीवन बहुत सुंदर है, अगर हम जीवन में जीना चाहते हैं तो अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए ये जो जीवन मिला है हमेशा के लिए नहीं। कैसे भी भाग ने बोला, हम सब मुसाफिर है, न जाने कब जैसे घंटी बज जाएगा, हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा सोचे तो हमारा जीवन मजे बहुत सुंदर रहेगा। देखिए बहन जी, कभी हम अच्छा सोचने के कारण हम भटकने लगते हैं। तो कैसे भटकते हैं, हमें ज्ञान नहीं होती है, तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अगर आपके मन में भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो आपको अवश्य मिलेगा। और सत्संग भी अच्छा होना चाहिए, आप किसके पास बैठ उठ रहे हैं इस अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आज के बच्चे सत्संग में जाना नहीं चाहते हैं, कैसे हमें जीना चाहिए। पढ़ा लिखा है हाँ अच्छा है, लेकिन संस्कार नहीं है बहन जी, तो इसी में बच्चे भटक जाते हैं, कभी बड़े भी भटक जाते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि कैसे जीना है, इसीलिए कृष्ण

0: भगवान ने अवतार लिया। अभी कितना उसका जन्म दिवस हम लोग मनाया, कितना सुंदर से, बहुत अच्छा विचार मिलते हैं भगवान के चरणों में। तो अपने बच्चों को यही सिखाना, बहन जी जितने हमें सुन रहे हैं, हम हमारे भी बच्चे हैं, हम भी सिखाते हैं बहन जी, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करने के लिए कि भगवान हमारे बच्चों को सही मार्ग दिखाना, क्योंकि यह दुनिया जहाँ चल रहा है ना बहन जी, जो बड़े हैं तो दुनिया छोड़कर जा रही है बहन जी, जो भाभी जो जवान लोग अभी बड़े होगा तो क्या होने वाला है, तो ये हमें सोचना पड़ जाता है। तो सोचना चाहिए कि ताकि हमारे बच्चों भटके ना, भटक जाए तो बहन जी दुख किसका होते हैं, जो माँ बाप होते हैं घर में उसी के दुख होती है। तो अपने बच्चों को संभारे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, दूसरों को नहीं सुधारेगा, हमें सुधारना चाहिए। क्रोधी से नहीं, कड़वा से नहीं, प्रेम से, प्रेम से समझाओ अपने बच्चों को, ताकि जीवन में सुख शांति मिले, जीवन सुखी रहे। हमारे बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि हमें लौट कर फिर से जिंदगी में, जैसे कि अभी आप फिर से दोहराता हूँ, आपने सही विषय रखा है कि पछतावा ना पड़े, हमें फिर से लौट कर वो बुरे जिंदगी में आने पड़े। तो हमें सोचना चाहिए, कोई सोचते नहीं है ना विचार करता है, वो आगे बढ़ते जाते हैं, जब थोड़ा घड़ी में थोड़ा दूर जाते हैं तो वह खड़ा है, वो खड़े में गिर जाते हैं, तो कैसे लौटेंगे? अगर ज्ञान नहीं हो तो कैसे लौटेंगे बहन जी? तो इसलिए ज्ञान का बहुत बहुत महत्व है, गुरु के चरणों में जाना चाहिए। गुरु नहीं है तो हम भटक जाएंगे, बड़ों हमारे गुरु है, हमारे माँ बाप हमारे गुरु है, तब बहरा में हमारा अध्यापिका रहती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चों अपने माँ बाप की बातें सुनो। आज के दुनिया में बहुत दुख है, ये दुख क्या होता है, हमें ज्ञान न होने के कारण आज बच्चे भटक रहे हैं, गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। क्यों? वो लौटना चाहते हैं लेकिन वो हटिक गया है बहन जी, वो लौट नहीं पाते हैं। तो बहन जी मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, इसी तरह आप अपना विषय लेकर आइए, हमारे बड़ों का ज्ञान मिलते हैं। अभी भाई लोग ने बहुत सुंदर सुंदर वाणी में अपना कहा, बिल्कुल आपके प्रोग्राम जो होते हैं ना बहन, हमें बहुत खुश मिलते हैं। मैंने प्रोग्राम थोड़ा दिन अभी नहीं लिया, परिवार में कोई बहुत बीमार था, दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी हम आपको बहुत याद करते हैं। क्यों? आपकी ज्ञान जो विचार है, जो भाई लोग बोलते हैं, इससे जो खुशी मिलती है बहन जी, जो पकवान हमने पकाया है खाने के लिए वो से नहीं मिलता, जो अच्छा वाणी से इतना खुश मिलती है बहन जी, अंदर से शक्ति जागृत होती है। मैं अपने दिल से कहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपके परिवार सहित, बच्चों सहित, सब भगवान आप लोग पर कृपा करे। जितने हमारे भाई आपके यहाँ पर विचार देते हैं, मैं उन लोगों को भी दुआ देती हूँ, भगवान उनको हमेशा बनाए रखना, स्वस्थ रखना, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। बहन जी शुभ रात्रि आपको,
1: शुभ संध्या आपको, आपको भी। एक और श्रोता को हम सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। और आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर, जिंदगी का कोई रिवाइंड बटन नहीं है?
2: तो सबसे पहले तो आप सभी को, बुजुर्गों को मैं सादर नमन करती हूँ।
1: धन्यवाद।
2: और विषय अनुसार मैं ये कहूँगी पूजा जी, जिंदगी कोई फिल्म नहीं, कोई सीरियल नहीं, या कोई गीत नहीं जिसका हम रिवाइंड करके उसे फिर से देख सकते हैं या सुन सकते हैं। जिंदगी एक सच्चाई है जिसका सामना हर इंसान को करना ही पड़ता है। तब हम सोचते हैं काश एक रिवाइंड बटन होता तो सच में एक फिल्म की तरह हम रिवाइंड करते, पर नहीं, हकीकत की दुनिया कुछ और ही होती है। एक बच्चा एग्जाम देने बैठता है, एग्जाम के बाद जब वो पुनः विचार करता है, उसका रिजल्ट आता है, तब वो सोचता है काश कि अब मैं जाकर उस एग्जाम को देता तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता, मैं इससे अच्छा काम कर सकता था। जब ये अवसर मिला था तो मेरे हाथ से यह अवसर निकल गया। पर जब इसलिए मैं कह रही हूँ ना पूजा जी, जब हकीकत का सामना करना पड़ता है तो बहुत पछतावा होता है, क्योंकि हमें एक अवसर जब मिलता है तो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो एग्जाम हो, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो, या कोई टेस्ट हो, या कुछ कोई एक ऐसे कुछ एक सपना हो जिसे आपने बरसों से देखा है और आपको एक अवसर मिला और आपने अच्छा नहीं किया, तो लगता है काश फिर से एक रिवाइंड होता तो मैं इसे दबा देती और मुझे फिर से एक करने का मौका मिलता। पर सही कहते हैं जैसे रिवाइंड बटन होता अवसर भी बार बार नहीं मिलता। उसी प्रकार पूजा जी रिश्तों में भी

0: वैसा ही होता है। अब जैसे रिश्तों में एक बहस छिड़ जाती है, वाद विवाद हो जाता है, तो जो नहीं कहना चाहिए था हम वो कह देते हैं, पर देर हो जाती है ना, क्योंकि इसका भी कोई रिवाय नहीं होता है ना कि हम फिर से पीछे चले जाएं, जो कुछ बिगड़ा था उसे फिर से संवार दें। ये सब हकीकत में नहीं होता है,
1: ये तो है।
0: इसलिए कहते हैं पूजा जी, जिस तरह से आईना टूट जाता है तो वो फिर से नहीं जुड़ता है, जिस तरह से बादल से गिरते हुए पानी फिर से वापस नहीं जाता, उसी प्रकार जब जिंदगी में आपको अवसर मिलता है तो उस अवसर का लाभ उठा, खूब अच्छी तरह से सोच समझ से वो अवसर का लाभ उठाइए, जिससे आप अपने कार्य को अच्छी तरह से मेहनत से लगन से कर पाए, क्योंकि एक बार बिगड़ गया तो सच में उसका ध्यान नहीं होता। तो जो है अभी है, इस पल का है, जो भी है आज है, अपने आज को हम अगर सुधारेंगे तो भविष्य भी सुनहरा फल लेकर आएगा। तो जिंदगी में फिर से ऐसा हमें अवसर नहीं मिलेगा, रिवान बच्चन फिर से नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी कीजिए सोच समझ विचार करके कीजिए, और रिश्तों में भी मधुर वाणी के साथ, ताकि रिश्ते टूटे ना, बिखरे ना, जिंदगी महकती रहे एक फूलों की तरह। तो इन्हीं बातों के साथ पूजा जी मैं कहूंगी शुभ संध्या आपको और
1: शुभ
0: सब
1: संध्या
0: सुनने वालों
1: आपको।
0: को।
1: धन्यवाद आशा जी। एक और श्रोता को हम लेते हैं लाइन पर।

0: पर भी देखी है, उसके लिए भी आप बहुत बहुत सुंदर दिख रही थी साड़ी में, और कितनी सादगी के साथ आपने अपने हुनर को बताया टीवी के पार, और आपने बहुत अच्छे अच्छे जो हैं चित्र भी बनाए, कोशिश भी की, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एमबीसी के कार्यक्रमों में इस तरह से भाग लेती हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को भी जिसने देखा है मुझे और मेरे मेरी कलाओं को सराहा है, देखा है, इसलिए
0: जी
1: बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: तो
0: जी
1: मैं ये कहूँगी पूजा
0: जी
1: कि जिंदगी एक रिवाइंड बटन सच में नहीं है,
0: है
1: फिर भी हमें जीना है।
0: जी
1: कल हमने जी लिया, आज हम जी रहे हैं, और भविष्य के लिए हमें जीना है। तो बिना प्रेरणा के, बिना कैसे नींव के कैसे जिएंगे? कुछ भी कहिए, फिर भी हमें अपने बीते हुए दिनों से प्रेरित होकर जीना है,
0: जी
1: नहीं तो जीने का कोई अंदाज नहीं है। हमें अपने आप को कल के लिए तैयार करना है, अपने आप को भविष्य के निर्माण के लिए तत्पर रहना है। कैसे तत्पर रहेंगे? बिना सोचे विचारे, और यह नई सोच नया विचार कैसे मिलता है? ठोकर लगने के बाद अगर हमें चोट नहीं लगती है, नहीं लगी है, नहीं दर्द दम मिला है, नहीं हम में तड़प है, तो फिर यह जीना कैसा जीना है पूजा? कैसी जिंदगी है? बचपन से लेकर आज तक हमने कैसे, यानी बुढ़ापे तक, हमने तो अपने बीते हुए कल से सीखा है। हमें यूं ही खाना तो नहीं मिलता है ना, नहीं मिला है। हाथ कैसे धरे रहने से हमें कुछ नहीं मिलेगा पूजा। तो
0: जी
1: बीते हुए कल से उदाहरण लो, ये मत कहिए कि हम कैसे जिएंगे, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आगे बढ़ो और बढ़ते रहो, हिम्मत
0: जी
1: साहस और प्रेरणा के साथ अपने आप को जीना है। लेकिन कल को मत भूलो, कल हमारा चला गया, आने वाला कल एक सपना है। तो अपना सपना साकार करने के लिए हमें जीना है, कुछ न कुछ करना है, लेकिन कल को मत भूलना। वो कहते हैं ना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न भुला देना, आए जब याद वो मेरी तो फिर गुनगुनाना आगे चलकर। आप तो, मेरा यही कहना है, यही मेरा विचार
0: आप
1: है। नहीं,
0: भावुक हो गई श्यामा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
1: भावुक तो नहीं हुई, फिर भी
0: जी।
1: हम बीत मैं सचमुच में मैं बीते हुए दिनों में जीती हूँ, क्योंकि
0: मैं
1: मैं
0: भी
1: उनसे बहुत प्रेरित होती हूँ।
0: जी।
1: हाँ, मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। अगर आगे ही बढ़ते जाएंगे, ठोकर नहीं लगेंगे, गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे, संभलेंगे कैसे?
0: जी।
1: गिरना उचित है, संभलना भी उचित है। बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं तो उठेंगे नहीं, उठना नहीं सीखेंगे, और नहीं आगे बढ़ेंगे, नहीं कोशिश करेंगे। जब तक बच्चे को एक थप्पड़ मार नहीं मिलेगा उनके माँ बाप से, तो बच्चा कभी नहीं सुधरेगा,
0: कभी नहीं सुधरेगा जी
1: कभी नहीं
0: जी
1: सुधरेगा, और यूं ही नहीं आगे बढ़ेगा।
0: जी ये तो है।
1: मान लीजिए एक बच्चा जो है, हर बार वो कक्षा में फेल होकर आता है, घर पर माँ देखती है, पिता भी देखता है, किसे कहते हैं, मन महसूस कर रह जाता है। लेकिन
0: जी
1: अंत में जब वो नहीं सकता है तो क्या करता है, थप्पड़ मारता है ना अपने बच्चे को, कि क्यों मारता है?
0: क्यों नहीं
1: सुधारने के लिए, सुधारने
0: जी
1: के लिए ना।
0: जी जी
1: हाँ, तो आपको तो संस्कृत का शब्द ठीक तरह याद है ना, अब तो मैं बहुत कुछ भूलते जा रही हूँ। वो
0: जी
1: कहते हैं
0: जी
1: कि किसे कहते हैं, वो शब्द अभी नहीं आ रही है मुझे, पर है किसी की, बच्चे को सुधारने के लिए कम से कम लारन से ज्यादा तारन अच्छा है।
0: जी जी
1: हैं?
0: जी जी
1: तो ये सब हमें कब, जब हम पीछे मुड़ कर देखें कि हमारी दादी नानी ने हमें कैसे आगे बढ़ाया, कैसे प्रेरित किया, तो एक प्रेरणा है। क्यों आजकल के बच्चे बड़ों को नहीं सुनते? क्योंकि उसे प्रेरित नहीं किया गया है।
0: जी।
1: हाँ, उसे केवल लार किया, मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, मेरा बच्चा वो नहीं करेगा, मेरा बच्चा तो फूल जैसा सुकुमार है।
0: जी
1: हाँ, तो ये सुकुमार जो है ना हमेशा नहीं रहेगा, कम से

0: कम उसे सीखना चाहिए, उसे
1: हम्म,
0: कोमल से कठोर की ओर बढ़ना चाहिए, कठोर बनना चाहिए। एक पत्थर उठाने के लिए हाथ कोमल नहीं होना चाहिए, कोमल
1: जी,
0: भी हाथ जो है ना
1: हम्म,
0: वो किसी कठोर बनता जा रहा है।
1: कठोर,
0: हमने ये सब काम किया तब आगे यहाँ तक आई है ना।
1: हम्म,
0: तो मेरा यही कहना है
1: बहुत
0: बच्चा,
1: बहुत
0: जो
1: धन्यवाद
0: अच्छा
1: शोभना
0: लगे
1: जी,
0: उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे छोड़
1: आपकी
0: दो।
1: सारी बातें मुझे अच्छा लगती है और हमेशा मैं उसको अपने जीवन में उतारती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी,
0: ओके,
1: और आप बहुत
0: आपको
1: सुंदर लग रही थी। हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपकी
0: बहुत
1: सादगी
0: धन्यवाद,
1: बहुत सुंदर है। धन्यवाद
0: धन्यवाद आपको भी।
1: धन्यवाद धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। शोभा जी नमस्ते,
0: नमस्ते पूजा जी, बहना नमस्ते। मैं
1: कैसी हैं आप?
0: ठीक हूँ। एक लाइन सुना रहे, कल तो बड़ी बढ़िया प्रोग्राम देखा टीवी पर, आलू
1: आलू
0: आलू के तक
1: जी,
0: तो आज मैंने वही किया
1: अच्छा आपने भी यही किया, चलिए कोई बात,
0: जी हाँ,
1: मेरी
0: लेकिन
1: पकवान
0: बर्बाद तो
1: काम
0: नहीं मिला
1: काम आ रहा है।
0: जी हाँ, बर्बाद तो नहीं मिला, तो
1: मेरा
0: आलू तो मिला था ना
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक लाइन सुना देती हूँ मैं।
1: सुनाइए।
0: ये ऐसी है, ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, ये मत सोचो कल क्या होगा पूजा जी।
1: हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, और अभी एक और श्रोता को हम सुनते हैं। धनी जी नमस्ते, हेलो,
0: नमस्कार पूजा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार धनी जी।
0: मैं श्यामा बहन का बोली जो है, जो उन्होंने बोला, मैं दाद देता हूँ
1: धन्यवाद,
0: उनके विचार पर कि
1: उनकी ओर से मैं
0: आप
1: आपको धन्यवाद बोलती हूँ।
0: जी,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: जी,
0: धन्यवाद। हमें पहले सीढ़ी को भूलना नहीं चाहिए, जो पहला पग है ऊपर जाने के लिए, अपने जीवन में सीख पाने के लिए। तो बड़ों का जो एहसान है हमें भूलना नहीं चाहिए, जो सीख मिली है जीवन की राह के लिए, जीवन की राह में, तो इसे भूलना नहीं चाहिए। हमें हमारे बीते हुए कल पर इसी में सीख मिलता है आगे बढ़ने के लिए, ये भूलना नहीं चाहिए। एहसान, किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। और किसी ने आपके आपके जीवन में अपने आपके रोशनी बुझाकर अंधेरा किया, ये भी भूलना नहीं है चाहिए। इससे इसे सीख मिलता है कि आप किसी की राह में, किसी के जीवन में अंधेरा न कीजिए,
1: जी
0: कांटे न बिछाइए। अपने जीवन के जो आपको जीने की राह सिखाया, उसके प्रति आपको ईमान रखना चाहिए,
1: जी
0: ईमानदार होना चाहिए जीवन में, माता पिता के प्रति। इसी इसी देखते हैं आज के जीवन में माता पिता कितना दुखी है, बच्चे ईमानदार ईमान नहीं रखते हैं अपने बड़ों के लिए। तो ये सब दुख का जीवन है उनके लिए। आगे कुछ न कुछ, किसी का दिल न दुखाएं, खासकर माँ बाप का दिल न दुखाएं। तो ऐसा सोचना चाहिए, ईमान रखना चाहिए बच्चों को। तो ईमानदार अगर आप नहीं रहेंगे, भूल जाएंगे बीते हुए कल को, आपके जीवन में आपने किसी आपको किसने क्या दिया, तो ये महापाप है। धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी। चलिए एक
0: जी।
1: और श्रोता को हम लेते हैं लाइन पर, नवीन जी हैं। शुभ नमस्कार नवीन जी, कैसे
0: शुभ नमस्कार पूजा जी,
1: हैं आप?
0: ईश्वर की कृपा है मैं कुछ बोल सकता हूँ
1: चलिए बोलिए।
0: के विषय पे। जानती हूँ, सबसे बड़ा सत्य जीवन का वह है जो बीत गया, जो बीत चुका,
1: जी
0: उसे कभी हम वापस नहीं ला सकते, वो मिलेगा ही नहीं।
1: नहीं
0: चाहे
1: मिलेगा।
0: हवाई जहाज पे जाओ, चाहे घोड़ा पर जाओ, किसी भी यंत्र लेकर जाओ, उसे पकड़ना असंभव है। तो मैं कहूंगा आपसे, ताकि हम जीवन, एक नदी जो है ना, उसका जो पानी है उसको हम पीछे नहीं हटा सकते, वो आगे ही बढ़ेगा, यह उनकी कोशिश है।

0: देखिए, अगर समय बीत गया, हम घड़ी को लेकर उनकी सुइयों के पीछे घुमाएंगे तो ये समय की और ज्यादा बर्बादी है। तो मैं कहूंगा कि बीता जो समय, जो वक्त है, न आने का अर्थ है कि हर एक दिवस को हम एक नई शुरुआत लेकर आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्योंकि अभी कहूंगा सोच करके भी। और देखिए बहन जी, ये पूजा जी, जो समय आपके पास है, जैसे लोग बोलते हैं वर्तमान का समय, वही असली समय है। उससे उसका सदुपयोग करो तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे कहते हैं, कोशिश करने वाले की हार भी नहीं होती और जो परिश्रम है उसका फल मीठा होता है।
1: जी
0: ये पछतावा ना करें, अतीत जो बीत गया अपनी ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए, अपनी भविष्य बनाने के लिए उसको हम अच्छे काम मिलेगा। अब एक बात कहूँ आपसे कुछ अलग से, ये जो बज रही है, एक मिनट, मैंने फोन को बंद कर दिया।
1: चलिए बताइए।
0: ये आज की जो हमारा डिजिटल समय है ना, ये टेक्नोलॉजी का समय का युग है, तो हर चीज एक क्लिक पर मिल नहीं जाती है। वहां लोगों को लगता है कि खुशी और सफलता भी किसी बटन दबाने से मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में यह एकदम उल्टा, एकदम विपरीत है। आदमी कभी कभी सालून में खा रहा है, अच्छी बात है खाना चाहिए, लेकिन वो यहीं से बटन दबा करके श्री हनुमान के दीपक को उसको लगा देता है। तो मैं कहूंगा कि बिना मेहनत की खुशी, सच्ची खुशी और संतुष्टि है नहीं। पसीने बहाओ, पसीना बहाओ और खुशी पाओ। ये पूजा जी, मैं कहूंगा आपसे, परिश्रम ही बटन है।
1: बटन।
0: परिश्रम, कोशिश, लगातार कोशिश, लगातार मेहनत, लगातार ये तू ये प्रयास
1: हाँ, प्रयास। और जानते हैं
0: प्रयास
1: नवीन जी, जो कोई आगे बढ़ चुका है, बढ़ गया है, मान लीजिए उसका समय है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है, उसके कर्म के तौर पर वो आगे बढ़ रहा है। पर जो पीछे रह गया, वो भी तो कोशिश पे कोशिश कर रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक रिवाइंड बटन नहीं है। किसी को ताने देना, किसी को कुछ बोलना, या फिर किसी का मजाक उड़ाना, या फिर उसके हालातों पर हंसना, ये भी तो एक एक मान लीजिए एक एक बुरा चीज़ है, एक बुरी चीज़ है, जहाँ पर हम किसी को ताने मारते हैं और उसके बीते हुए दिनों को याद करवा करवा कर उसको ताने देते हैं, ताकि वो और पीछे हो जाए और नीचे हो जाए और उसका हौसला बंद कर देते हैं,
0: देखिए,
1: है ना?
0: किसी की सोच से कुछ नहीं होगा।
1: कुछ नहीं होगा जी।
0: किसी की सोच, अगर मुझे कोई बद्दुआ दे, अगर मैंने बुरा ये काम नहीं किया, वो बुरा काम, तो उसका बद्दुआ उसी के पास लौटेगा।
1: जी
0: और मैं यह बात भी आपको जोड़ना चाहूंगा इस पर, कि जो जो मेरे खून में है, मेरे रक्त में है, वो उस उन लोग दूसरों पर देखता हूं। तो मैं कहूंगा आपसे कि जो व्यक्ति कोशिश पर कोशिश करता है, उसका आत्मा जो जानती हो, हमारा अंतकरण में, हमारा भीतर, उसको आत्मविश्वास कहते हैं, वो जाग जाता है
1: जी
0: और सफल जीवन प्राप्त करता है वो आदमी। जल्दी जल्दी का काम में गड़बड़ी है। छोटा रास्ता की सफलता, जैसे लोग बोलते हैं शॉर्टकट, हम छोटा रास्ता अपनाएं तो जल्द ही पा सकती हैं ये सफलता, पर शीघ्र ही वो चली जाती है। चली
1: शीघ्र
0: जाती
1: चली जाती है।
0: नहीं, वो चली जाती है। वर्तमान मानव तुरंत परिणाम चाहता है। ये कभी नहीं होगा। चाहिए कि हम अपने अपने बीते हुए दिनों से सीखे, चाहे वो कड़वी रही, चाहे वो अच्छा रहा, वो अच्छी रही है, वो दिन अच्छा से बीता, उन सब को सोच करके और अनुभव प्राप्त करके हम सफल जीवन

0: बनाए अपने लिए और दूसरों की जो लोग हमारे पीछे हैं। यही मैं आपसे आज के आपके विषय पर कुछ कहना चाहा। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे
1: धन्यवाद।
0: मौका दिया। छोटी सी दुनिया में फिर से मिलेंगे और कुछ बातें और कुछ विचार बढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ
1: धन्यवाद,
0: संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी नवीन जी, और गरम नाश्ता के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए अंतिम श्रोता को हम सुनते हैं। बसंती जी नमस्ते, कैसी
2: नमस्ते पूजा जी।
1: हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
1: चलिए ठीक होना चाहिए, बोलिए
2: जी
1: आपका क्या
2: जी
1: कहना है।
2: जी जो अपनी जो बीते हुए कल के याद में कर
1: दिला
2: वो
1: दिया।
2: नहीं कहा ना जी
1: हाँ।
2: जी लेकिन जो बीता है ना हम मुझ पर या आप पर के, हम उससे सीखते हैं। उसको भुलाना है नहीं चाहिए, उस घटना को हम याद करके कुछ नहीं मिलेगा लेकिन हम उससे सीखते हैं। एक नहीं, एक सीखते हैं, एक सीख हम
1: सीखते
2: रखते
1: हैं।
2: हैं कि ऐसे करती थी, ऐसे अच्छा एक मैं दो लाइन आपको सुनाओ जा रही हूँ।
1: चलिए
2: जो
1: बोलिए।
2: बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद आनंद के को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। अब एक छोटी सी कविता। अब वे वासर बीत गए, मन तो भरा भरा है लेकिन तन से सब रस रीत गए। चमक छोड़ चौमासे बीत, कंवल छोड़ कर सीत गए, लेकर मधु की उष्मा सारी मेरे मन के पीत गए। अब तो कावल गूंज बची है, जीवन के सब गीत गए, इस राम जाने जीवन में हम हारे या जीत गए।
1: क्या बात है वे! आप जब भी बात करती हैं तो मुझे ताली मारना ही चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत
2: जी
1: बहुत सुंदर
2: जी
1: बसंती
2: जी
1: जी।
2: जी और कुछ कहने के है लेकिन टाइम
1: टाइम टाइम,
2: को
1: ये
2: यस टाइम
1: वक्त,
2: इज
1: ये
2: मनी
1: कम
2: यस
1: वक्त
2: यस
1: वक्त
2: नाउ
1: जी।
2: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी थैंक यू
1: बसंती जी,
2: पूजा जी
1: आपको भी बहुत बहुत
2: जी
1: धन्यवाद।
2: यस
1: थैंक यू
2: जी
1: आपको भी।
2: जी पूजा जी
1: चलिए धन्यवाद, और इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं।
3: हम और आप, हम और आप।

जिंदगी एक रिवाइंड बटन नहीं है। जी हाँ, पर रिवाइंड करना पड़ता है। क्यों रिवाइंड करना पड़ता है? क्योंकि जब ताने मारते हैं कोई, जो भी कोई ताना मारता है आपको, जो भी कोई आप पर हंसता है, हर किसी के जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर कोई ना कोई उसको सुनाता है, हंसता है, अरे कुछ नहीं होगा इसके साथ, कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो वहीं की वहीं रह गई, ये वहीं का वहीं रह गया। पर जिंदगी कब रुक मोड़ देता है ये स्वयं भगवान ही जानता है, और उसने ही आप सभी का कर्म लिखा है। जो भी लिखा है उन्होंने आपके लिए, वही होगा, कोई रोक भी नहीं पाएगा। कहते हैं ना, कोई गिराए भी तो वो ही बचाएगा। और जब कोई भी आपके द्वारे आते हैं कोई सहायता मांगने के लिए, तो उसको सुनना समझना, हो सके तो आपके पास एक दाने भी हो उसको टुकड़े में करके उसको एक टुकड़ा दे दो, पर उसको सुनाओ मत, क्योंकि आप नहीं जानते वो किस रूप में आपके पास आया है और किस स्थिति में वो आपके पास आया है। भगवान के घर पर जाकर उसने हाथ जोड़कर मदद मांगी होगी, सहायता मांगी होगी, तब जाकर भगवान ने आपको चुना है उसकी सहायता करवाने के लिए। इसीलिए जब आप गिरते हो तो उस समय को याद कीजिए, किसने आपकी मदद की, किसने आपकी सहायता किया है। जिंदगी एक रिवाइंड बटन है। जब कोई

हंसता है तो आपको पीछे मुड़कर देखना है आप किस तरह से गिरे हो और किस तरह से गिरकर उठे हो और किसने आपका हाथ पकड़कर थामा है, निकाला है और किसने आपको ताने भी दिया है, किसने आपका दिल भी दुखाया है, वो भी आप याद रखें। पीछे मुड़कर जब आप देखते हो कि कितने आगे बढ़ चुके हो, आप चलांग मार कर आप आगे बढ़ चुके हो, तब आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस उठती है कि हाँ, मैंने लाइफ में, मैंने जीवन में कुछ किया है। भले पैसे नहीं कमाया पर इज्जत तो कमाई है, लोगों का प्यार तो कमाया है, लोगों की सहायता तो की है। घर द्वार, नौकरी, पैसा, ये तो सब कुछ जाएगा, पर जो रहता है वो प्यार रहता है, वो काम रहता है, जो आप लोगों ने जो सहायता दिया है आप लोगों ने, वो ही रहता है। कोई भूखे आए तो उसको खाना देना, कोई गिरकर उसको चोट लगी है तो उसको मरहम लगाना, इसे कहते हैं काइंडनेस, अच्छाई। यही तो जिंदगी है। और जो हो गया है, किसी को ताने मत दीजिए, उसको हौसला दीजिए कि वो आगे बढ़ेगा। उसको ये मत कहना कि वो अनलकी है, अरे तू हमेशा ये सब होता ही रहता है, इसका तो चलता रहता है। नहीं, हौसला दीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जो आप हौसला दे रहे हैं, पता नहीं आगे जाकर वही इंसान आपकी सहायता कर सकता है। शायद आपके अपने खुद नहीं बनेंगे आपके, पर ये इंसान बन जाएगा। किस तरह से, किस रूप में आएगा आप नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं ना, कर भला होगा भला। कहने के लिए ही नहीं, कीजिए आप देखेंगे, भले ही आपके पास कोई नहीं, भगवान आएगा।

नमस्ते और ही प्रणाम तोहार पसंद कार्यक्रम में सब कोई के दिल से स्वागत करत है जा। और जुड़ल हवा अभी रेडियो मॉरिशस के लहरों पर और अपन पसंदीदा गीत सक बजा हमनी के टेलीफोने करे 402-808-5 पर 402-808-5 पर। तो चला अभी हमनी के पहला जोन कॉलर हबत्ते इंदिरा लौतन जी मौदालबिया से हवन और अपन पूरे परिवार खातिर लैका लोग खातिर पति खातिर और जोकर सब संगतिया लोग खातिर है गीतवा के मांग कर ले बातें गीत आगा जादर के गावल गीत माँ बाप के मोल बराही अनमोल।

जानिला हमनी के बर्जना लोग बोले हमन से संगत करा जान के पानी पिया छान के ये सच्चे के ह जब संगत करब निमन आदमी के त निमन विचार मिली निमन संगत मिली है ना और जीवन में सब कुछ निमन निमन निमन जाई है ना त ई जोन है गीतवा के मांग गले बाते रेहाना जी नोटरडम से और खास तौर पर फाजिला बिगन जो हौप के हमन जा और खास के बोलला का खास के फाजिला जी खातिर और रकर माला सुमारू जी और साथ में माला फाउद और बाते सुरेखा जी तो चला ई गीतवा और सब परिवार और संगतिया लोग खातिर और जितना कोई गीतवा के पसंद कैला खास तौर पर रतन जी जो गांवे रहेलन जा और है गीतवा के बड़ी पसंद करेला और ओकर पत्नी खातिर तो चला है गीतवा हमनी सुनी ला सब विनोद सुधर जीत के गावल गीत संगत करा जान के पानी पिया छान के

तभी हमनी के गीता जी चलाल हवन जा बहुफे ऐसे हमनी के सुनत हवन और बोलन अपन छोटी जो है जानवी खातिर और साथ में आदित्य रव तनीश पति जो हवन रोहित और सब परिवार खातिर बिस्वानी दीपा के गावल गीत जुम्बा चाहे ला जुम्बा करे के अभी तक गर्म के समय आए अभी और चाहे ला जुम्बा करे के तंदुरुस्त रब और नीमन से सकब जा अपन जीवन ले जाए ये के चाहेला हमने के चाहेला कसरत करे के कसरत करा जुम्बा करा चला हमनी संगे जुड़ल हमन जा बिस्वानी दीपवा जी चला तोहर सब खातिर कम ऑन एवरीबॉडी बोल दिला

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा

तो चला अभी जो हा निर्मला फावदा जी के गावल गीत और गीतवा के मांग कर ले बाते। महेन जी काथो बोन से पालमा काथो बोन से सुनत हवन और है गीतवा के बड़े मन बातें सुने के उकर सब परिवार खास और पर दीदी मान और उकर सब बहिन भाई लोग खातिर।

बोलल जाला कि एगो संगीतकार जब गीत गावेला तो कर बोली ओकर गीत रह जाला, भले वो नहीं रही रहे परंतु ओकर गीत अमर रह जाला, ओकर आवाजो अमर रह जाला। सही बोलला सा निमन काम करिया सा, काहे कि तोर कर्म ही सब कुछ है और कुछ नहीं। और गीतवा के मांग कर ले बातें लक्ष्मी जी बाबू से और प्रीति रंजीत जी है गीतवा के मांग कर ले बातें। बहुत बहुत धन्यवाद जे जे लोग ई कार्यक्रम में भाग ले वन जा और गीतवा के मांग कर ले बातें। गीतवा सच में जहाँ जेब ठेला ठेली है गीतवा बड़ी ही लोकप्रिय बातें।

0: पियोना चाहे ला पिए के निमन खाए के पकाइबा त ने चाहे ला पिए के पियोना सिदोना चाहे ला हम तो खुशी रही ला पियोना पिए के
1: आ तोरा पिया दे ओ हाजीना
0: पिया दे है की तो के मांगल्य बाते शोभा जी वाकवा से साथ में शांता सुकारी जोकर देवर गोटनी सब परिवार आल हो वंजा उकर लगे निमन निमन तरकारी पकड़ी बाते हैं और गीतवा नहीं मिला तो ये गीतवा डाल देनी और ये गीतवा सुना सुनन चिरंगी जी उकर सब पत्नी उकर पत्नी और उकर सब परिवार खातिर और साथ में बसंती जी हवन वो बासे से बोला था हवन की हमें तो बड़ा अच्छा लगेला सुनाने आन के गीत सुने के हेला

चलो जे कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा, अभी सितंबर के महीना में चला लहन जा, फिर कोई अपन जन्मदिन मनावत हवन जा। और खास तौर पर गीता, भविष्य, गोपुल और उमा सुंदर जी अपन जन्मदिन मनावत।

दगा दिले सुनरवाई गीतों के मांगले बातें दिव्यानी जी साथ में बातें रेहाना जी और जे कोई गीतवा के पसंद करे नंजा सब कोई खातिर रहा।

भागल खसिया और है गीतवा के मांग कर ले बाते नानी सुखलाल जी सब सुखलाल परिवार और का सब बेटी खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते

चला अंतिम गीत विश्वानी दीपा के गावल गीत और गीत वा खासतौर पर शोभा जी वाकवा से और एक संगे पूजा को अनुमति दा हमारे हृदय से सब कोई के नमस्ते स्वस्थ रहिया सुरक्षित रहिया।

रविवार 6 सितंबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रामेश्वर गजाधर अस्तबल के घोरे, रविदास ने मेडन कप 2026 अपने नाम किया है। ये मॉरिशस में घुड़दौड़ की सबसे प्रतिष्ठित रेस है जिसे ब्लू रिबन भी कहा जाता है। इसे देखने के लिए आज शॉ डी मॉस में मॉरिशनों की भारी भीड़ लगी। सैमाउते में आज सुबह एक गंभीर सड़क हादसा पेश आया। ब्लैक रिवर के रास्ते पर बॉम्बू की तरफ जाते हुए एक गाड़ी सड़क से हटकर बिजली के खंभे से जा टकराई। इस दुर्घटना में 27 वर्षीय गाड़ी चालक की हो गई है मौत। गुड्डो में आज यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ मेंटल अरिथमेटिक सिस्टम यानी कि यूसी मास की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैथमेटिक्स की खास चर्चा रही। बच्चे गणित यानी कि मैथमेटिक्स की अपनी रफ्तार परखने के लिए एकत्र हुए जहां उनकी मेहनत और लगन को खास रूप से सहारा गया। एलनीनो के असर से एल साल्वाडोर सन 1971 के बाद से सबसे बदतर सूखे का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति का प्रभाव मुख्य रूप से छोटे किसानों पर पड़ रहा है और सरकार को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। और नेपाल में पहाड़ी जिले गोरखा में आज सुबह तेरांग नदी में बाढ़ उतर आई। चार घर और एक सस्पेंशन ब्रिज

0: बह गई। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं इस 6 सितंबर की सबसे बड़ी गतिविधि के साथ। रामेश्वर गजाधर अस्तबल के घोड़े रैपिडैश ने मेडन कप 2026 अपने नाम किया है। ये मॉरिशस में घुड़दौड़ की सबसे प्रतिष्ठित रेस है जिसे ब्लू रिबन कहा जाता है। इसे देखने के लिए आज शोंडुमाव समय मॉरिशनों की भारी भीड़ लगी। आम घुड़दौड़ प्रेमियों के अलावा मेडन कप ने ऐसे मॉरिशनों को भी आकर्षित किया है। इस क्लासिक रेस का आनंद उठाने से चुकना नहीं चाहते थे। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि सैमाउते में आज सुबह एक गंभीर सड़क हादसा पेश आया। ब्लैक रिवर के रास्ते पर बोंबू की तरफ जाते हुए एक गाड़ी सड़क से हटकर बिजली के खंभे से जा टकराई। इस दुर्घटना में 27 वर्षीय गाड़ी चालक की मौत हो गई। गाड़ी में सवार अन्य लोग घायल हुए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। क्रिस्टेल लुभास की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
1: रविवार की सुबह तड़के ही कानोट में एक जानलेवा सड़क दुर्घटना पेश आई। वाहन में बस यही बच गए हैं। वाहन बुरी तरह से नुकसानग्रस्त। ऊपरी वाले हिस्से से ये पता चलता है कि दुर्घटना की गंभीरता किस हद तक थी। कानोट में वाहन के शेष बचे हिस्से भयानक दुर्घटना के दृश्य दर्शाते हैं। पुलिस से प्राप्त प्रारंभिक संकेतों के मुताबिक वाहन चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जब वाहन पर से उसका नियंत्रण खो बैठा। गन्ने के खेत में बिजली के खंभे से टक्कर हुई। दुर्भाग्यवश दुर्घटना जानलेवा साबित हुई। 27 वर्षीय माचे होज ने स्थल पर ही दम तोड़ दिया। अन्य दो लोग घायल हुए, इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की जाँच जारी है।
0: अपराध के बाद सजा काट रहे कैदियों को सिर्फ दंड देना ही नहीं बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में भी शामिल होने के लिए, दोबारा शामिल होने के लिए और बहुत ही ज़रूरी है। इसी मानवीय सोच को बढ़ावा देते हुए पिछवेजे के कैद खाने में कैदियों के पुनर्वास और कौशल विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अदिति अवतार की रिपोर्ट।
2: पिचिवेजे के कैदखाने में कैदी मुर्गी पालन, बागबानी, मेटल के काम और मार्बल बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इन कार्यों के माध्यम से उन्हें न सिर्फ कौशल सीखने का मौका मिलता है बल्कि काम के प्रति अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी जैसे गुण भी उनमें उजागर होते हैं। इस कैदखाने में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की पहल में कैदियों को शामिल किया गया है। वे खुद के उपभोग के लिए सब्जियां उगाते हैं और रोटी तक तैयार करते हैं।
3: Nous produisons environ 3000 du pain pour trois prisons, Chibézé, Pointe-Sable, Grand-Rivière et puis Richier, quotidiennement. Et puis nous avons une pâtisserie ici, une côte de pain gâteau pour ces trois prisons qui m'ont mentionné là. Ben détenu qui a un droit à ces gâteaux, aux casse.
2: पुनर्वास प्रोग्रामों को मात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रखा गया है। इसके साथ ही कैदियों को व्यक्तिगत विकास, व्यवहार और समाज में दोबारा घुलने मिलने के लिए तैयार किया जाता है।
4: हमने के एक सेंटर रिहैबिलिटेशन भी बा है। सेंटर रिहैबिलिटेशन में हमने एसएमई के कोर्स देवत है जा, ताकि वो लोग जब लिख ली तो वो लोग जनियन जा कैसे गो बिजनेस करियन जा, और ये सब करके हमने फिर भी वो लोग के लाइफ स्किल मैनेजमेंट के कोर्स देवत है जा, ताकि वो लोग के जनियन जा कैसे अपन एंगर मैनेज करे के, ताकि खिशी आयन से नई ढेर सोचेते में, और ये जब वो लोग निकलियन जा तो वो लोग सकियन जा काल अपन काम करे, और कहूँ भी सकियन जा जितना फोमाशो दे वे जा वो लोग सकियन जा काल वो लोग के काम मिले, सकियन से निमन से काम करे।
2: कई गैर सरकारी संगठन कैदियों को जरूरी समर्थन देने के लिए सक्रिय हैं। इस दिशा में वे मुख्य रूप से मानवीय विचारधारा

0: अपनाते हैं।
1: यहाँ हमने एक ह्यूमन अप्रोच से काम करी रहा सर कैदी लोग संगे, जमें वो लोग अपन अपनापन जन बातें है फील कर सर, महसूस कर सर। हालांकि समाज जन जो नजरिया से कैदी जन जन जन जेल से आयल हवन सर, जन प्रकार से जन कारित से देखे लन सर वो लोग के एगो जो सिपो नहीं मिलेला, तो हमने हमने के जो सिपो दे ला सर वो लोग के, तो जैसे फासिल रहेला रिहैबिलिटेशन के, जमे फैन से सोसाइटी में जयन सर काम करियन सर और ये समाज में कुंतीबे करियन सर।
2: मैं beaucoup cours avec qui nous était le self development manco SME, mais aussi gagne mon certificat, mais apprend beaucoup, mais mon connais moi pour bien réal vivre de haut mon car réinsérer aujourd'hui mon compétence mon car développer mon business, puis sur là on travaille dans section la firme de la prison, mon connais moi pour gérer un poultry un animal farm, mais un peu ça mon apprend et mon prêt pour moi vivre un avis et un jour responsable depuis mon ensemble le discipliné vivre avec principe।
0: कैदखाने में की जाने वाली ऐसी कोशिशें ये साबित करती हैं कि सजा का उद्देश्य मात्र दंड देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर भविष्य की तरफ लौटने का अवसर देना भी हो सकता है। ऐसा समर्थन समाज में कैदियों के सफल पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
3: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कुड्डो में आज यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ मेंटल अरिथमेटिक सिस्टम यानी कि यूसी मास की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैथमेटिक्स की खास चर्चा रही, बच्चे गणित की अपनी रफ्तार परखने के लिए एकत्र हुए जहां उनकी मेहनत और लगन को खास सहारा गया। मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल, मॉरिशस के लिए भारतीय उप उच्चायुक्त अपर्णा गणेशन और यूसीमास मॉरिशस की टीम के जिम्मेवार आनंदा देसाई के अधिकारी मौजूद हुए। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। मॉरिशस के व्यापारिक और सामाजिक स्वरूप को आकार देने वाले फेरी वालों के सफर पर भी नजर डालते हैं जहां पर मॉरिशन लेखक फाइज हुसैन बकस ने अपनी किताब मॉशन लाफो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मॉरिशस स्ट्रीट वेंडर्स में घूम घूम कर सामान बेचने वाले व्यापारियों की उस पीढ़ी और उनकी कड़ी मेहनत, हिम्मत और त्याग से भरे सफर को श्रद्धांजलि दी है। इस पुस्तक की लॉन्चिंग पिछले हफ्ते विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल में की गई। अब चलिए हम सेकंड हैंड कपड़ों के जरिए चीज़ों को एक नया स्वरूप देने की अवधारणा पर बात करते हैं, जहां पर ऐसे कपड़े ऐसे ग्राहकों को तेज़ी से पसंद आ रहे हैं और जो अपने इस्तेमाल की आदतों और सस्टेनेबल उपयोग को लेकर जागरूक हैं। तामागे में हाल ही में खुले ओपन हाउस बुटीक में ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि एल नीनो के असर से एल साल्वाडोर सन 1971 के बाद से सबसे बदतर सूखे का सामना कर रहा है। इस स्थिति का प्रभाव मुख्य रूप से छोटे किसानों पर पड़ रहा है और सरकार को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। और जिस तरह से आज हमने सुर्खियों में इस बात की पुष्टि की है, उनका उल्लेख किया है कि नेपाल के पहाड़ी जिले गोरखा में रविवार सुबह थेरांग नदी में बाढ़ उतर आई। इसके बाद प्रशासन ने बूढ़ी गंडकी नदी के बेसिन में अलर्ट जारी किया। बाढ़ में 4 घर और 1 सस्पेंशन ब्रिज बह गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 26 अगस्त को आई बाढ़ में अब तक 1,344 शव मिल चुके हैं, जबकि करीब 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। करीब 400 अरब नेपाली रुपए के नुकसान की शुरुआती अनुमान है। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: पिछले महीने चीन और नेपाल के बीच स्थित सरहद पर हिमालयी इलाके में जो विनाशकारी बाढ़ उतर आई थी, उसमें तिब्बत में मरने वालों की संख्या 43 तक पहुंच

0: गई है, जबकि 519 लोग अभी भी लापता है। नेपाली राहत कर्मियों ने एक 64 वर्षीय महिला को कीचड़ के मलबे तले से जीवित निकाला। भयानक बाढ़ उतरने के 10 दिन बाद ऐसा किया गया, महिला को बचा लिया गया। ऐसी भी खबर है कि कई दिनों तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद लू हाइट्यो परिवार ने राहत की सांस ली, जब नेपाल में एक सुरंग से चीनी पुरुष को निकाला गया। राहत कर्मियों ने बाढ़ के 10 दिन बाद 225 मीटर के एक हाइड्रो पावर सुरंग से उसे बाहर निकाला और उसे हेलीकॉप्टर से हटाया गया, अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच राहत कार्य जारी है, मलबों को हटाया जा रहा है और जीवित बचे लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश बरकरार है। इस बीच बोतेकोशी बाढ़ के बाद नेपाल की ओर से प्राइम मिनिस्टर्स डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए डिजिटल दान के एक वृहद अभियान की शुरुआत की गई है। इससे ये भी पता चलता है कि किस तरह क्यूआर पेमेंट्स और ग्लोबल कार्ड नेटवर्क्स आपातकालीन स्थिति में दान करने के संबंध में विकसित हो रहा है।
1: और ईरान ने हमस जल मार्ग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और की कोशिश कर रहे एक जहाज पर हमला किया। और दुनिया के अन्य खबर अदिति अवतार के साथ।
2: ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने आज हॉर्मुज जलमार्ग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक बिना क्रू के जहाज पर हमला किया। ईरान का कहना है कि ये एक जवाबी हमला था, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी ताकतों ने 3 ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। ईरान ने एक बार फिर धमकी दी है कि बिना अनुमति के हॉर्मुज जलमार्ग में प्रवेश करने वाले जहाजों को नतीजा भुगतना होगा। इसराइल दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रख रहा है, निशाना हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया गया है। इसराइल का कहना है कि युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए हिजबुल्ला ने उसकी सेना के सिक्योरिटी जोन पर ड्रोन हमले किए। जवाब में हिजबुल्ला के हथियार भंडारों को नष्ट किया गया। यमन में अर्धसरकारी बलों और हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। लाखों परिवार घर बार छोड़कर भागने की फिराक में हैं। बड़ी संख्या में लोग ताइज शहर के ह्यूमैनिटेरियन कैंप में पनाह लेने पहुंच रहे हैं। लोगों के पास न तो रहने के लिए उचित व्यवस्था है और न ही खाने पीने जैसे मूलभूत सामान। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की गई है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक खास बैठक लगाई। ये यूक्रेन रशिया के बीच संघर्ष खत्म करने की एक और नई पहल रही। ये बैठक 3 घंटों से ज्यादा समय तक चली। दोनों पक्षों के अनुसार बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। इसके बाद अब अमेरिकी दूत राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहरी मोला मिस वर्ल्ड 2026 बनी है। इस प्रतियोगिता का फाइनल कल वियतनाम में लगा। मोला एक अंग्रेजी अध्यापिका है और वॉइसेस ऑफ टुमारो नामक एनजीओ की संस्थापिका भी हैं। फर्स्ट रनर अप स्पेन की एलिजाबेथ रेन्स रही और तीसरा स्थान मलेशिया की तनुसिया चेती को गया।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है राष्ट्रीय स्तर पर कि रामेश्वर गजाधर अस्तबल के घोड़े रैपिडैश ने मेडन कप 2026 अपने नाम कर दिया है। ये मॉरिशस में घुड़दौड़ की सबसे प्रतिष्ठित रेस है, जिसे ब्लू रिबन कहा जाता है। इसे देखने के लिए आज शोंडिमॉस में मॉरिशनों की भारी भीड़ लगी। आम घुड़दौड़ प्रेमियों के अलावा मेडन कप ने ऐसे मॉरिशनों को भी आकर्षित किया। इस क्लासिक रेस का आनंद उठाने से चूकना नहीं चाहते थे। काविंता पिसा की रिपोर्ट पर ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
3: शादीमास में आज जोश से भरा माहौल रहा, जहां घुड़दौड़ कैलेंडर की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्लासिक रेस आयोजित हुई। नियमित रूप से घुड़दौड़ देखने आने वाले दर्शक इस मौके को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। वहीं दूसरे लोगों के लिए मेडन कप हमारे घुड़दौड़ मैदान और यहां के खास माहौल को करीब से देखने का एक अच्छा मौका।

0: काहे
1: Je vous dis qu'on se connaît, Méden, c'est un grand jour pour nous, Mauriciens. Quand nous vivons en famille, nous profitons de l'occasion et en même temps, nous vivons un bon moment de famille aussi.
2: Moi, une fois par an, juste pour Méden, je suis moi.
3: Chaque année, vous venez pour Méden, vous trouvez l'ambiance insensée ou bien les réparer?
2: Non, je ne réponds pas. Je suis dans les chines en bas. C'est une dame, mais je réponds là.
4: Si ça cause Méden, mais nous pas venir ça que samedi.
0: Champ de Mars के मैदान में लगभग हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। यहाँ मशहूर बिरयानी की काफी मांग है। अच्छे कारोबार की उम्मीद में कई फेरी वाले भी यहाँ पहुँचे। दोपहर 3:20 पर बड़ी क्लासिक रेस की शुरुआत के लिए दर्शक ट्रैक के और करीब पहुंचे। पूरी रेस के दौरान शानदार स्थिति बनाए रखते हुए रापिदाश जिसे पियकोन उफ ने दौराया ने जीत हासिल की और रमेश्वर गजाधर के अस्तबल को विजेता बनाया।
5: और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और खासकर पूर्वीय तथा ऊंचे इलाके पर आज रात बादलों के घेराव के साथ बारिश होती रहेगी। कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। कुछ इलाकों पर कोहरा भी छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। अतिरिक्त जानकारी, मास्कारेंस खासकर दक्षिण पूर्व की ओर से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन इस मंगलवार 8 सितंबर से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। बादलों का एक झुंड होने की वजह से बरसाती मौसम की शुरुआत होगी मंगलवार से और साथ ही साथ ठंडी हवाएं भी बहेंगी। हवा पूर्व की ओर से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और साथ ही साथ 3 डिग्री सेल्सियस के साथ तापमान में गिरावट नोट की जाएगी। अगर तापमान के बारे में बात करें आज के लिए, तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:02 पर, जबकि कल सूर्योदय 6:13 पर। Thank you.

तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये संक्षिप्त ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आइए शोक समाचार सुनते हैं। फ्लोम्बायो स्ट्रेटा नोस्टिकाना रिवे जो रोपा में फ्लोम्बायो स्ट्रेटा नोस्टिका

है ना, रिवेज रॉम्पा में 69 साल की 69 years old की श्री राजकुमार अंगकोर जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनसुया अंगकोर के घर फ्रोबायो स्ट्रीट नजदीकाना रिवेज रॉम्पा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरी किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। कांगुलबा शिमिग्रिये में 52 साल के 52 years old के श्री गणेशन अपासोमी जिन्हें सब लोग सूर्यन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर कांगुलबा शिमिग्रिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवे डिगाले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 10 AM। रॉयल रोड सेंचुबेया में 19 साल के श्री भुवेश डुलप जिन्हें सब लोग आयुष के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड सेंचुबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचुबेया सोंगुली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। रॉयल रोड रोशतेया में जो कलाश के पास है 72 years old की श्रीमती हवंती चमन जिन्हें सब लोग राम भजन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति श्री अर्जुन चमन के घर रॉयल रोड रोशते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। अलेजाक लेस्कालिये में 69 साल की 69 years old की श्री नारायण दत्त दलू जिन्हें सब लोग अमरनाथ के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री केवल दलू के घर अलेजाक लेस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेकारांग लेस्कालिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। दामाओ लेन शामुनी में 56 साल की 56 years old की कुमारी सुचित्रा दामाओ जिन्हें सब लोग तिसिया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके भाई श्री विद्यानंद दामाओ के घर दामाओलेन शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 55 साल की 55 years old की कुमारी शांता उरिया जिन्हें सब लोग शांता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी बहन कुमारी संगीता उरिया के घर अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाहोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। रॉयल रोड बोबासे में 61 साल की 61 years old के श्री बालाकृष्णा मुकुल जिन्हें सब लोग वासु के नाम से भी जानते थे और जो कालीमाय रोड पालमा के भी निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे लाशापेल ऑनदोंद एलियंसन्स रॉयल रोड बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। लाबुदुने गली मेबर्ग में 89 साल की 89 years old की श्रीमती महित्री तिलक पैदाइशी नाम तिलवा और जिन्हें सब लोग दादी मानती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी मंगलवार 8 सितंबर को दिन के एक बजे उन्हीं के घर लाबुदुने गली मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबू मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूजडे

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सीबी की ओर से दो विज्ञप्तियां सुनिए. सीबी तयक विराज के इन जगहों के ग्राहकों को सूचित करता है. एनाश देसे तयक से आश आ तयक. सो सीबी तयक के एनाश देसे तयक और से आशा तयक के ग्राहकों को सूचित करता है कि सोमवार 7 सितंबर 2026 सोमवार 7 सितंबर 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. सीबी साथ ही साथ शामुनी के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करती हैं. शामुनी रामा रोड, शामुनी कोंगुलबा और शामुनी कोंफानी के ग्राहकों को सूचित करता है कि अगले मंगलवार 8 सितंबर 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 3 बजे तक मंगलवार 8 सितंबर 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. सीबी इन दोनों जगहों के ग्राहकों को सूचित करती हैं कि जैसे ही मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे तैसे ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी. सीबी इन असुविधाओं के लिए सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं. ये थी दो विज्ञप्तियां सीबी की ओर से.
2: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। बजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, आप कैसे हैं? दिन के सारे कार्य आपके पूरे हो चुके होंगे और चलिए अब थोड़ा सा हल्के होकर उस प्रभु के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में इस दिमाग पर बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो कागज़ पर सूची बनानी पड़ती है कि कोई कार्य हम भूल ना जाए। लेकिन श्रोताओं, इस दिमाग की मस्तिष्क की शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रभु से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। भक्तों को देखिए, वे पूरी तरह से प्रभु से जुड़े होते हैं। पूरा संसार उनका विरोधी होता है, कितना उनको तंग करते हैं। मीराबाई का उदाहरण देख लीजिए, जहर का प्याला, सांप की पिटारी, राजमहल से निष्कासन, न जाने कितने दुख दिए। लेकिन उसके बावजूद भी इन भक्तों का मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि वे किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, वे तो केवल अपने प्रभु से जुड़े रहते हैं। तो जब व्यक्ति प्रभु से जुड़ जाता है और उसके नाम का स्मरण करता है तो मन और मस्तिष्क को विशेष शक्ति मिलती है। तो चलते हैं, मीराबाई का एक भजन सुनते हैं।

मीराबाई से लोगों ने प्रश्न किया कि चलो हमने माना कि तुमने गोविंद मोल लिया, तो जब भी कुछ मोल लिया जाता है तो उसका कुछ मूल्य होता है, तभी तो खरीदा जाता है। तो तुम्हारे गोविंद का मूल्य क्या है हमें भी बता दो, हम भी खरीद लाएं। अब मीराबाई का भक्तिपूर्ण उत्तर सुनिए।

श्रोताओं, इसीलिए उस प्रभु की उपासना अर्थात उसके नज़दीक बैठकर उसके गुणों का स्तवन करना, स्तुति करना, नाम जप करना, उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना जितना हम उसके याद करते हैं उतना उतना हम उसके नज़दीक पहुंचते हैं और संसार की वे सब बातें जो ईर्ष्या, द्वेष, वैर इत्यादि पैदा करती हैं उन्हें हम भूलने लगते हैं। हमारा स्वभाव क्षमा वाला होने लगता है और हम अपने शत्रु को भी क्षमा कर देते हैं अर्थात

भौतिक जीवन में हम साधनों की भरमार को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है तो हम भौतिक जीवन के साधनों को कम से कम करते जाते हैं। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा, साधन होते हुए भी जिसकी आवश्यकताएं कम से कम है वही उतना महान है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का उदाहरण देख लीजिए। तो श्रोताओं, जितना हम अपने लक्ष्य की ओर समर्पित होते हैं ना, उतना ही भौतिकता से ऊपर उठने लगते हैं। यही प्रभु को भजने की सबसे बड़ी शक्ति हमें मिलती है।

श्रोताओं, भौतिक साधन इसलिए जुटाने हैं कि संसार में हमको रहना है, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, वाहन चाहिए, साधन चाहिए, बस इतना तो जरूरी है। लेकिन विलासिता की ओर बढ़ना और विलासिता में जीवन की खुशियों को ढूंढना, तब हम प्रभु से दूर होने लगते हैं।

नाम जप करें यह बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक इस चित्त को शांत नहीं कर पाएंगे, और जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक बुद्धि और विवेक हमारा सदमार्ग पर नहीं चल सकते। इसीलिए कुछ समय पूरे दिन में उस प्रभु के साथ जुड़ना, उसे याद करना, यह भक्ति की पहली यात्रा या पहला पड़ाव है। तो चलिए श्रोताओं, इस भजन के साथ अलका धनपत और शिव हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मज़ी सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशरियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर वाफियत से हैं। सामीन मोहतरम, आइए महफिल शब की इब्तिदा इस खूबसूरत कलाम से।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। ये रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अखलाक की अक्कासी करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से सख्ती और तकब्बुर के साथ नहीं बल्कि शफ़क़त और मोहब्बत से मिलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खुशी और मोहब्बत का सबब बनती थी। इस हदीस से हमें सीखना चाहिए कि संजीदा और बावकार होने के बावजूद खुश मिजाज और नर्म दिल होना भी सुन्नत के मुताबिक है।

हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नेकी को हरगिज़ हकीर न समझो, अगरचे अपने भाई से खुशमिजाज चेहरे के साथ मिलना ही हो। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि सिर्फ बड़े बड़े काम ही नेकी हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि छोटे नेक आमाल को भी मामूली नहीं समझना चाहिए। एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट, अच्छा रवैया और खुश अखलाकी किसी परेशान इंसान के दिल को सुकून दे सकती है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा चेहरा दूसरों के लिए खुशी और इत्मीनान का बाइस बने। सामिने मुहतरम, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। आइए इस प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजराना पेश करते हैं और इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। शब्बा खैर।

0: continuous music.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: सब समाचारों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते। यह तो और मन पसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। सब समाचारों का स्वागत करते हैं आज दिमास के रात दिमास 6 सितंबर साल 2026।

बोला था संगत यार लोग आज के दिन कैसे बीतल? हमारे दिन वहां तो एकदम बढ़िया बीतल और सांझ भी अच्छी तरह से तो लोग के संगे संगे भी रही सब एक नहीं सांझ के 3 से 4 बजे रही सर रेडियो मनोरंजन पर ऐसा भी होता है फिर सांझ के 4 बज के आधा अरे से नई सोच कार्यक्रम है और रात के 7 से 9 बजे रहते और 7 से दिनों की आवाज़ में और अभी रात के 9 बज कल बा और अभी से लेकर रात के 11 बजे रे तो लोग के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का नाचब सा गावब सा झूमब सा कमरवा डुलावब सा हाँ जी भोजपुरी तड़का कार्यक्रम ही प्रोग्राम से रोज के सांझ के रोज के रात के 8-9 बजे से 11 बजे रे MBC रेडियो पर रेडियो मनोरंजन FM मोड पर 94.95.6.98.2 MHz और AM मोड पर 8.7 MHz MBC के दोनों चैनल पर सब कोई के स्वागत बा भाई बहन लोग चाचा चाची नाना नानी दादा दादी मौसा मौसी चल हमने के संगे नाचे गावे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम का जगदेवी जगवित सिंह पर तो लोग के फोन कॉल्स और एक से एक चकाचक गीत तो लोग के पसंदीदा चलाओ अब सर चलो शुरू कर लेना चाहिए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के एगो जबरदस्त गीत के साथ भोजपुरी भांगड़ा और गीत गाइले हवन अविनाश अविनाश रामधाइन भोजपुरी के भांगड़ा भी होला ओए होए बल्ले बल्ले चलो नाचे गावे हमने के संगे संगे सब रेडियो मोशन सर रेडियो मनोरंजन के श्रोता लोग

और सबको ये नाचा था गावा था झूमा था हमने के संगे संगे रात के बखत बा बड़ी ठंडा कर रहता और बुझाता पानी बरसी और भी मंगल से सुनाता लेता हूँ और मूवी हो यही मंगल से पानी बरसी हवा रही कहे के कुछ ज़बरदस्त शांति साइड को हमने के इलाके की ओर आवा था और मंगल से तक हवा हवा करी जैसे एक दो दिन पहले कर रहा हवादार मौसम पानी बाप रे बाप और जैसा कोई रात के भी उनकी सुना था सबके स्वागत कर दे जा या तो लोग मन पसंद रेडियो चैनल MBC रेडियो MBC यानी कि मोबों का मगाज और अगला गीत टुडे इज संडे जी हाँ तो संडे बा संडे इज फंडे और बेशक हमने इसे तो लोग साथ देखा तेर टुडे इज संडे बसंत सुपौल गीत वगैरह वाले गीत चाहते सर माधव भैरव के नाम का जन्मदिन रहा 1 सितंबर के बधाई और प्यार कर मामा टीना पापा कवि पुपूरीना दादी माला चाचा साइलेन अपन चाचा से बड़ी प्यार करे रन तो माधव गीत और खातिर बाबू धे मना प्यार आशीर्वाद चाचा साइलेन की ओर से चाची रानी दीदी परी और सब परिवार की ओर से सब भैरव बसी तालू परिवार की ओर से माधव भैरव के धे मना प्यार माधव भैरव रहलन जग्गू लेन मोहतबा और प्राइमरी कक्षा के स्टूडेंट हवन अभी रात के खुन सुना तो अपन बोलते चाचू गीत मंगला बकर खातिर है माधव नाच गावा जुमा और एक गीत रीता के रोचकर बहन रेणुका खातिर और कर भाई संदेश प्रीतम खातिर भी और रीता के रोच को दुगो बेटा दुगो पतो और दुगो नातिन खातिर गो नातिन हपरी और दूसरा का नातिन अनुष्का तो चल एक साथ सुनने गीत टुडे इज संडे मन करता नाचे के नाचे कमर हुआ डुलावा हमने के संगे संगे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर ए है

दिमाग के दिन तो चल गए, दिमाग के रात रात बाकी बात बाकी। हमके साथ के खातिर बहुत बहुत शुक्रिया, जितना कोई हमने सुनता छोटा से बड़ा रे सबके के स्वागत लाइक आलो के मीठा मीठा प्यार भरा जनन के सादर प्रणाम और हम उनके दोस्त के मोहब्बत और प्यार भरा सलाम। हमने जानी रह सके तो लोग हमने के खुशी रह रहा सब की आवाज़ हमने के प्रोग्राम बढ़िए प्यार से सुने रह जा बहुत बहुत शुक्रिया हमने के साथ देख खातिर। और अभी दिमाग की रात की तो आजकल देखा दे सके सब कोई परेशान बात सब कोई बोला था भाई महंगाई के ज़माना बताए को बात बोला थोड़ा दुनिया भर में महंगाई बा नहीं सोचा कि दूसरे देश में महंगाई नहीं बा कनाडा इटाली जर्मनी फ्रांस सगरों महंगाई बा भैया का कर परे राज्य के इन्फ्लेशन भाई कहते सब चीज़ महंगा बा कह के हमने जो किनी रास्ता दूसरे देश से तलौची कोई महंगा बा का कर भैया नहीं खाई बा तो चेहरा करी मेहनत लगन से काम करके और एगो पार्ट टाइम जॉब करिए जा एक वो काम पर पिए कर बता थोड़ा मुश्किल बात है और एगो काम करिए जा भगवान थोड़ा इतना क्वालिटीज गुण दिलक बात ज़रूर कोनो न कोनो रास्ता चला तो हर सामने तो ज़रूर। और घर में जब पति पत्नी काम करी तो कौन राखा बा अब खाली पतिदेव काम करी थोड़ा दिवसिल बाप तीन चार गो लेकर ही पोस सके तो फासिल नहीं बा तो भौजी दर्शन भैया के ऐदे कर दिया तू भी कुछ छोटा मोटा काम करिए ताकि सकब भैया के ऐदे करे हाँ कि नहीं। तो महंगाई के ज़माना चाहे कितना भी क्यों ना रही हम नहीं तो गमट करते रह सर तो लोग नचेते गवाते रह सर जय दे मामू जय दे मामू जय दे मरा मामू राधा राम साहब शर्मिला गीत गावत नरगीत चलावती सर कासम खास चित्रा और ज्ञान विश्राम के नाम ममन मोदे से और रही गीत चली कमला दिनों की रचो चीज़ ऑफ हों आरोही खातिर अपन चीज़ ऑफ से बड़ी प्यार करे रन और प्रेमिला फ्रांस से मिलकर साथ होते हेलो प्रेमिला गीत और खातिर नदी वाला भाई हवन वैनकूवर कनाडा से था गीत और नाम जितना कोई इंटरनेट के जरिए सुना था ऑन www.mbc.tv.com और साथ में लिसन रेडियो मशा लिसन रेडियो मनोरंजन आज हमने के टिकटॉक पर नहीं चलता प्रोग्राम आज चला था रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर www.mbcradio.tv पर भी हमने के साथ दिया रात के 11 बजे रही तो चलो सुनब जा प्यार संगीत जय दे मामू और जितना कोई भी रात के काम कराता है गीत तो लोग नाम और बोल सब बोंक वॉश

माफी से अब गीत चल कर हो जा रहा हो जा रहा माफी चाहत है राधन राम सहर शर्मिला रघुनोत गई रेवन जय दे मामू चल गीत सुने जय दे मामू

0: RM3 Radio.
1: 819 kilohertz. This is
2: Radio Marches. Radio Marches.
3: Dhimana maha grante ba jampari inter kuch sikhira sa Mahabharat Ramayan. वेद पुराण शास्त्र उपनिषद और रामायण में बतावल गल बा कि मित्रता कैसन चेहरा रहे कि राम भरत जैसन राम भरत की मित्रता राम हनुमान की मित्रता कृष्ण सुदामा की मित्रता और भगवद गीता में कृष्ण सुदामा कृष्ण बलराम की मित्रता के बारे में बहुत कुछ कह गल बा आज की दुनिया में बायसन मित्रता सकेरा हो एक दो प्लस पर ऐसा मित्रता जहाँ पर कोनो छल नहीं बा जहाँ पर कोनो मन मुटाव नहीं बा और राम भरत जितना राम से प्यार करत हलन भरत सखी राम खातिर अपन जान दे दे राम भी सखी तब भरत खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दे ऐसे ही हनुमान के दिल में राम रहल हनुमान ने दे अपन दिल चीर के बताई रख कि कितना वो राम भगवान संग स्नेह करेरा और वो राम भगवान के अपन प्रभु माना दलन और के अपन भाई लिखा अपन स्वामी लिखा पूजा करता हल ये खातिर जब वो दिल जब अपन चीर लगता को मैं राम सीता लक्ष्मण नजर आवेरा और राम बलराम के जन मित्रता है और कृष्ण सुदामा सुदामा बड़ी गरीब रहल पर फिर भी कृष्ण भगवान के अपन दोस्त मानत हल और एक दिन जब सुदामा गल कृष्ण भगवान लगे तो कृष्ण जाने रहा कि सुदामा दुख में बात है कृष्ण भगवान उनका सब मनोकामना पूर्ण कर लग हम यही चाहते हैं कि आज की दुनिया में ऐसा दोस्ती जो है अगर रहत कितना अच्छी बात रहत पर आजकल कम ऐसा दोस्ती ऐसा मित्रता मिलेला तो अगर इस समय बेस्ट फ्रेंड लोग सुनता तो अगला गीत लोग कहते नया सिरे है गीत जो है चली हरीश नारायण खातिर और बेस्ट फ्रेंड की ओर से हरीश नारायण रहे मिडलैंड्स और एक गीत नटराज रामकुरन जी के नाम आप नोबेल फॉल्स है गीत और बेस्ट फ्रेंड प्रताप की ओर से नटराज के नाम और हई गीतों अपनी खासम खास चरावप स वीना कुपु स्वामी जी के नाम आप रहेलन मेबर्ग कर घरोला बेटा अपतो बेटी दामाद और सब चीज़ों फोन खातिर और सुलमा दुखित मेबर्ग सिव कर शोहर कर दुगो बेटी और हई गीत चली विश्वानी बाबूलाल जो नरन लाओजा कर पति और सब लड़का के नाम और भाई रघु और भाई निधु मेबर्ग रहेलन स और भाई चमीलाल ताई गीत तुलो के नाम चलावत नया सिरे चले एक साथ सुने गीत और जितना कोई भी हमने के साथ जुड़ल बात और लाइन ना मिला था कोई प्रॉब्लम नहीं चला गीतवा तुलो खातिर भी चलावत नया सिरे कुणाल बाबूलाल की आवाज़ में

सबको ये गीतवा गुनगुनावता तू सुन ले तो के का हम बोलत है। और जब बड़ा आदमी थोड़ा सा कोना बात बोले तो बड़ा आदमी की बात सुनिए जा, अपन से बड़ा के हमेशा मान आदर करिया, सेवा सत्कार कर, अपन से छोटा के दे मना प्यार दिया। लड़का लोग में भगवान बा दौफा एना बौझी बड़ी रहस ना, तो लड़का लोग के खूब दुलार करिया। हम तो जब लड़का लोग के देखे तो बड़िए दुलार करिया, लड़का लोग के बड़िए, लड़का लोग के बड़िए खुशी रही रहा। और अपन बड़ा जनों के नमस्ते प्रणाम बोलते रही रहा, तो तू भी अपन बड़ा आदमी के मान सम्मान करते रहे और लड़का लोग से खूब दुलार करिया और लड़का लोग खुशी रही रहा। तो हमारे को नेवी बा हमारे को कुजें के लड़का बा को नाम माधव, वो जहाँ के दिखे रहा चचा जान कब अब मर लगे चचा जान, अरे हो मर चचा जान। और जब हमको लगे जाए लड़का संग खेत लड़का बेला आज उजी मो पापू ले सुली ऐसा प्यार है जो अपना अपन है गो लड़का के दिल में अपन चाचा के प्रति और चाचा के दिल में अपन नेवे खाते अपन भतीजे जो प्यार रह रहा था आ हा हा क्या बात है। तो लड़का लोग से प्यार करते रहिए, बड़ा आदमी लोग के मान सम्मान देते रहिए और उनके साथ देते रहिए। रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर आज चला था प्रोग्राम भोजपुर का स्टूडियो रेडियो मॉरिशस और स्टूडियो रेडियो मनोरंजन से एमबीसी मौका से हमने के प्रसारण चला था इस समय। और अगला गीत था मुर्गा मियाँ। अबे मुर्गा जो है मुर्गी बिना मकई नहीं खराब बोला था प्रॉब्लम नहीं है। अरे मुर्गा जब ले मुर्गी ने आए मुर्गी को से बात नहीं करी तब ले मकई नहीं खाई। हाँ मीरा मोहन गीतवा गई रे अवन बहुत बहुत प्यार से मुर्गा मियाँ। और गीतवा अपनी चलावते इस खास हम खास उदय धनी राम जी के नाम आफरवन खबिया जी पोसे कर पत्नी कर बेटी दामाद बेटा पतु और प्रीतम राज्य मिला हुआ से अवन केशव अभिलक है गीत और खती थोड़ा सा परिवार जानकी परिवार सुना था हमने के जानकी श्रीमान जानकी की ओर से ओकर पत्नी को दुगो लड़का ओकर माता जी और भूतिक बा है जानकी स्तोत है गीत और खतीर अश्विन बच्चन और सब बच्चन परिवार हमने के साथ देवतवन रिवे जीपोस से आशा जानू हवन को तेज से शुभम दीदी आरती जीजा जी ओकर माँ और सब परिवार के। और गीत खास हम खास स्वीट एंड लवली रेहाना हसन अली के नाम आप हवन फेनिक्स से बहुत प्यार से हमी के साथ जुड़ल हवन और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सुनत हवन द रेहाना हसन अली खास हम खास गीत और नाम मुर्गा मियाँ। मुर्गा मियाँ द्वारा से क्या बोला था चल एक साथ सुने। मन करता नाचे के नाचे गाव झूमा मुर्गा मियाँ हाई देखा मुर्गा नाचे रह गए मुर्गी के देख के बाप रे बाप रात के कुकुरुकू बाप रे बाप मुर्गा तो दीवाना हो गए मुर्गी के देख के बोला था कुकुरुकू कुकुरुकू ए हे।

मुर्गी किसे हल्ला कर रहा, कट कट कट कट कट कटा कट कट कट कट कट कट कटा कट। और मुर्गी के जब ऐसा खाए के जब से आ आ आ आ आ आ आ आ आ कर ऐसा तब मुर्गी आवेला। तो है मोजन मुर्गी है जब ओके आ आ आ कर बताओ आवेला ढोर ले आवेला। मुर्गा के बोला कुकुरुकु कुकुरुकु कुकुरुकु। और बेशक भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में सबको के स्वागत करते जा जे कोई अभी भी रेडियो एन ऑन कर लग बा रेडियो चून कर लिया हुआ ढेर कोई हमकी सुनता एमबीसी प्ले पर मोबाइल के जरिए ढेर कोई हमकी देखो देते एन टी पर सुनता ढेर कोई राज्यों में त ढेर कोई अपन पोता में भी हमके सुनता वन डिजिटल मोड पर। अच्छा बा एगो कहानी अब सुनाओ अब जत लोग के रात के समय बा सुना एगो जोड़ी सन कहानी। कहानी के शीर्षक है पापा दे सिमो और लिखले के लिखले अवन गी दे मोपासो। तो सिमो एगो लड़का के कहानी है सात आठ बरिस के स्कूल जाला वन माँ लाब्लॉसत संगे रहेला और ओकर पिता के बारे में गांव के लोग तरह तरह के बात करेलन सा। सिमो के पिता ओकर जन्म से पहले ही ओकर माइक से अलग होकर रहल इ कारण से स्कूल के बाकी लड़का लोग सिमो के चिढ़ावत है कि तोहर बाप नहीं बा तोहर बाप नहीं बा। सिमो बहुत दुखी होता है जब लड़का लोग ऐसे करे को संगे तो बाकी लड़कवन के ताना सुन सुन के चुप रह जाता है बल्कि ओकर मन में बहुत पीड़ा होता है कि लड़का लोग हंसेला कि ओकर बाप नहीं बा। एक दिन लड़का लोग ओकरा बहुत ही परेशान कर लन सा और वो लड़का लोग से लागिया करे लगल और वो सिमो जो है दिन रोते रोते नदी के किनारे पहुँच गल। वो बोलक कि आज वो आत्महत्या कर दे अपन जान दे दे नदी में कह के बहुत निराश हो गल सब कोई के हौसला कि तोर बाप नहीं बा तोर बाप नहीं बा। वही समय फिलिप एगो व्यक्ति है जो बहुत ही दयालु है और वो लोहार के काम करेलन तो फिलिप सिमो के रोवत देख ओकर लगे आवेला और बोले तू काहे रोवत हो बेटा और तू नदी के पास का करत हो। तो सिमो अपन सब कहानी फिलिप के सुनाई लग तो फिलिप ओकर से बोलक तू दुखी नहीं हो आज से हम तोहर पिताजी हम तोहर पापा हैं तू सगभंग के पापा बुलाए हैं जीवन में कबो भी ऐसा काम नहीं करिए आज कुछ ज़्यादा लग कर ज़्यादा नदी में अपन जान देवे ऐसा काम नहीं करे के। तो फिलिप ओकर हाथ धर के ओके लेके गल ओकर माँ लगे और ओकर माँ के बोलक कि लड़का का करे जाता हल। फिलिप सिमो के हिम्मत दिलक और बोलक कि तू जैसे बोलक कि आज से तू उनके सगबा पापा बुलावे। तब सिमो की वो कुहाज मिलल और अगला दिन जब स्कूल गल लड़का जब ओके चिढ़ावा था सिमो के तो सिमो बोले हमके मुके नहीं कर सर हमरो बाप बा हमरो पापा बा हमार पापा के नाम बा फिलिप। और ये बात सुन के सब लड़का लोग हैरान हो गए कि अचानक फिलिप के अचानक सिमो के बाप कैसे मिल गए। बाद में फिलिप सिमो के माँ

Laguejala or Philip Simon Laguejala. फिलिप जना सिमोन लगेजाला और सिमोन की माँ के प्रपोज करेला शादी के, तब कहानी के अंत में जो है फिलिप और ला ब्लांशेट के शादी हो जाला और जो है सिमोन के एगो परिवार मिल जाला और मात दे जा रहा ला ब्लांशेट और एगो बाबी मिल जाए बापा के नाम रहेला फिलिप। तो कहानी से ये सीख कि किसी बच्चा के खुशी या सम्मान खाली अगर पिता के नाम से नहीं बल्कि प्यार अपनापन और अच्छे व्यवहार से बनेला। समाज में एगो लड़का तभी सुखी रहेला जब ओके माँ बाप के प्यार मिलेला। तो बेशक जन कहानी है, ये कहानी के शीर्षक है पापा डी सिमो। सोशल मीडिया पर ही अनेक भाषा में बा कर फिल्म भी बा जैसे आने में बा, तो थोड़ा मौका मिली तो ज़रूर जाइए जा सोशल मीडिया पर रही कहानी पर ये सक भाई के देखे भी वीडियो में कहानी के शिष्यक पापा डिसिमो और एक लिखले वन गीत मो पास होते कहानी बतावेला। एगो लड़का की जिंदगी एगो लड़का के माँ बाप के दोनों के प्यार चहला, खाली माँ रही तो ओके बाप के प्यार भी चहला। तो एगो लड़का तभी सुखी रहेला अच्छी तरह से बड़ा हो रहा परवरिश जब एगो लड़का के माँ बाप के प्यार दोनों के प्यार मिलेगा तब वो लड़का जीवन में आगे बढ़ेगा। तो ज़रूर है कहानी पढ़िए, कहानी के शीर्षक है पापा सिमो और लिखने वन गी दे मुपासों। अब चला सुनब जा अगला गाना दादा के कहानी। अब भाई कहानी हमारे कहानी सुनने ला, अब दादा के कहानी सुनब से गसन सिंगारन संगे और है गीत हम चलावते खासम खास संजय बिहारी की ओर से उसकी पत्नी सुरेखा, बेटा कुशल, बहू बेटी बेटी के नाम रिंकू, रिंकू और लुक्जम्बू में रिंकू और उकर घरोला और उकर ची बाबा के नाम संदेश के ओर से लता खजर गीत और उकर बेटी शिवानी अंजलि और ये गीत चली वंदना गुमानी के ओर से उकर पति को लेकर लुखातिर और साइलेंट के ओर से गीत चली उकर पत्नी रानी और बेटी परी खातिर। चले एक साथ सुनब जा दादा की।

दादा की कहानी सुना, दादी की कहानी, और इस समय तू सुना तो भोजपुरी तर का कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम चला था MBC रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर। और अब हमने दोला के बताओ जा इमली के तत्व, जो इमली खाएला सा इमली के तकारी में इस्तेमाल होला और इमली के कॉम्पोट भी बनेला। तो इमली में जो है ढेर मना गुण बा, जैसे टार्टरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज तत्व, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयन भी। और जो है जो इमली में खाएला सा, तो एक में जैसे बोली एक में टार्टरिक एसिड बा। इमली के खट्टा स्वाद मुख्य रूप से टार्टरिक एसिड के कारण होला, और ये इमली के सबसे खास प्राकृतिक है। और जब कोई के फीवर होला, सर्दी जुकाम होला, जब तुम्हार मुँह अच्छा नहीं रहेला, तो इमली दू को खा ले तो तुम्हार मुँह बन जाए तो स्वाद चलाए। और कार्बोहाइड्रेट, इमली में प्राकृतिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट पावल जाला, जे शरीर के ऊर्जा देवेला। और इमली में फाइबर बा, और ये फाइबर जो है पाचन तंत्र खातिर बहुत अच्छा है। तो लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम खातिर अच्छा है। इमली खेबा तो तुम्हार खाए के हाली से पच जाए। इमली में कई तरह के खनिज तत्व भी बा, जैसे पोटाशियम। पोटाशियम शरीर में द्रव संतुलन, मांसपेशी के सामान्य काम में मदद करेगा। और एक में मैग्नीशियम भी बा, और मांसपेशी या तंत्रिका के सामान्य कार्य खातिर। कैल्शियम बा, ये हड्डी और दांत के मजबूत बनावेला, तो इमली खैबत और हड्डी और दांत मजबूत हो जाए। और फॉस्फोरस बा, हड्डी के ऊर्जा के समान जिन है। और आयन बा है इमली में, और ये हेमोग्लोबिन बनावेला, तो और खून के जिन क्लॉथ्स है वो के अच्छी तरह से बनावेला, एकर में आयन बा। और इमली में विटामिन सी और विटामिन

बेबिभा और इमली के कैसे उपयोग होला। तो इमली के इस्तेमाल मुख्य रूप से चटनी, अचार, सांभर, दाल, सब्जी या तरह तरह के व्यंजन में का इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिए कि इमली फायदेमंद खाद्य पदार्थ सकेला हो बल्कि के ढे मना नहीं खैया, ढे मना खैबा तो प्रॉब्लम हो। हिसाब से खैया जा इमली, और इमली जो है अनेक प्रकार के अगर

जब कागज छिपोरी मिले ना जब खाली भजा टक्कर मिला हा ये कॉम्पोटवा के हमने वैसा कॉम्पोट है कि ढे कोई टक्कर बोलेला तो इमली खैया और हमने के साथ दे दे रही है रेडियो मॉन्स्टर्स रेडियो मनोरंजन पर। हमने के अच्छा लगा था कि प्रोग्राम के जरिए थोड़ा मिला था ढेर कुछ सीखे के भी और हमने के भी मौका मिला था जो उसे ढेर चीज पौता से करेगी। तो हमेशा याद रखिया बाजार जी बता थोड़ा सुन इमली कि भी बाजार में मिला था हम कुछ दिन गई जुड़ी जुड़ी इमली नहीं माहो माहो बाकर लाखों समय थी लाखों को निकाल के जोड़ी से आहबी माओ से खाई होकर टक्कर बना के खाइया। संजय सिंह गुलाम के गीत चलिए अब रेडियो मॉन्स्टर्स रेडियो मनोरंजन पर चांद जैसन चेहरा और है गीत तो हमने चलावा थे इस खास हम खास श्रीमती विभा बंधन खती रहेलन पोर्ट्रीस बहन जी चंपा रघुनंदन मिसिस रागुबा मिसिस ओकल और जितना स्टाफ जो है पहले जो एम जी आई कॉलेज मौका में काम कर रन सलो खातिर मोख्वायो के मोन खातिर है गीत चली माया महावीर साइडिश महावीर विद्या और मिसिस द्वोका खातिर और चले एक साथ है गीत सुनम जा और बेशक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी सन गीत है चांद जैसन चेहरा केकर चांद जैसन चेहरा बा चेहरा सुनब जा संजय सी गुलाम की आवाज़ में और थोड़ा लाइन ना मिला था फिक्र नहीं करिए है गीत तो हर घाटी चलाओ दी सब बहुत बहुत प्यार के साथ।

भोजपुरी भाषा हमनी के भाषा हमनी के संस्कृति हमनी के धर्म सभ्यता से जुड़ल है भाषा। जैसे हम हिंदी पढ़ी रह संस्कृत पढ़ी रह भोजपुरी भाषा भी बोल रहा सा और ये हमनी के धरोहर है भोजपुरी। और भोजपुरी में बात करिए जुड़ी भाषा और जब भोजपुरी की बात करते सर तो हाई बड़ी 26 सितंबर के 26 सितंबर के लगी द फर्स्ट भोजपुरी लाइव कंसर्ट बैंक्वेट हॉल ओसिनाल में और कुणाल हिरीलाली प्रोग्राम के आयोजक हवन और कर में रही रंभा राम टोहल नीरज गुप मधु किशोर खिमिया कुणाल हिरीलाल रोशन सदा सिंह कृषि मुनिक और होस्ट अयन एमसी अवनीश और ढेमना डीजे कर में भाग ले नील्स पेकी स्पाइकी वकील डीजे अभी डीजे आनी और बेशक प्री सेल टिकट 500 रुपया और दो पर जेबा तो 700 रुपया तो ज़रूर जलसा की रात बा कॉन्सर्ट में आइए जा परिवार सहित लड़का फैका माता पिता चाचा चाची नाना नानी दादी सबको आइए जा भोजपुरी जलसा देखे। जी हाँ फर्स्ट भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट रही बैंक्वेट हॉल ऑसनाल में भूलिए ना आई महीना सप्ताह के महीना 11 सितंबर के रात के 7 बजे से। यस चल अभी कुणाल हीरलाल के आवाज़ में सुनब जागला गीत जलसा जलसा हो। और एक गीत हमने खासम खास चलावत है इस सब संगतियालो के नाम सेंट ओबे एस एस कॉलेज जो सेंट ओबे में स्थित बा वहाँ के सब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के सब हमारे कोलेग हमारे स्टूडेंट्सों के नाम जो बी ए फ्रेंच एम ए फ्रेंच और पी एच डी फ्रेंच में एनरोल है वन सर तले का लोग है गीत तो लोग के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। और ये गीत हमने चलावते इस खासम खास टीना दीना प्रतिमा केट रोशनी और स्वीट एंड लवली बानू खातिर जो बहुत प्यार से विराट के हमने सुना था वन खासम खास गीत टीना दीना खातिर और बानू खातिर चल एक साथ सुने जलसा जलसा हो।

हरकत न चाय आ हा हा हा और बेशक हम न्यू ना से देश गावत ईसा तलो के संग संग रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर। और अब बॉलीवुड की ताज़ा खबर, ढेर कोई कुसिया बॉलीवुड के फिल्म देखे के तो सुनने में आलबा कि सलमान खान बिग बॉस 20 के प्रीमियर के लिए के जबरदस्त बस हुआ था। सलमान खान जो है शूटिंग कर दी रखबा और एक जो प्रोग्राम चली बहुत जल्द। और शाहरुख खान के बारे में निर्देशक संजय गुप्ता शाहरुख खान से जुड़े वो पुराना किस्सा शेयर कर लें, जिसमें बोलन कि अंडरवर्ल्ड की धमकी के सामने झुके से इनकार कर लगभग शाहरुख खान। और अक्षय कुमार सैफ अली खान हवाईन 11 आई जो फिल्म है हवाईन 11 एक में नजर आन अक्षय कुमार और सैफ अली खान ओ सितम की फिल्म रिलीज हुआ था। फिल्म के नाम है हवाईन 11। ये फिल्म के लेके जो है श्रोता लोग काफ़ी एक्साइटेड बा, कहे कि बड़ी खूबसूरत फिल्म रही। और कार्तिक आर्यन बॉलीवुड एक्टर और फिल्म कैप्टन इंडिया की शूटिंग आखिरकार शुरू हो गल बा, करीब 5 साल के देरी से ये फिल्म जो है बहुत जल्द हम के बड़ा पर्दा पर आई। फिल्मों के नाम रही कैप्टन इंडिया। और मनोज वाजपेयी, जी हाँ मनोज वाजपेयी पहली बार के लिए सिनेमा में महात्मा गांधी के किरदार निभाने को फिल्म में पहली बार के लिए मनोज वाजपेयी के लगभग गांधी के रोल में। और मिर्जापुर द मूवी हाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेज़ी से कमाई करल जाता और जो है बोला जाता है कि एगो बड़ी हाई बजट फिल्म है, हाई फिल्म के खूब पैसा मिलता है। फिल्मों के नाम है मिर्जापुर द मूवी, बहुत जल्द ई मॉरिशस के सिनेमा घर में भी नजर आई है। और एगो फिल्म बना था रामायण, नुकर में सनी देओल हनुमान के रोल निभायन और रणबीर कपूर जो है राम भगवान के रोल निभायन। आ हा हा देखब सही फिल्म को रंग लावेला। और रामानंद सागर के रामायण बना रहा बहुत साल पहले और अब सुनाता कि एगो बड़ी फिल्म बनी रामायण दिवाली है। बड़ी जब दिवाली आई तो दिवाली में रिलीज हुई फिल्म सनी देओल रही हनुमान के रोल में, रणबीर कपूर रही एक में राम भगवान के रोल में। चलो भगवान से प्रार्थना करब सर कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अभी के लिए चलो फ्री मैन वी लागो से सुनब जा गीत झुमका, बहुत ही प्यारा सन गाना है। गीत चली विकास नारायण खतेर चिबुग राजा स्टीव नानो श्याम मंगल प्रवीण भैरव राजमन्ना सुदेश जसवा जिमी दुखिया और सब संगतियालू के नाम। और एक गीत संजय हरिचंद की ओर से उगर पत्नी उगर बेटी उगर सब परिवार पीतों से कुणाल हिरीलाल थोड़ा सब परिवार के नाम पूर्णिमा फोकिया। एक गीत थोड़ो खाती चलाओ सब बहुत बहुत प्यार से। और जुन संगतियालू के नींद नहीं लगता, कोई करवत इधर बदलता करवत उधर बदलता तो फिक्र नहीं करिए, अभी रात के 11 बजे तो लोग संगीत गवट कर अब सर चला गीतवासी ने गीतवा के शीर्षक है झुमका।

0: RM3 Radio. On the hour, every hour, Radio Marches.
1: अभी एक महीना से हमने श्रावण मास के व्रत धारण करी से घर में यज हवन होल, वेद पाठ होल, पूजा पाठ होल, शिव अभिषेक होल और अब श्रावण मास के बाद अब थे कोई गणेश भगवान के व्रत धारण कर ले उनसे कहे कि कहते उस कैंसेप्ट हमने हम मनावब से गणपति बापा के त्यौहार गणपति बापा मोरिया जी हाँ गणेश चतुर्थी के महान पर्व रही बहुत जल्द तधे कोई भी व्रत धारण कर लगबा गणेश भगवान की मूर्ति सब घर घर में सजावल गलबा था तो लोग व्रत सफल हो हम दिल से प्रार्थना करते हैं जितना गणेश भक्त लोग बा जितना कोई कागम रख ले वन सा तो लोग के कागम दुल के व्रत सफल हो और गणेश पूजा हो झाकड़ी हो भजन कीर्तन हो और जब गणेश चतुर्थी हो जाए तो गणेश भगवान के विसर्जन कैसे नदी में समुन्दर में और धेमना जुन हर श्रोता लोग व्रत धारण कर ले उनसे तो गणपति बापा से प्रार्थना करब सर कि सब कोई की व्रत सफल हो और गणेश भगवान जुन हर बुद्धि और ज्ञान के देवता हों जा और घर में सुख शांति आवरा जब गणेश और कोनो भी पूजा जब करब तक गणेश भगवान के नाम सबसे आगे लेवल जला कोनो भी कार्य करब शुभ कार्य चाहे शादी हो मंगनी हो पूजा पाठ हो या गोलेखा का जन्म हो तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः हे मंत्र बोल के तब कोनो काम करिए तो हर कार्य में सफलता मिली तो हमने के जन शिव पुराण बकुल में बतावल गबा कि गणेश भगवान के जन्म कैसे हो रहा तो बहुत समय पहले की बात है शिव पार्वती के शादी हो रहा तो पार्वती माता जिन अपन साल्डी में स्नान करता है और वो नहीं खुशी रहता है कि कोई एक कुत्ता अचानक घर में चला आई तो वो खातिर का कर लग पार्वती माँ जब वो नहाता अपन साल्डी में तो अपन शरीर के जो मैल है वो मैल से वो एगो मूर्ति बने लग एगो मूर्ति एगो लड़का के मूर्ति बने लग और घर में प्राण प्रतिष्ठा कलक फूकलक और बोलक लैकवा तो जीवित हो गल तो माई बोला था लैकवा से देखा हम स्नान कर जाते बाबू कोई भी आए तो बोलिया घर में नहीं हिले के हम स्नान करते स्नान कर ले अब तो हम ही आप ज्वाइन करें तब लैका अपन माँ के फेरेदारी करा था माँ चल गल नहाए तो शिव भगवान जो ना हिमालय पर्वत से तपस्या करके लौटा था तब जब द्वारी में आए तो गणेश भगवानों के रोक लग तो शिव बोला था ए लड़का तू के हवे तो बता हम हमारे माँ के बेटा है मामा के बेटा हुए बोले हम तो नहीं जाए ना शिव बोले हम तो नहीं जाए बोले हाँ तो हम थोड़ा नहीं जानी रहा हम थोड़ा नहीं जाए दी हमारे माँ के आज्ञा है कि कोई भी घर के अंदर नहीं जाए जब ले स्नान नहीं करी था अब शिव और गणेश में बातचीत हो

लगा रही बातचीत हो लगल था। अब शिव तक क्रोधित हो गल और अब क्रोध के मारे जो है वो दंड देलक गणेश के और पंचशूर से वो गणेश के धर अलग कर देलक, गणेश के गला काट देलक। गणेश धरती पर गिर गल और माँ पार्वती जो है जोर से लिख पड़ती माँ हला कर लगता। माँ पार्वती दौड़ ले आल आगे दिखा था कि गणेश भगवान जो है खून में लथपथ था। माँ पार्वती रोई लगल तो शिव के बात बोल लगे बोले तू काहे से कर ली हमार लड़का है हम के प्राण प्रतिष्ठा तू के मुआ दे ले बोले हम तुके क्षमा नहीं करब बोले हम चाहे हमार लड़का के तू वापस जिंदा करब जिंदा नहीं करब तो त्राही त्राही मच जाए। तो शिव जी डर गल और अफसोस हो कि वो अनजाने में अपन लड़का के खून कर दिलक। तो शिव अपन गणनुक से बोलक कि जा से खोज से कोनो भी सबसे पहला प्राणी कोनो भी जीवित प्राणी तोरा मिली तो कर गला काट के अन्य से हम लिखवा के जीवित करब। तो कर शिव के गणनुक था ये लोग गल सकरो खोजे तो जो पहला प्राणी मिलल उगो लिलीफों के हाथी के बच्चा मिलल तो गला काट के अन्न से तब शिव जी हो गणेश हो लिलीफों के बचवा के ओकर गला लेकवा में डाल के प्राण प्रतिष्ठा करलक और गणेश जीवित हो गल। तब दिन से गणेश के वरदान मिलल बा कि सबसे पहले कोनो भी पूजा हो तो गणेश भगवान के नाम लेवल जाए। तो हई में देखबा कि गणेश जिन भगवान है वो थोड़ा अलग है ओकर में हाथी के सर बा और मनुष्य के शरीर बा पर गणेश भगवान बुद्धि के दाता है और सदैव विनायक है गणपति बापा है। तो चला जितना कोई अभी गणेश भगवान के ऊपर धारण कर ले वन से अभी गणपति बापा के पूजा करब से लिखा तो उसे कैंस ले तो चला एगो गणेश वंदना सुनाओ अब जा बिस्वानी दीपवा की आवाज़ में सब गणेश भक्त लोग के नाम भगवान गणेश के आशीर्वाद तो लोग सब पर बना रही।

समय के साथ देखा था ऐसा कि इंसान बड़ी ही मोहे हो जाता, बात बात में लड़ाई झगड़ा करे लगेला और कोई की बात नहीं सुने ला। आज के इंसान काजी नहीं कहा इतना मोहे गल बाद मिलो कोई पर भरोसा नहीं सक करे, जब भरोसा करबा वही तोरा छुरी से भोंक देवेला। तो दुनिया ही से चला था एक कलयुग बोला ला, कलयुग में कोई पर नहीं सक भरोसा करे अपन माँ बाप के छोरा के, हो कि नहीं। हाँ तो समय जो है बड़ा बुरा चला था, दुनिया उल्टा घूमता पर बुरा आदमी भी बा अच्छा आदमी भी बा, पर अच्छा आदमी कमती बा, ये अच्छा आदमी बा तब तब जाके दुनिया भी टिकल बा, वरना दुनिया कब के समाप्त हो जाए। कोई लाफे जीवन सोचता हो दुनिया के अंत, हाँ तस्म ही गल बा। देखा तो वह कहूँ कहूँ पर कैसे आवालों साल बाद नेपाल में भी फिकवा देख रही से कैसे एगो सुनामी दिखा रहा और कितना 1000 से भी ज़्यादा लोग मर गल बा। इंडोनेशिया में इतना गर्म कर रहा था कि वहाँ के जंगल में आग धरने लग बा और आग से ठेर करके जान जात बा। और दूसर पई में देखा था ऐसा यूरोप में कौन गए थे तो आचियो कर ले रहा, इतना गर्म कर ले रहा कि लोगन के जान जात बा। तो ये सब हमने की एगो एंजकाशन देवा था कि दुनिया के अंत हुई में अब देरी नहीं बा। हाँ तो कलयुग के अंत में भगवद गीता में लिखल गल बा विष्णु के अवतार में से एगो अवतार ही कालकिन, जिन विष्णु भगवान एगो घोड़ा पर सवार होकर हाथ में एगो रही गो चीज जिनसे वो दुनिया के साफ करी। ऐसा बोल गल बा कि कालकिन रूप में विष्णु भगवान आए कलयुग के अंत में। हाँ तो ये सब लिखा गल बा उनके धर्म ग्रंथ में और ये सब सीन मिला था आजकल कि बड़े आदमी बड़िए मोवे बाप का करवा। और बेशक अभी रात के समय बा तू सुना तो भोजपीतर का कार्यक्रम अजय प्रताप सिंह के साथ रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर, रेडियो मनोरंजन 94.95.6 98.2 FM और रेडियो मॉरिशस 800 AM मोड पर। चला तो अगला गीत सुनब जा जब से तोरा देखनी रोशन सरा सिंह गई रेवन गीतवा गीतवा चाची ललिता कुशल खातिर रहेलन त्रियोले और सब जिराखन परिवार हरकू परिवार कलकतिया परिवार त्रियोले से। भाई हरीश कैसे बा, भाई हरीश बबासन सेवन काला छोटी पोलॉजी से और चाचा आत्माराम। दीपक भाई हवन इंग्लैंड से, रंभा हवन लास्विस से, करतीन गो बेटी घरोला, अजय पूनम चिंतराम ऑस्ट्रेलिया में हवन, ओकर भाई चंदन भौजी प्रिया माँ इंदिरा चिंताराम सलोनी और सब चिंताराम परिवार खातिर अगला गीत चाहब से जब से थोड़ा देखनी। अगर थोड़ा भी केकर से प्यार हो गल बात तो प्यार के अपन दिल में नहीं छुपैय, प्यार के इजहार करिए काहे छोकरी का शर्माते हो। अगर सच्चे दिल से तो के प्यार करे तो जाके बोल दिया बोलिया अंकित तौर से प्यारो गल बा आमी तुम्हार को बालो बाशे। या आई लव यू या मो कौन तो बोल दिया। देखिए का बोलेगा। अभी चले गीता सुन जा रोशन सरा सिंह के गावल जब से तोरा देख ली। अरे चल अभी नाचब सा संगे संगे रोशन सरा सिंह के साथ।

0: सच्चे के
1: जब से
0: अंकित उसे प्यार हो गल भाई बट बोल दिया ओके
1: Je t'aime
0: mon bébé या आई लव यू बोल दिया या मुको तो तमो गादे

वो जब से थोड़ा दिख रही रोशन सरा सिंह की आवाज़ इतना जोरी गाना रहा हम तो नचते रह गई रही और जब हम नाच रहे थे नींद नहीं लगी रहा और बहुत बहुत धन्यवाद उनके साथ देखा देर संगतिया लोग भाई बहन लोग श्रोता लोग जहाँ से भी उनकी सुना था भाई यह तो लोग मनपसंद रेडियो रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस आय हाय 2400 घंटे

सातों दिन 365 दिन साल में हमने तो दी रहा और जब से फॉरेस्ट में एमबीसी रहा तब से एमबीडी हो गया 25 बरिस हमने के एमबीसी में काम कर ला रेडियो विभाग में और तो लोग के साथ देते रही राजा और हर बरिस साल 2000 हर बरिस से जो है साल के बेहतरीन भोजपुरी गीत प्रस्तुत कर रहे हम प्रताप सिंह साथ में सुरेखा दोनों जना 25 बरिस से कम कर दिस और करते रह सा तो लोग का आशीर्वाद रही था और बेशक अभी हमने तो के साथ होते इस रेडियो की लहरों पर और बेशक बोली जा सकती जब तू बीमार पर्वत जो तू अपन से दवाई नहीं लिया है तू डॉक्टर नहीं हुआ जब बीमार पर्वत जाइए डॉक्टर लगे या तो अस्पताल में या कोई प्राइवेट डॉक्टर लग जाइए चिकित्सा कराइए कंसल्टेशन कराइए डॉक्टर जब थोड़ा जो दवाई दे तो दवाई भी नहीं बोलिए नो दो ना मैक्सिन लाकार मुझे बोली मुझे फिर भी है नहीं नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है जब तो बीमार है बता कंजूसी नहीं करिए जाइए डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर थोड़ी इलाज करी तो अच्छा हो जाए और आजकल ठंडा ठंडा करता पानी पानी करता ढेर कोई के सर्दी खांसी जुकाम उगल बा तो डॉक्टर के दवाई लिया जाए और साथ में ऐसा कुछ कोनो कोनो नुस्खा ली जैसे कि हरदी दूध या जीते पिया में थोड़ा लीमो गार के डाल दी गरम गरम सक पिए हरदी दूध अच्छा दूध गरम करके हरदी जो पीसर हर डाल के मन से बिना से करके पास से करके पी लिया या फिर जीते पिया में दो नींबू के दो गुद डाल के जोड़ी से बिना चीनी के पी लिया ये तो और पोटेशियम विटामिन सी जितना है अच्छा है अभी सर्दी के मौसम करा था जिन्हें से लोग जाने लड़का लोग नहीं खुश है फुक के पर चहला डॉक्टर लोग बोले विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ सर्दी खांसी जुकाम से बच्चे कहते हैं जोहोंस खाइए मोहदागिन खाइए लीमो खाइए पोम खाइए पोमलिमुस खाइए ये अच्छा है समझदार के इशारा काफ़ी बा अभी मालाद नहीं हो जाए काहे के लिए एग्जाम हो गया अभी आए के बाद एन सी एग्जाम्स फिर रही फिर एस सी एच एस सी एग्जाम्स ये खातिर अपन के पोतेजी करिए स्कूल जाते हुए अपन छाता अपन रेनकोट अपन साथ ले रहिए नहीं बोलिए ना मापापू में कास्के डराते मुझसे भी पूछी फोनी नहीं सब जिस नहीं है देखिए माँ बाप लोग इतना पैसा डराता लड़का लोग संगीत लड़का लोग थोड़ा सुनने को लामू फोप रखिए सर जब लिकुल जाते हुए अपन साख में अपन छाता ले लिया इतना जिप्सी में छत्ता है साक पासिक में डाल के अपन साक में डाल के वो रेनकोट ले लिया रेनकोट पहन लिया पासकोल पोलोलो डाल लिया कह के बड़ी ठंडा कर रहता और लड़का लोग फजी के बोने रहे 6 बजे निकल जाना घर से जो निकालो दूर जाला स्कूल कॉलेज और ऐसे ठंडा ठंडा करता था ग्लासी चीज़ नहीं पिया है गरम गरम चीज़ पिया जा गरम गरम खाना खाइए गरम गरम पानी गरम गरम चाय कॉफ़ी पिया थोड़ा श्वास अच्छा रही और हमने बड़ा आदमी से हमने के दिवा लड़का लोग के बताए कि अगर हमने नहीं बोला तक के बड़ी पर लड़का लोगों के छापन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई वो लड़का जो इन फोम सैंक एच एस सी में चल बा तब तो लोग अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया सर स्कूल जाते हुए तब फिर के अपन छाता रेनकोट अपन साथ ले जाइए ठीक बा तब सुनब जाग लगी बाजे बाजे ढोल मंजीरा बहुत ही प्यारा सन गाना है और है गीत मंगली हवन मोहताबाद से बिना कर घरोला कर दुगो बेटा खातिर देवी का राम गतिया चंपा राम गतिया और उनके परिवार में शादी बा और कुछ छोकरी शादी कर रहा था तब बहुत बहुत बधाई राधा सी बालक बेमी के साथ जुड़ कर बेटा प्रशांत बहू बेटी शिल्पा दामाद और सब सिबालक परिवार के नाम राविश मंदु वैसे वन कर माताजी पिताजी भाई भौजी और सब मंदु परिवार के नाम तरह के गीतवा पसंद बा बाजे बाजे ढोल मंजीरा आप कैसे ढोल मंजीरा बजाता चल हमने सुनब जा

भोजपुरी दर का कार्यक्रम चकाचक प्रोग्राम चलाता है रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और बुलल जला की दुनिया में जुन होला अच्छा ही होला, देश से जाता जाए दुनिया के और कौन कुआ नहीं सक बजाए ना। तैसे ही हंसते गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में कभी परेशान है हम तक उन्हें स्ट्रेस नहीं है भैया। पहला हम बड़ी स्ट्रेस से बतली छोटा छोटा बात के लिए के, पर एक दिन हमारे को मुलाकात हो भारत के गो आचार्य से और इस्कॉन में आ रहे फिनिक्स में, तो कर मार्गदर्शन पर जब हम हिल ली तो विजेताओं हिल गई ली शाकाहारी और बेशक पूजा पाठ योगा रेकी मेडिटेशन सब करी रहा पूजा पाठ करी रहा और जब तनाव आवे रहा तो सब भगवान के हम हाथ में छोड़ दे रहा। हाँ और बेशक कोनो टेंशन नहीं लेके जिंदगी जैसे जाता ओके जाए दिया। जब भगवान थोड़ा दुख देवे रहा तो वही वो दुख आके दूर करी और भगवान से बड़ा कोई नहीं बा दुनिया में। भगवान ही हमने के जन्म देवेला वही सुख दुख देवेला और

जब भी कोनो प्रॉब्लम मेरा तह तू उ प्रॉब्लम जुन है भगवान के हाथ में दरिया जा और भगवान जुन है का लीला परम्पार बा उ कोनो न कोनो दरवाजा तोर खाती जरूर खोली। कबू कबू ऐसे नहीं गो मोट आवेला जब तू नहीं सके लगो देसी जान ले तब जाइए भगवान के शरण में बोलिया हे प्रभु हम ऐसे नहीं गो मुसीबत में के कौंपो नहीं लगता समझ में नहीं आवाता कौन सीमा ले अपने दिखा भगवान थोड़ा को इशारा दे और कोनो न कोनो सीमा जरूर निकली। अगर मन में लगन बा भक्ति बा सच्चे हृदय से तू भगवान के पूजा पाठ करते हुआ योग साधना करते हुआ भजन कीर्तन कर फजी शान भगवान के याद करेला तब भगवान अपन भक्त के कष्ट में नहीं सकेला देखे कोनो न कोनो रूप में आके अपन भक्त की मदद जरूर कर रहा है। तो भगवान पर भरोसा के ये राधे राधे राधे राधे हरे कृष्ण अजब तो रे लीला हाँ प्रभु तोहर लीला अपरंपार और भगवान जाने रहा कब कौन सी चेहरा करे कि सही समय में सही काम होला ना समय से पहले ना समय से बाद भगवान अगम जानी है भगवान जाने रहा कब कोची बा करेगी। तो चला भी गीत सुनब से ज्वाला भी जाधन गैले वन अजब तोरे लीला भगवान की लीला परम्पार है। और एक गीत हमने चलावते इस खासम खास प्रीतम भैरव के सगर पत्नी ज्योति और बेटी प्रियंका दामा राविश सिंह बेटी पूजा सब भैरव परिवार के नाम और द वेल से अमन टीना टीना बुदना कर घरोला को दुगो बेटी रतन निहाल गाँव बेस से कर पत्नी करुणा पापा विजय सब निहाल परिवार के नाम प्रवीण बुधन अमन रिजौगी से और माता पिता और सब परिवार के लिए कौफुखो से अवन नीतीश सिटी जोरी और माँ बाप और पत्नी और बेटा और सब सिटी जोरी परिवार के नाम। तो चलो अभी एक साथ सुनब जाए गीत अजब तोरे लीला और भगवान की लीला अपरंपार है।

भगवान के बनावल हर एगो चीज जरी बा, खूबसूरत बा, पेड़ पक्षी फूल हरियाली स्त्री पुरुष सब कोई जरी बा, सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री। अब ढेर कोई सांवर सांवला रंग के हवन से सांवर हवन से तब बोलन से आयु के ने ढेर कोई नहीं खुशी रही लाखो से हम सांवर हैं। अरे भाई कृष्ण भगवान सांवर रहल तो देख रहा कितना कोई कृष्ण भगवान की खुशी रहे। अभी फिर कहा कृष्ण जन्माष्टमी मनेली सा कि नहीं और कृष्ण जन्माष्टमी सब कोई नची सा गैली सा तो कबो नहीं बोलिया कि तू जोड़ी नहीं हुआ है। सब कोई जोड़ी बा ए तम के जोड़ी जोड़ी संगति आलोकन की जोड़ी जोड़ी श्रोता लोग अभी हमने सुनाता और ढेर कोई अपन आपके लागलास में देखता बोलता ए मुसी मजोरी दो। हाँ जी सब कोई जोड़ी बा, भगवान जन बनेलक बा तो कर में सुंदरता कूट कूट के देलक बा। कबो भी नहीं सोचा कि कोनो व्यक्ति बोल देलक कि कबो कबो कोनो व्यक्ति बोल देवेला आप गीत दादा लागलास तो वो लोग के बात पर ध्यान नहीं दिया, बोले दा बुद्धि हो से बा। पर हम तो सोची लाए जब हम दुनिया में आने से तो भगवान के बनावल हर एगो चीज जोड़ी बा, एकर चुनटी से लेके एकर लिलीफों तक पेड़ पक्षी से लेके इंसान ले सब कोई जोड़ी बा। है भगवान देखा इंसान बनेलक तो पुरुष बनेलक सुंदर स्त्री बनेलक फिर लड़का लोग के बनेलक पुरुष से दुनिया में आल फिर रचना होल लड़का लोग परिवार लोग तो भगवान के हर एगो चीज बनावल जोड़ी बा। और बोले जैसे कि आगे के ज़माना में परी रहल ते परी बड़ी जोड़ी रहता और मॉरिशस में भी आजकल जोड़ी जोड़ी परी बा जितना परी लोग हमने की सुनता परी के मतलब खूबसूरत महिला लोग जितना कोई सुनता छोकरी लोग महिला लोग तो अगला गीत सब जोड़ी जोड़ी छोकरी जोड़ी जोड़ी महिला खातिर सुंदर परी आहा तो लोगों खातिर हो सब कोई खातिर गीत चलाते हैं। सुंदर परी गिरीश रूपचंद गीतवा गैले हवन बहुत प्यार से और गीत चली मुकेश और सूरज गंगा खातिर सत्यम सनु शिवरतन परिवार मिशन क्रॉस रोड डालमाची के हमने के भोजपुरी के बहुत शौकीन हवन रविराज सिन्हा बिचुक का गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी स्वयं प्रभा तोहर पिता प्रत्यक्ष और सब परिवार के नाम और हई गीत चली नीर की ओर से कर पत्नी और कर सब परिवार के नाम माया काशी है गीत तोहर खातिर तोहर पति तोहर बेटा तोहर पतु और सब काशी परिवार के नाम और है गीत चली महेश परिवार खातिर रिस्कारी रहेलन और रिवियरी जोंगी के सब सीमाद्री परिवार के नाम और रिवियरी जोंगी एसएसएस और सुयाक एसएसएस के जितना टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अभी हमने सुना था रात के है गीत तो लोग के नाम भी सुंदर परी।

जिंदगी चार दिन की है और करबात का जिन्हें कुछ बा कुछ नहीं। विलियम शेक्सपियर बोला लाइफ इज ए स्टेज, मैन इज एन एक्टर, ही परफॉर्म्स हिज रोल एंड गोज अवे वन डे। सच्चे के एगो रंगमंच है, यहाँ पर अपन अपन रोल निभा रहे हैं। देखा हमने के कितना रोल बा, एगो व्यक्ति कबो हम एगो पिताजी हैं, एगो पति हैं, बेटा है, राजो में एगो अनिमाते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही रहा सर। पर एगो व्यक्ति के ढेर भूमिका रहेला और हमने के चाह सब भूमिका निभाए के अब अच्छी तरह से सौ पूछा नहीं सक सर भूमिका निभाई। पर कतमान जिस पूछा अगर अच्छी तरह से भूमिका निभा रही तो हमने के जीवन सफल हो जा रहा हो कि नहीं। और बेशक तू भी अपन रोल अच्छी तरह से निभाइया। अगर एगो माँ हुआ, बेटी हुआ, बहू हुआ या बेटा हुआ, पति हुआ, दामाद हुआ, तो अपन रोल अच्छी तरह से निभाइया हो कि नहीं। चला इस में अगला गीत सुनब जा कुणाल हीरीलाल के आवाज़ में, जोली चोकरी से प्यार करी रहा। और है गीत कासम खास जैनब की ओर से, सब मोसाई परिवार के नाम, सब पोले परिवार के लिए, पोले परिवार शेमे गए मोसाई परिवार फिनिक्स अंजुनन को एक गीत और माता जी तुहर पति खातिर, रोजी द हाईलैंड से आफे हवन लाविनिया सैम्पियर से और फातमा हवन न्यू ग्रोव से बहुत बहुत प्यार के साथ धर्म के साथ देवत हुआ। और इंटरनेट के जरिए अभी सुनीता के साथ देवतन, सुनीता हवन फ्रांस से बोलतवन प्रताप जी, प्रोग्राम तो एकदम चगा चगवा। और बोला तो कि हम शुरुआत से तो प्रोग्राम सुनते हैं शाम के 3 बजे से, लोकल टाइम है मॉरिशस के लोकल टाइम, वहाँ पर 3 बजे रहता तब से सुनते हैं और तो प्रोग्राम बड़ी अच्छा लगेगा। यहाँ फ्रांस में ढेर कोई थोड़ा पसंद करे प्रताप जी, थैंक यू सो मच। और हई गीतवा तो खातिर थोड़ा सा परिवार के लिए, और जितना कोई भी बेकरी में काम करता, अस्पताल में, क्लिनिक में, मेटियो सर्विसेज में, फायर सर्विसेज में, जितना भी विभाग काम करता, कॉल सेंटर में, जितना कोई भी काम करता भी रात के हमने के सुनते वन तब बंकुआज सस्ती बने वाली ड्राइवर दोस्तों पसा जिले के जालन पसा जिले के आवे ना जा। और ढेर कोई भी नाइट शिफ्ट करते वन, ढेर कोई नाइट शिफ्ट कर दे लगभग घर लौटते वन सर, गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी पियाते वन

तो हो जाए गर्मा गर्म चाय और कॉफी के साथ साथ ही प्यारा सन गाना जोली छोकरी से प्यार ऐसा संग आओ से है शर्मा के नीचे है ना ओके 1 2 3 अली संग संग गाओ से जोली छोकरी से प्यार करीला हे हे छोकरी से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जीला ओके कैसे समझा बोके बताए दे हमको से प्यार करीला ऐसे गाती रहिए नचती रहिए और है गीतवा के संगे भोजपुरी का प्रोग्राम समाप्त होता है कुछ ही सेकंड्स में रात के 11 बजे हो रहा 11 बजे सुन बस सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से का फजर के 5 बजे ले नॉन स्टॉप फिल्मी तारा ने हमने के तौर की मुलाकात यहाँ तक रहा सांझ के 3 बजे से अभी रात के 11 बजे हमने के साथ दे रहा रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर सब कोई के शुक्रिया तो लोग के फोन कॉल्स और एसएमएस खातिर बहुत बहुत धन्यवाद हमने के तौर की मुलाकात हुई अब मंगल के रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का तब तक हमने के इजाजत अजय प्रताप सिंह से तालु की ओर से सब संगत यालो के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
3: फिर से हाजिर हो गई है हम आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, हम है गिनिशा और बड़े प्यार से आ जाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस आपका साथ देने के लिए इन पुराने ही नगमों को लेकर। तो आप सभी लोगों का गिनिशा का प्रणाम, गुड इवनिंग और नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, एकदम तैयार हो जाइए हमारा हम सफ़र बनने के लिए इस खूबसूरत सी सफ़र में।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

वैसे तो देखा जाए आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट फास्ट है, लेकिन दिल को कभी कभी स्लो होना भी जरूरी है दोस्त। तो चलिए कुछ पल रुकते हैं, पुराने गीतों को सुनते हैं और यादों में खो जाते हैं। ये है आपका अपना सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

कुछ आवाजें कभी पुरानी नहीं होती हैं। बिल्कुल जी, कुछ आवाजें जो है ना कभी पुरानी नहीं होती हैं। और मोहम्मद रफी जी, किशोर दाल, लता मंगेशकर और आशा भोसले और ऐसे ही अनेक लेजेंड्स की आवाज आज भी दिल को छू जाते हैं। उन्हीं गोल्डन मेमोरीज के साथ सुनहरे पल में हम आपका साथ निभाने आ गए हैं। तो चलिए जी, टू ऑल दोस जो अभी काम पे हैं, अगर आप काम पे हो तो बोंको हाश टू यू। और ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

पक्का मुझे विश्वास है कि आपके पास भी कोई ऐसा गाना है जो सुनते ही किसी खास इंसान की याद आ जाती है। बिल्कुल जी, शायद आज वो गाना यहाँ बज जाए आपकी सुनहरे पल में, क्योंकि सुनहरे पल में हर मेलोडी के पीछे छुपी है एक खूबसूरत सी याद, और वो है आपकी याद। आपकी यादों को हम फिर से ताज़ा करने आ गए हैं अगले नगमे के साथ। तो ये रहा खासकर आपके नाम और आपके उन खूबसूरत यादों के नाम।

बाल दोस्तों, यादों का भी एक फेवरेट साउंडट्रैक होता है और हमारा वो साउंडट्रैक है पुराने बॉलीवुड के एवरग्रीन गाने। तो तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल जाने के लिए हमेशा रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, जहां हर गाना आपको कुछ याद दिलाएगा। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

खूबसूरत गानों का सिलसिला चलाते चलाते वर्ल्ड ओसिस खूबसूरत से शो का अंत तक हम पहुंच गए हैं, हमें पता ही नहीं चला। उम्मीद करते हैं आपने दिल से एंजॉय किया। तो चलिए जी, हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और गणेशा का ढेर सारा प्यार सभी के नाम।

0: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: चलन से ना चाल से, प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से।

एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो